0: शुभ प्रभात। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। सुबह के 7 बज चुके हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है, जो कि दोपहर के 12 बजे तक जारी रहेगी। आज शक संवत 1948 के श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। तदनुसार 25 अगस्त 2026, आज दिन मंगलवार है। आपके स्वास्थ्य और सफलता की शुभकामनाओं के साथ हम आज का प्रसारण शुरू करते हैं।
1: जीवन सारा।
2: एक बार की बात है, एक छोटी सी तितली थी। वो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसके पंख बहुत छोटे थे। वो अन्य तितलियों की तरह ऊंची नहीं उड़ पाती थी। वो हमेशा दुखी रहती थी। एक दिन वो एक फूल के पास गई और रोने लगी। फूल ने पूछा, तू क्यों रो रही है? तितली ने कहा, मैं अन्य तितलियों की तरह ऊंची नहीं उड़ पाती हूँ। फूल ने कहा, बेटी, तुम्हें अपनी ऊंचाई पर दुखी होने की जरूरत नहीं है। तुम बहुत सुंदर हो। तुम अपनी सुंदरता से सभी को खुश कर सकती हो। तितली ने फूल की बातों को ध्यान से सुना। उसने सोचा कि फूल सही कह रहा है। वो अपनी सुंदरता पर गर्व करने लगी। उसने अन्य फूलों पर जाकर अपनी सुंदरता दिखाई। सभी फूल उसकी सुंदरता की तारीफ करने लगे। तितली ने महसूस किया कि उसे ऊंची उड़ान भरने की जरूरत नहीं है। वो अपनी सुंदरता से भी खुश रह सकती है। हमें अपनी कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हर व्यक्ति में कुछ खास होता है।
0: पर ये रेडियो आजाद हिंद है। और अब जानकारी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हमारा अगला कार्यक्रम है वैदिक सूक्तों पर आधारित अक्षय निधि। उसके बाद सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम। सुबह 8 बजे महापुरुषों के जीवन पर केंद्रित वतन का राग कार्यक्रम। आज स्वाधीनता संग्राम सेनानी शिवम राम राजगुरु पर केंद्रित है। सुबह 8:30 पर कार्यक्रम प्रकृति की पुकार, जिसमें आज का विषय है भूमि, मिट्टी और प्रकृति। सुबह 9 बजे योग संवाद कार्यक्रम में आज का विषय है पौरुष की प्रधानता और प्रारब्धवाद का खंडन। इस विषय पर बातचीत करेंगे जीवन कला विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी और सुनीता सिंह। सुबह 9:30 पर सुनिए हमारी विशेष सांगीतिक प्रस्तुति। सुबह 10 बजे देशभक्ति गीत और कार्यक्रम जननायक क्षमा करें, इसके साथ ही भोपाल में आयोजित जननायक कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट का प्रसारण होगा। 10:30 पर कार्यक्रम आजाद हिंद और 11 बजे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत आज विषय होगा नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी। इस विषय पर विषय विशेषज्ञ निहारिका पंसोरिया से रत्नेश सोनी की बातचीत हम आपको सुनवाएंगे। सुबह 11:30 पर स्वामी विवेकानंद के जीवन मूल्यों पर आधारित कार्यक्रम युग प्रवर्तक। तो ये थी जानकारी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं वैदिक ऋचाओं पर आधारित कार्यक्रम अक्षय निधि।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय।

अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के तीसरे सूक्त से वाचन। ऋषि हैं गृत्समद, भार्गव शौनक, देवता हैं आप्रि सूक्त, इद्म अथवा समिद्ध अग्नि,

0: नराशंस, इड, बहिर, दिव्य द्वार, ऊषा सानाक्ता, दिव्य होतागण, प्रचेतस, देवियां हैं सरस्वती, इड़ा, भारती, त्वष्टा, वनस्पति, स्वाहाकृति और छंद है जगती।
1: साध्वपांसी सनता न उक्षिते उषा सानक्ता वैयेव रणविते तंतुम ततम संवयन्ति समीची यज्ञस्य पेशः सुदुघे पयस्वती। यज्ञ के स्वरूप को सुंदरता प्रदान करने वाली उषा और नक्ता देवियां वरुणी के समान शब्दायमान हो, हमारे उत्तम कर्मों को प्रेरणा देती हुई पूजित होती हैं। ये देवियां फैले धागों को बुनती हुई उत्तम प्रकार से गति करने योग्य बनाकर सभी प्रकार की कामनाओं को पूरा करते हुए अन्न और दुग्धादि से पूर्ण बनाती हैं। दैव्या होतारा प्रथमा विदुष्टर ऋजु यक्षतः समृचा वपुष्टरा देवान्यजंता वृतुथा समंजतो नाभा पृथिव्या अधि सानुषु त्रिषु। दोनों दिव्य होता अग्रणी विद्वान तथा रूपवान हैं। वे ऋचाओं के माध्यम से सरलता पूर्वक देव यज्ञ संपन्न करते हैं। पृथ्वी की नाभि में वे तीनों सवनों में भली प्रकार संयुक्त होते हैं। सरस्वती साधयंती धियम न इडा देवी भारती विश्वतूर्ति ही तिस्रो देवी ही स्वधया बहिर रेदमिच्छिर्दम पांतु शरणम निषद्य। अनेक श्रेष्ठ गुणों से युक्त देवी इडा, देवी भारती तथा देवी सरस्वती, ये तीनों देवियां हमारे इस यज्ञ स्थल पर विद्यमान रहकर अपनी धारणा शक्ति के द्वारा हमारे इस यज्ञ का संरक्षण करें। पिशंग रूपः सुभरो वयोधाः सृष्टि वीरो जायते देवकामः प्रजां त्वष्टा वीष्यतु नाभिमस्मे अथा देवानामप्येतु पाथः। अग्निरूप त्वष्टा देव हमें श्रेष्ठ संतान प्रदान करें। वह पुत्र सुवर्ण जैसी कांति वाला, उत्तम हृष्ट पुष्ट, अन्न तथा पराक्रम को धारण करने वाला, दीर्घायु, वीर, श्रेष्ठ बुद्धिमान, उत्तम गुणों की कामना करने वाला तथा देवों द्वारा प्रदर्शित उत्तम मार्ग का अनुगामी हो। वनस्पति रव सृजन्नुप स्थागग्निर्हविहि सूदयाति प्रधीभिहि त्रिधा समक्तम नयतु प्रजानन्देवेभ्यो दैव्यः शमितोपहव्यम्। वनस्पतियों से अपना प्रकाश फैलाते हुए अग्निदेव हमारे समीप स्थित हों। ये अग्निदेव अपनी शक्ति से हविष्यान्न का परिपाक करते हैं। दिव्य गुण संपन्न शांत स्वभाव वाले ये अग्निदेव तीन प्रकार से तैयार हविष्यान्न को देवों के पास पहुंचाए। घृतम मिमिक्षे घृतमस्य योनिर्घृते श्रुतो घृतमवस्य धाम अनुश्वधमा वह मादयस्व स्वाहा कृतम वृषभ वक्षी हव्यम। इन अग्निदेव का मूल आश्रय स्थल घी है, अतः इन्हें घृत से सिंचित करते हैं। हे बलशाली अग्निदेव, स्नेह पूर्वक समर्पित की गई आहुतियों को सभी देवों तक पहुंचाकर उन्हें प्रसन्न करें।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के तीसरे सूक्त से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम। चेहरे पर मुस्कान बनाए रखिए, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे। दिन की शुरुआत करते हैं ईश्वर उपासना के साथ, भक्ति संगीत के साथ।

सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी।

यदि हम यही सोचते रहेंगे कि जब दुख दूर होंगे तब हम प्रसन्न होंगे, तो ये एक गलतफहमी है। मन प्रसन्न रखने से ही दुख दूर होते हैं।

यदि हम अपना जीवन शांति से जीना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि हम अपने काम पर फोकस करें और लोगों की बातें ना सुने। जो लोग खुद से ज्यादा दूसरों पर ध्यान देते हैं वे कभी भी सुख शांति से नहीं रह पाते। दूसरों से ज्यादा खुद के जीवन पर ध्यान देना चाहिए।

कठिन समय में कायर व्यक्ति बहाना ढूंढते हैं, तो वहीं बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं। कठिन समय में भी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। इसी तरह विपत्ति अवसर में बदल जाती है।

बुरा वक्त भी अच्छा होता है, क्योंकि वो हमें असली ताकत और संघर्ष की कला सिखाता है। असफलता का समय सफलता के बीज बोने का बेहतरीन मौसम होता है।

यदि कोई व्यक्ति तैरना सीखना चाहता है तो उसे पानी में उतरना ही होगा। किनारे पर बैठकर कोई भी अच्छा तैराक नहीं बन सकता। सही समय पर सही सोच और सही तरीके से बुरे वक्त से लड़ने में सफलता मिलती है।

हर समस्या के तीन समाधान होते हैं, स्वीकार करें, बदल लें या छोड़ दें। अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो बदल दें, अगर बदल नहीं सकते तो बेहतर है इसे ईश्वर पर छोड़ दें।

हम अच्छे भविष्य के बारे में सोचते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमेशा सकारात्मक रहे, तभी वर्तमान के साथ ही भविष्य भी सुधरेगा।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर सुनते रहे रेडियो आजाद हिंद। प्रस्तुत है महापुरुषों के जीवन पर आधारित कार्यक्रम वतन का राग। आज के कार्यक्रम में हम स्वाधीनता संग्राम सेनानी शिवराम राजगुरु के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुनेंगे।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वतन का राग कार्यक्रम में आज हम स्मरण कर रहे हैं सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी शिवराम हरि राजगुरु का।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

उसे ये फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है, हमें ये शौक देखें सितम की इंतहा क्या है। जो शुजनू से लबरेज वो दीवाने थे आजादी के, जिनकी रगों में लहू नहीं ज्वालामुखी धधकता था। गुलामी के विरुद्ध उनकी जिद जब भी लिखती इनकलाब ही लिखती। ब्रिटिश सत्ता के बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए भगत सिंह के जरिए जिस क्रांतिकारी संगठन ने जोर का धमाका किया था, उसी संगठन से जुड़े थे सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी राजगुरु, जिन्होंने इस संगठन के साथ मात्र 4 साल का सक्रिय जीवन पाया, लेकिन यही 4 साल उन्हें अमर कर गए। शिवराम हरि राजगुरु का जन्म 24 अगस्त सन 1908 को पूना जिले के खेड़ा गांव में हुआ था। बचपन में ही उनके पिता श्री हरि नारायण का निधन हो गया और उनका पालन पोषण उनकी मां और भाई ने किया। राजगुरु को कसरत का बहुत शौक था। वे हिंदू धर्म ग्रंथों और वेदों के अध्ययन में भी विशेष रुचि रखते थे। वीर शिवाजी और बाल गंगाधर तिलक से वो अत्यंत प्रभावित थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने 11 साल के राजगुरु को हिला कर रख दिया था और भारत की गुलामी उन्हें बेचैन करने लगी थी। अंग्रेजी की शिक्षा उनके मन को नहीं भाती थी, सो पढ़ाई में मन नहीं रमता। इसीलिए भाई और भाभी का बहुत तिरस्कार सहना पड़ता था। अंततः तंग आकर उन्होंने घर छोड़ दिया और विद्या अध्ययन और संस्कृत सीखने के लिए वाराणसी आ गए। यही उनके क्रांतिकारी जीवन का प्रस्थान बिंदु था। यहां अनेक क्रांतिकारियों से उनका संपर्क हुआ। चंद्रशेखर आजाद से वो इतना अधिक प्रभावित हुए कि उनके संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से तुरंत जुड़ गए। दल की ओर से

रास्ते बचे। उन्होंने शहर की तरफ न जाकर रेलवे लाइन के सहारे मथुरा की तरफ का रास्ता पकड़ लिया। वो रेलवे लाइन के किनारे किनारे चले जा रहे थे कि अचानक सर्च लाइट की तेज रोशनी उन पर पड़ी और उसके साथ ही कई तरफ से गोलियां चलने लगीं। राजगुरु तुरंत पेट के बल लेट गए और रेंग कर एक नाली में छिप गए। फिर वहां से उसी तरह रेंगते हुए पास के खेतों में चले गए। खेत में पानी भरा हुआ था। कोई रास्ता न देखकर वो उसी पानी में लेट गए। ऊपर सर्च लाइट नाच रही थी और राजगुरु सांस रोके खेत में पड़े रहे। कभी कभी राइफल की गोली हवा को चीरती हुई इधर से उधर निकल जाती और फिर सन्नाटा छा जाता। थोड़ी देर बाद पुलिस के बूटों की आवाज और सिपाहियों की बातचीत उन्हें सुनाई देने लगी। वो लोग आसपास के सूखे खेतों में उनकी तलाश कर रहे थे। जाड़े की उस ठिठुरती रात में कोई पानी के अंदर भी लेट सकता है, इसका पुलिस को अनुमान नहीं था। काफी देर बाद चारों ओर सन्नाटा हो जाने पर राजगुरु बाहर निकले। कीचड़ और पानी से तर उनका शरीर एकदम सुन्न हो रहा था। उसी हालत में रेलवे लाइन के किनारे किनारे चलते हुए उन्होंने दो स्टेशन पार किए, तब मथुरा की गाड़ी मिली। मथुरा पहुंचकर उन्होंने जमुना में कपड़े धोए, उन्हें रेत पर सुखाया और लंगोट बांधे धूप में बहुत देर तक पड़े रहे। इतनी कठिन परिस्थितियों को सहकर अपनी सूझबूझ से वो सही सलामत कानपुर पहुंचे। इस घटना के बाद उनकी योग्यता, निष्ठा, साहस और दृढ़ संकल्प के प्रति दल आश्वस्त हो गया।

इस क्रांतिकारी दल से जुड़ने के बाद राजगुरु के जीवन को न केवल एक दिशा मिली, एक लक्ष्य मिला, बल्कि क्रांतिकारी साथियों के रूप में उन्हें जैसे एक अत्यंत स्नेहिल परिवार मिल गया, जिसके लिए वो बचपन से तरस रहे थे। एक तरफ भगत सिंह, सुखदेव, जतिन दास आदि से उनकी अत्यंत आत्मीयता थी, तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें बड़े भाई सा प्रेम दिया, निशानेबाजी सिखाई और बहुत जल्द वो एक कुशल निशानेबाज बन गए। राजगुरु को दल में रघुनाथ के छद्म नाम से पुकारा जाता था। शुरू में उन्होंने दल की ओर से घूम घूम कर लोगों को जंगे आजादी के लिए जागृत किया, लेकिन दिल्ली के गद्दार साथी को मारने की उस घटना में उनकी सूझबूझ और बहादुरी को देखते हुए उन्हें सैंडर्स हत्याकांड में शामिल कर लिया गया।

17 दिसंबर 1928 की तारीख तय हुई। लाहौर के पुलिस कार्यालय के बाहर क्रांतिकारी साथी जय गोपाल को तैनात कर दिया गया। वो अपनी बिगड़ी हुई साइकिल को सुधारने का अभिनय करने लगा। पुलिस कार्यालय के सामने वाली सड़क पर भगत सिंह और राजगुरु खड़े होकर पढ़ाई लिखाई की बातें करने लगे। पुलिस कार्यालय के सामने ही डीएवी कॉलेज था। उसके फाटक की ओट में चंद्रशेखर आजाद अपना माउजर पिस्तौल लिए भगत सिंह और राजगुरु की सुरक्षा में तैनात हो गए कि घटना के बाद अगर किसी ने भगत सिंह और राजगुरु का पीछा किया तो वो उसे मार गिराएंगे। शाम के 5 बज रहे थे। सैंडर्स बाहर निकला और अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर उसे स्टार्ट करने लगा। उसे ऐसा करता देख जयगोपाल ने अपनी साइकिल की ठुक ठुक बंद की और उठकर खड़ा हो गया। ये इशारा था भगत सिंह और राजगुरु के लिए। दोनों के हाथ अपनी जेबों में चले गए। भगत सिंह ने सोचा गोली खाली न जाए, इसलिए बेहतर होगा कि सैंडर्स को और पास आने दिया जाए। लेकिन राजगुरु को भला सब्र कहां था। उन्होंने तुरंत पिस्तौल निकाली और गोली दाग दी। उनका निशाना अचूक था। गोली सैंडर्स के माथे पर लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। अब भगत सिंह ने भी 4-6 गोलियां जड़ दी। गोलियों की आवाज सुनकर एक पुलिस इंस्पेक्टर फर्न बाहर दौड़ा। जब उसने भगत सिंह को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तब राजगुरु की पहलवानी काम आई। उन्होंने अपने दोनों हाथों में इंस्पेक्टर फर्न को ऊपर उठा लिया और पूरी ताकत के साथ जमीन पर पटक दिया। उसके बाद फर्न उठ नहीं सका। अब 3 सिपाही उनकी ओर दौड़े। आजाद ने कड़कती आवाज में गोली मार देने की चेतावनी दी। 2 सिपाही तो लौट गए, लेकिन हवलदार चानन सिंह आगे बढ़ने लगा। आजाद ने उसके पैरों पर गोली चलाई, लेकिन जब लंगड़ाता हुआ भी वो आगे बढ़ने लगा तब उसे चंद्रशेखर आजाद ने मार गिराया। लाहौर के चप्पे चप्पे में पुलिस छा गई, लेकिन इस नाकेबंदी के बीच भी जिस अनोखे ढंग से ये सभी क्रांतिकारी लाहौर से बाहर निकले, इतिहास का वो पन्ना भी बेहद रोचक है। भगत सिंह ने एक अंग्रेज अधिकारी का वेश बनाया और भगवती चरण वोहरा की पत्नी दुर्गा भाभी अपने 3 वर्षीय पुत्र के साथ भगत सिंह की पत्नी बनकर चल पड़ी। राजगुरु उनके नौकर बन गए। और उधर चंद्रशेखर आजाद ने साधु का वेश बनाया और सभी लोग लाहौर से बाहर हो गए। इस घटना ने ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया। भगत सिंह ने दल की ओर से चिट्ठी जारी करते हुए कहा, जेपी सैंडर्स मारा गया, लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया गया। आज संसार ने देख लिया कि हिंदुस्तान की जनता निष्प्राण नहीं हो गई है, उनका खून जम नहीं गया, वो अपने राष्ट्र के सम्मान के लिए प्राणों की बाजी लगा सकती है।

अपने क्रांतिकारी जीवन में राजगुरु अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी मानते थे भगत सिंह को। ये स्वाधीनता संग्राम में आगे बढ़कर मौत को गले लगाने की प्रतिस्पर्धा थी। यही कारण है कि दिल्ली असेंबली में बम फेंकने के बाद गिरफ्तारी देने के लिए भगत सिंह के साथ वो स्वयं जाने की जिद पर अड़ गए। आजाद ने उन्हें समझाया कि इसमें बयान देने का सवाल आएगा, तुम अंग्रेजी नहीं जानते हो, गिरफ्तारी के बाद तुम्हें भगत सिंह से अलग कर दिया जाएगा। उन हालात में अगर तुम बम फेंकने के राजनैतिक महत्व को एक अच्छे बयान द्वारा न समझा सके तो केस का सारा महत्व ही खत्म हो जाएगा। इस पर राजगुरु ने दलील दी कि आप भगत सिंह से कहकर मेरे लिए अंग्रेजी में एक बयान लिखवा दीजिए, मैं उसे कॉमा फुल स्टॉप के साथ कंठस्थ कर लूंगा, आप सुन लीजिएगा, अगर एक कॉमा की भी भूल हो जाए तो मुझे मत भेजिएगा। कैसी दीवानगी थी ये। पद, पैसा, प्रतिष्ठा के लिए होड़ तो आम बात है, लेकिन स्वातंत्र्य समर में मौत को गले लगाने की ये होड़ एक ईमानदार क्रांतिकारी के भीतर ही हो सकती थी। बहरहाल बात बनी नहीं और राजगुरु नाराज होकर पूना चले गए। असेंबली बम कांड में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच नागपुर में राजगुरु की मुलाकात केशव बलिराम हेडगेवार से हुई, जिनके साथ उन्होंने आगे की योजना बनाई। लेकिन इस योजना पर वो चल पाते उसके पहले ही 30 सितंबर सन 1929 को वो पूना में गिरफ्तार हो गए। जब भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंक कर अपनी गिरफ्तारी दी तो गिरफ्तार हुए सारे क्रांतिकारियों को मुकदमा चलाए जाने के लिए लाहौर में फिर इकट्ठा किया गया। इस प्रकार राजगुरु भगत सिंह से फिर जा मिले। वो इस बात से खुश थे कि शहादत के रास्ते पर अब वो भगत सिंह से पीछे नहीं रहेंगे। जेल में हुई भूख हड़ताल के दौरान जब डॉक्टर ने राजगुरु को दूध पिलाने के लिए गले में नली डाली तो राजगुरु ने लंबा संघर्ष किया और दूध पेट में न जाकर फेफड़ों में पहुंच गया। उन्हें निमोनिया हो गया। राजगुरु खुश थे कि वो भी यतीन्द्रनाथ दास की तरह अनशन में मृत्यु का वरण कर भगत सिंह से पहले शहीद हो जाएंगे। अनशन से घबराकर सरकार ने क्रांतिकारियों की मांगें मान ली। हड़ताल स्थगित करने का फैसला हुआ। भगत सिंह ने दूध का गिलास राजगुरु के होठों से लगाते हुए कहा, आगे भागना चाहते थे बच्चू? राजगुरु ने मजाक किया, मैं सोच रहा था पहले जाकर तेरे ठहरने के लिए वहां कोई कमरा बुक करा लूं। बगैर नौकर के अब तुमसे कोई सफर कहां हो सकेगा। सैंडर्स को मारने के बाद राजगुरु भगत सिंह के नौकर के रूप में जो लाहौर से बाहर निकले थे उनका इशारा उसी ओर था। राजगुरु के गाल पर एक हल्की सी चपत देते हुए भगत सिंह ने कहा, अच्छा दूध पियो, वादा करता हूं अब तुमसे सूटकेस कभी नहीं उठवाऊंगा। और दोनों हंस पड़े। हंसी मजाक, शरारत और गीत संगीत से जिंदगी बनाए रखने वाले व्यक्ति थे राजगुरु। लेकिन फांसी की सजा सुनाए जाने से कुछ सप्ताह पहले राजगुरु काफी गंभीर रहने लगे थे। सभी चिंतित हो गए। कुछ को लगा कि मौत को इतना निकट देखकर राजगुरु परेशान हो उठे हैं। एक दिन शाम के धुंधलके में बैरक के बरामदे में जंगलों के पास अकेले बैठे राजगुरु एकटक बाहर की तरफ देख रहे थे। तभी शिव वर्मा उनके पास आए और पूछा, क्या मौत से डर रहे हो या जो कुछ किया है उसका पश्चाताप है? राजगुरु पहले तो मुस्कुराए, फिर गंभीर होकर कहने लगे, कम से कम तुमसे ऐसे सवाल की आशा नहीं थी। मैं मौत से नहीं डरता, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम लोगों के बीच आने से पहले जीवन के 19 साल मैंने इसी दुनिया में गुजारे थे। मेरी जिंदगी का हर क्षण बोझ था। उस अपमानित जीवन में ये दुनिया मेरे लिए नरक से भी बदतर थी। फिर इन 3 सालों में ही कौन सा जादू हो गया कि यही दुनिया इतनी हसीन लगने लगी है। तुम लोगों का साथ छोड़कर जाने की सोचने पर दर्द होता है। इस प्यार के 2 क्षण और मिल जाएं, ये कौन नहीं चाहेगा। इस स्वाभाविक इच्छा को क्या मौत से डरना कहोगे? और फिर दोनों के बीच बहुत देर तक खामोशी बहती रही।
धीरे धीरे फैसले का दिन आ गया। 7 अक्टूबर सन 1930 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी गई। फांसी की कोठरी में राजगुरु का पुराना स्वभाव वापस आ चुका था। मस्ती, मजाक, छेड़खानी और गाने का सिलसिला फिर चल पड़ा। और जब अंतिम दिन 23 मार्च 1931 की शाम को राजगुरु की कोठरी खोली गई तो बुलंद नारों के साथ उन्होंने दूसरे साथियों को सूचना दे दी कि अब चलने का समय आ गया है। ढलते सूरज की मध्यम रोशनी में राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव के साथ जैसे नई दुनिया बसाने के लिए स्वर्ग का द्वार खोलने निकल पड़े। भारत के ऐसे महान सपूत को हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिव शेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: अभी आप सुन रहे थे महापुरुषों के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम वतन का राग। आज का कार्यक्रम क्रांतिकारी राजगुरु के जीवन पर केंद्रित था। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: थोम कोरिया की मौत। फरवरी 1623 की एक उमस भरी शाम को अम्बोइना के सुदूर द्वीप पर थोम कोरिया नामक एक 50 वर्षीय सैनिक का जीवन अपने हिंसक अंत की ओर बढ़ रहा था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड में उसे आधिकारिक तौर पर एक जापानी सैनिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन उसका नाम एक भूले हुए वतन और आधुनिक एशिया की अशांत समुद्री धाराओं से परिभाषित जीवन की गूंज समेटे हुए था। थोम का जन्म 1573 में जापान में नहीं बल्कि कोरिया में हुआ था। उसका जीवन संभवतः 1590 के दशक में तब तहस नहस हो गया जब जापानी सेनापति टोयोटोमी हिदेयोशी ने कोरियाई प्रायद्वीप पर क्रूर आक्रमण किया। जापानी सामंतों द्वारा हिराडो बंदरगाह पर लाए गए सैकड़ों कैदियों में युवा थोम भी शामिल था। क्यूशू की महानगरीय दुनिया में कैदी अक्सर निवासी बन जाते थे और पूर्व दुश्मन निहोनमाजी जापानी बस्तियों में नया जीवन तलाशते थे। अधेड़ उम्र तक पहुंचते पहुंचते थोम ने खुद को पूरी तरह बदल लिया था और एक यूरोपीय कंपनी राज्य की सेवा में मर्सनरी के रूप में एक स्थिर वेतन की तलाश करने लगा। थोम को अवसर तब मिला जब डच कंपनी, जो हमेशा सैनिकों की कमी से जूझती थी, उसने सीधे जापान से सैनिकों की भर्ती का एक महत्वाकांक्षी प्रयोग शुरू किया। डच अधिकारियों का मानना था कि जापानी एक विशेष मार्शल रेस यानी लड़ाकू प्रजाति थे। कंपनी की नज़र में थोम की वास्तविक जातीयता अप्रासंगिक थी। चूंकि उसे एक जापानी बंदरगाह में भर्ती किया गया था, इसलिए उसे एक पेशेवर जापानी सैनिक के रूप में ही भेजा गया। भर्ती के ये अनुबंध अत्यंत कठोर थे। थोम ने संभवतः जापानी लिपि में अनुवादित 3 साल के कठोर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें मौत की सजा के डर से डच अधिकारियों की हर बात मानने का संकल्प लिया गया था। इन समझौतों की एक खास बात सामूहिक दंड थी। यदि कोई सैनिक भागता या विद्रोह करता तो VOC जापान में मौजूद उसके माता पिता, पत्नी और बच्चों को सजा देने का अधिकार रखती थी। ये प्रयोग अम्बोइना साजिश ट्रायल के रूप में एक दुखद और डरावने मोड़ पर समाप्त हुआ। संदेह तब शुरू हुआ जब शिचिजो नामक एक साथी सैनिक ने डच संतरी से निकले के पहरे स्टेशन के बारे में कुछ ज्यादा ही सवाल पूछ लिए। यातना के असहनीय दबाव में शिचिजो और अन्य लोगों ने अंग्रेजों के लिए किला हथियाने की एक बड़ी साजिश का कबूलनामा दे दिया। थोम कोरिया भी इस उन्माद की चपेट में आ गया। उसे 1623 में 9 अन्य जापानी सैनिकों और 10 अंग्रेज व्यापारियों के साथ मौत के घाट उतार दिया गया। उसका जीवन संवादात्मक प्रभुत्व यानी इंटरेक्टिव डोमिनेंस के उस वैश्विक युग का एक ज्वलंत प्रमाण है जहां एक कोरियाई लड़का जापानियों द्वारा बंदी बनाया जा सकता था और एक डच सैनिक के रूप में मर सकता था।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार,
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। इस कार्यक्रम में आज का विषय है भूमि, मिट्टी और प्रकृति। इस कार्यक्रम को स्वर देंगे वर्षा सिंह और दीपक नेमा।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM। कार्यक्रम है प्रकृति की पुकार। मैं हूँ धरा।
3: मैं हूँ

0: एक बीज था, गया बहुत ही गहराई में सोया। उसी बीज के अंतर में था नन्ना पौधा सोया। उस पौधे को मंद पवन ने आकर पास जगाया। नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया। सूरज बोला, प्यारे पौधे निंद्रा दूर भगाओ, अलसाई आंखें खोलो तुम, उठकर बाहर आओ। आंख खोलकर नन्हे पौधे ने ली जब अंगड़ाई, एक अनोखी नई शक्ति सी उसके तन में आई। नींद छोड़ आलस त्याग कर पौधा बाहर आया, बाहर का संसार बड़ा ही उसने अद्भुत पाया।
1: वाह वाह धरा वाह, कितनी सुंदर कविता है ये, हमने बचपन में शायद दूसरी या तीसरी कक्षा में पढ़ी थी।
0: हाँ हाँ बादल, बिल्कुल, लेकिन तब हमने इस कविता को सिर्फ पढ़ा था और रट लिया था, पर इसमें छिपी गूढ़ बातें अब समझ में आई हैं।
1: हाँ हाँ ये सही है कि प्रकृति से हमें वो सभी संसाधन मिलते हैं जो एक तरह से हमारी मदद करते हैं, ये हमें बढ़ने और विकसित करने में हमें सहयोग देते हैं।
0: यदि प्रकृति से बल्कि हमारी इस धरती से हमें वो सब मिलता है जो हमारे जीने के लिए आवश्यक है।
1: धरा, एक कहावत हम अक्सर कहते हैं, मिट्टी के मोल, लेकिन ये कहावत प्रकृति से मिले लाभ के लिए है, पर उस मिट्टी को चरितार्थ नहीं करती।
0: वो कैसे?
1: वो ऐसे कि अगर प्रकृति ने हमें भूमि आदि मिट्टी अगर नहीं दी होती तो हम अपना पेट कैसे भरते, और इस मिट्टी से उपजी हर फसल पृथ्वी के हर प्राणी के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी हमारे लिए।
0: पृथ्वी से अपनी फसल के लिए ऋग्वेद में कहा है, आपने भी जरूर पढ़ा होगा कि खेत में पैदा अनाज का क्रम से बंटवारा किया जाना चाहिए।
1: अगर बुरा ना मानो तो एक बात बताऊं?
0: हाँ हाँ जरूर, इसमें बुरा मानने की क्या बात है।
1: देखो, पहला हक जमीन में 4 उंगल भूमि गेहूं की बालों के नीचे पशुओं का, ठीक है। अब फसल की पहली बाली अग्नि की, और गेहूं के दानों को अलग करके मुट्ठी भर दाना पक्षियों का,
0: और इसके बाद आटा बनाने पर मुट्ठी भर आटा चींटियों का, चुटकी भर गुंधा हुआ आटा मछलियों का, फिर उस आटे की पहली रोटी गौ माता की,
1: और घर में तैयार खाने की पहली थाली घर के बुजुर्गों की, फिर अपनी थाली, और फिर आखिरी रोटी कुत्ते को दी जाए।
0: हाँ, हमारी संस्कृति हमें यही सिखाती है कि प्रकृति में अन्य जीवों और प्राणियों के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी है।
1: हाँ, हमारी भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है जिसका उपयोग हम कभी वानिकी और खनन में करते हैं।
0: बिल्कुल, देखा जाए तो भूमि का उपयोग खेती, आवास, उद्योग, व्यापार, आना जाना, मनोरंजन सभी कामों में है। तो इतने कामों के इस संसाधन का उपयोग हम ऐसे करें कि इससे नुकसान ना हो।
1: हमें खेती के लिए मिट्टी की गुणवत्ता का ध्यान रखना होगा। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है।
0: हाँ, परंतु अब के समय में बढ़ती जनसंख्या के कारण मांगे बढ़ रही हैं, और इस कारण वन भूमि और खेती की भूमि का दोहन हो रहा है। इससे प्रकृति की दी हुई नेमत कम होती जा रही है।
1: बिल्कुल सही धरा, और इसके साथ ही कम स्थान में अधिक और जल्दी पैदावार के लिए रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग किया जा रहा है। इससे हमारी भूमि की प्रकृति नष्ट हो रही है।
0: खनन इतना ज्यादा हो रहा है कि लगातार भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी और तूफान सक्रिय हो रहे हैं।
1: पहाड़ी स्थान में भूस्खलन आए दिन होते रहते हैं। ऐसा लंबे समय तक लगातार वर्षा होने के कारण होता है। ये एक ऐसी आपदा है जो चिंता का मुख्य विषय है।
0: भूमि के उपयोग में मानव द्वारा किया गया परिवर्तन, जैसे कृषि भूमि, वन भूमि का कम होना, शहरीकरण के लिए अधिक भूमि का उपयोग करना है, हमारी भूमि को प्राकृतिक परिदृश्य से बिगाड़ रहा है।
1: बिल्कुल सही धरा, और ये बदलाव पर्यावरण, समाज और हमारी अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा प्रभाव डालता है।
0: बिल्कुल, भूमि के उपयोग का परिवर्तन से हमारी जैव विविधता भी प्रभावित होती है, साथ ही मिट्टी की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
1: इसीलिए भूमि उपयोग परिवर्तन एक ऐसी खतरनाक प्रक्रिया है जिसके नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए ठोस कदम उठाने जरूरी हैं।
0: जी हाँ, देखा जाए तो मानव गतिविधियों के कारण उपजाऊ भूमि में मरुस्थलीकरण बढ़ता जा रहा है, और वनस्पति में कमी आती जा रही है।
1: हाँ, तापमान साल दर साल बढ़ता जा रहा है, वर्षा कम हो रही है, वनों की कटाई निरंतर जारी है, सिंचाई के तरीकों का गलत उपयोग, ऐसी गतिविधियाँ मरुस्थलीकरण को बढ़ा रही हैं।
0: शहरीकरण के कारण मिट्टी की उपजाऊ ऊपरी परत, जिसमें पौष्टिक व भरपूरता होती है, नष्ट होती जा रही है, भूमि बंजर हो रही है।
1: इसका परिणाम फसल का उत्पादन कम होने के कारण खाद्य पदार्थों में कमी होती है और किसान की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये सभी एक बहुत ही गंभीर समस्या है।
0: इस समस्या से निपटने के लिए हम सभी की भागीदारी आवश्यक है। बेहतर सिंचाई तकनीक और जल संरक्षण के उपाय अपनाकर हम मरुस्थलीकरण को रोकने में मदद कर सकते हैं।
1: हम अपने कार्यकलापों में परिवर्तन कर इस सिकुड़ती भूमि को बचा सकते हैं। आज पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है।
0: ये एक ऐसी भौगोलिक घटना है जिसमें हमारी उपजाऊ भूमि क्षेत्रों में मरुस्थल ऐसी विशेषताएं विकसित हो रही हैं। इससे वहाँ के रहवासी घबरा कर पलायन भी कर रहे हैं।
1: हाँ, क्योंकि ऐसी स्थिति में जमीन की उत्पादन क्षमता तो कम होती ही है, साथ ही हमारी प्राकृतिक वनस्पतियाँ भी खत्म होती जाती हैं।
0: मरुस्थलीकरण ये न केवल मानवीय जीवन बल्कि वन्य जीव भी प्रभावित कर रहा है। भूमि के बंजर होने से कृषि भूमि क्षेत्र कम हो रहे हैं।
1: हाँ धरा, यदि इस पर काबू नहीं पाया गया तो भविष्य में खाद्यान्न संकट गंभीर रूप ले सकता है। इससे निपटने के लिए पूरे विश्व को एकजुट होने की आवश्यकता है।
0: जी हाँ, भूमि की कमी नदियों के कटाव से प्रभावित होती है, हवा से भी मिट्टी के कटाव पर असर होता है।
1: वनों की कटाई मरुस्थल बढ़ने का प्रमुख कारण है। बढ़ती जनसंख्या के कारण पेड़ पौधों और वनस्पतियों को काटा जा रहा है। इस कारण कमल जंगल छोटे होते जा रहे हैं और मरुस्थल का बढ़ावा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है।
0: और इससे बचने के लिए सबसे पहले वृक्षारोपण तेजी से बढ़ाना है और वनों की कटाई एकदम से रोक दी जानी चाहिए।
1: हाँ, और इसके साथ ही मरुस्थली क्षेत्र के अनुकूल पौधों को लगाया जाए, मिट्टी के कटाव को रोका जाए
0: और कृषि कार्यों के अत्यधिक रासायनिक खाद के प्रयोग को भी रोका जाए। सिंचाई में भी मरुस्थली क्षेत्र के अनुसार काम किया जाए।
1: इसके साथ खनन गतिविधियों को तुरंत आवश्यकता से अधिक न किया जाए।
0: बिल्कुल, इस समस्या पर सबसे जल्दी नियंत्रण तभी हो सकता है जब वृक्षारोपण की दर को तेजी से बढ़ाया जाए, तो इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है।
1: परंतु देखने में आता है कि संसाधनों की कमी हम मनुष्यों को प्रतिस्पर्धा में घसीटती है और जब ये प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तो संसाधन अपने आप ही कम से कमतर होते जाते हैं।
0: किसी भी संसाधन का उपयोग हमारे हित में हो या आर्थिक क्रिया के रूप में, जिससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति संभव हो, पर इसकी उपयोगिता हमारे वास्तविक उपयोग से जुड़ी हुई होना चाहिए।
1: नहीं तो प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा, अकाल और बाढ़ का प्रकोप बना ही रहेगा। इससे भूमि का दुरुपयोग या वैज्ञानिक तरीकों की अनदेखी विनाश का आमंत्रण है।
0: हाँ, पर ये वातावरण तहरीली की समस्या का अभी भी समाधान हो सकता है, लेकिन तब तक बिना समय गवाए संसाधनों को रोककर हम व्यवस्थित होकर अपनी दिनचर्या और अन्य कार्यों को रोकने में कड़े अनुशासन को अपनाएं।
1: पानी की एक एक बूंद को सुरक्षित कर उसका सही उपयोग करें। वन क्षेत्र जितने भी बचे हैं उन्हें सुरक्षित कर लुप्त वनस्पति एवं जीव जंतुओं को संरक्षित करने में सहायता करें।
0: ईंधन की आवश्यकता होने पर अंधाधुंध वनों की कटाई ना करें, उन्हें नष्ट ना करें। पौधारोपण को बढ़ावा दें। बंजर भूमि है उसे ठीक कर पौधे लगाएं। सड़क या नदी तालाब के किनारों पर पेड़ लगाएं।
1: बिल्कुल सही कहा धरा। सौर ऊर्जा का विकास कर ऊर्जा की समस्या भी हल की जा सकती है। इससे काफी हद तक लकड़ी का उपयोग कम होगा और ये खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लाभदायक रहेगा।
0: इस तरह स्वयं तो पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें, साथ ही औरों को भी ऐसा ही करने को कहें और इसके महत्व को समझाएं। इन बातों पर अमल करके ही हम पर्यावरण की सुरक्षा कर पाएंगे।
1: अगर अभी भी घर नहीं चेते तो पर्यावरण के गिरते स्तर का परिणाम हमें जल्दी ही और अधिक विभिन्न रूपों में भुगतना होगा।
0: हाँ, और यदि ऐसा हुआ तो इससे हम मानव ही नहीं बल्कि पूरी प्रकृति की समस्त क्रियाएं अपनी विपरीत दिशा की ओर न सिर्फ कदम उठा रही हैं, बल्कि आगे और तेजी से बढ़ती जाएंगी।
1: हाँ, प्राकृतिक आपदाएं तभी आती हैं जब प्रकृति के प्रतिकूल दशा होती है। जैसे जो मिट्टी या भूमि उर्वरा होती है वो उत्पादन करना बंद कर देती है।
0: जो वर्षा समय पर होती है वो कम या अधिक होने लगती है, या फिर समय से पहले या समय निकलने के बाद भी नहीं होती। यानी दोनों ही सूरत में हमें नुकसान ही उठाना पड़ता है।
1: पृथ्वी का तापमान भी सामान्य ना होकर कम या ज्यादा हो जाता है, और ये सभी प्रकृति की गतियाँ हमारे जीवन को खतरे में डाल रही हैं।
0: हाँ, और पृथ्वी का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। ऐसे में हम अपनी आवश्यक संसाधनों को भी नहीं जुटा पाएंगे और अनेक विपदाएं जन्म लेती रहेंगी।
1: पर्यावरण में आए इस असंतुलन को पुनः नियंत्रण में करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हम प्रकृति के प्रदत्त संसाधनों का उपयोग इतना अधिक कर रहे हैं, वे सब समाप्ति की ओर जा रहे हैं।
0: यदि हम इनका इस तरह से दोहन करते रहे तो ये प्राकृतिक संकट स्वयं नहीं आता, बल्कि हम मनुष्य अपने क्रियाकलापों के द्वारा इसे आमंत्रण दे रहे हैं।
1: हाँ, अपने विकास के लिए हम प्रकृति का खुलकर उपयोग करते हैं, लेकिन अब हम इतना उपयोग कर रहे हैं कि संसाधन समाप्ति की ओर हैं। हमने ही इनका शोषण किया है और हम ही प्रकृति में इस असंतुलन के उत्तरदायी हैं।
0: हमें अपने कार्यकलापों में परिवर्तन लाकर इस सिकुड़ती भूमि को बचाना है। आज पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है। सूखा पड़ने की स्थिति तो और भी भयानक होती है। गांव की तस्वीर बड़ी ही हृदय विदारक हो जाती है। किसानों के पास कोई काम नहीं होता।
1: घर के पालतू जानवरों के भोजन की व्यवस्था ना होने के कारण या तो वे खत्म हो जाते हैं या फिर उन्हें जंगलों में छोड़ दिया जाता है, और तब लोग शहर की ओर रुख कर लेते हैं।
0: निसंदेह सूखा और अकाल एक हृदय विदारक और गंभीर संकट है। इस तरह बाढ़ भी एक ऐसी ही प्राकृतिक विपदा है जिससे बचना बड़ा ही मुश्किल काम है।
1: बिल्कुल सही कहा थरा। बाढ़ तो केवल प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित कर ही संभव है। इसके लिए बांधों का आवश्यकता अनुसार निर्माण बहुत जरूरी है।
0: इसी तरह भूस्खलन को भी प्राकृतिक विपदा ही माना जाता है, परंतु ये हम मानवों द्वारा किए गए खनन और वृक्षों की कटाई के कारण ही है।
1: और भूस्खलन की आए दिन होने वाली घटनाओं के कारण जिन स्थानों की अर्थव्यवस्था केवल पर्यटक पर ही टिकी होती है, वो भी अब बहुत डगमगाने लगी है।
0: पर्यावरण के प्रभाव में मिट्टी का भी प्रमुख रूप से योगदान होता है। इसे अगर यूं कहा जाए कि मिट्टी परिस्थिति की जननी होती है तो गलत ना होगा, क्योंकि जो भी व्यवस्था स्थापित होती है उसका आधार मिट्टी तो होती ही है बादल।
1: हाँ धरा, जीव जंतु पौधे वनस्पति और मानव सभी मिट्टी से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। यहाँ तक कि प्राकृतिक दिशाएं भी मिट्टी से ही संबंधित होती हैं। ये मिट्टी भी एक प्राकृतिक तत्व है।
0: मिट्टी जब अपने पोषक तत्व भौतिकीय बनावट और रासायनिक संरचना खाने लगती है तो मिट्टी का विघटन प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार भूमि का क्षय होता है।
1: ईश्वर ने हमें सब कुछ बहुत सुंदरता से देखने के लिए बनाया है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस प्रकृति के रिश्ते के साथ हमारी भी कोई जिम्मेदारी है।
0: जी हाँ, अगर हमें स्वस्थ और चिंता मुक्त बढ़ना है तो अपने स्वार्थी और गलत कामों को रोकते हुए अपने ग्रह पृथ्वी को, अपनी धरती की सुंदरता को बचाना होगा और इसकी बिगड़ती प्रकृति को बेहतर करना होगा।
1: बिल्कुल, क्योंकि प्रकृति के असली उपयोगता तो हम ही हैं, तो इसे बचाना भी होगा। वो कहते हैं ना, जितना गहरा जोते खेत, बीज पड़े फल उतने देत।
0: यानी कि जितना गहरा हम खेत जोतेंगे और तब उसमें बीज डालेंगे तो फसल उतनी ही अच्छी होगी। तो मित्रों, आज हमने ढेर सारी बातें की प्रकृति के संरक्षण, मिट्टी के बचाव के बारे में, और निश्चित तौर पर आपको हमारी ये बातें बहुत ही काम की लगी होंगी। लेकिन अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का।
1: तो दोस्तों, मैं था आपके साथ बादल,
0: और मैं धरा।
1: इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़,
2: ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, और लेखन प्रमिला मुंशी दिवाकर का।
1: मैं था आपके साथ दीपक निमा,
0: और मैं थी आपके साथ वर्षा सिंह, और आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। तो अब चलते हैं, आप सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM।
1: नमस्कार।

0: प्रकृति की पुकार। इस कार्यक्रम में आज का विषय था भूमि, मिट्टी और प्रकृति। इस कार्यक्रम को स्वर दे रहे थे वर्षा सिंह और दीपक नेमा। इसके साथ ही हमारा आज का प्रकृति की पुकार कार्यक्रम संपन्न होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं कनिका तिवारी और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश।

मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों को फिनाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: नमस्कार,
2: नवे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम योग संवाद। इस कार्यक्रम में आज का विषय है पौरुष की प्रधानता और प्रारब्धवाद का खंडन। इस विषय पर जानकारी देंगे जीवन कला विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी और इनसे बातचीत करेंगी सुनीता सिंह। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम योग संवाद।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, भाग्य और कर्म की लड़ाई शायद मनुष्य के जीवन की सबसे पुरानी उलझन है। एक ओर विश्वास है कि जो भाग्य में लिखा है वो होकर रहेगा, और दूसरी ओर कर्म की पुकार है कि मनुष्य अपने पुरुषार्थ से अपनी राह स्वयं बना सकता है। दो मत हैं, दो धारणाएं हैं, और इनके बीच सदियों से एक प्रश्न खड़ा है कि सच क्या है। क्या भाग्य की लकीरों में ही लिखी होती है जीवन की हर कहानी? क्या प्रारब्ध के आगे मनुष्य का पुरुषार्थ, उसका संकल्प, उसका साहस सब कुछ व्यर्थ हो जाता है? एक प्रश्न मानव मन को मथता रहा है कि क्या जीवन की डोर केवल प्रारब्ध के हाथों में है, या मनुष्य का पौरुष उस डोर को अपने संकल्प से नई दिशा दे सकता है। और यही ज्ञानी जन उपदेश करते हैं कि नहीं, मनुष्य केवल परिस्थितियों की धारा में बहता हुआ एक तिनका नहीं है, उसके भीतर वो चेतना है जो दिशा बदल सकती है, सोए हुए सामर्थ्य को जगा सकती है और असंभव के द्वार पर भी दस्तक दे सकती है। प्रारब्ध यदि बीते हुए कर्मों की छाया है तो पुरुषार्थ वर्तमान में जलता हुआ वो दीप है जो भविष्य का मार्ग प्रकाशित करता है। यहाँ प्रश्न केवल भाग्य का नहीं बल्कि उस मनुष्य का है जो अपने पुरुषार्थ से स्वयं को पहचानने और अपने जीवन को रूप देने का साहस करता है। योग वासिष्ठ इसी पुरुषार्थ की महिमा का उद्घोष करता है, उठो, जागो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि जीवन की दिशा केवल भाग्य नहीं जागृत पुरुषार्थ भी तय करता है। तो आइए योग संवाद कार्यक्रम में आज चर्चा करें पौरुष की प्रधानता और प्रारब्धवाद के खंडन पर, यानी आज की चर्चा में है भाग्य और कर्म की प्रधानता का विश्लेषण। इस बातचीत के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
3: नमस्कार।
1: बहुत ही रोचक सा विषय है आज का
3: जी।
1: और हमारे श्रोता भी जरूर इस विषय पर कभी ना कभी जीवन में उन्होंने सोचा होगा। अक्सर ये होता है कि पुरुषार्थ जब सिद्ध नहीं होता है तो मनुष्य भाग्यवादी हो जाता है। तो मेरे मन में प्रश्न यही है कि मनुष्य के पुरुषार्थ की सिद्धि कैसे होती है?
3: बहुत सुंदर सवाल किया आपने, और यही वशिष्ठ जी श्री राम को समझा रहे हैं
1: जी।
3: कहते हैं रघुनंदन, जैसे नीले पीले आदि विभिन्न रंगों की अभिव्यक्ति में प्रकाश ही मुख्य कारण है, उसी प्रकार शास्त्र के अनुसार मन, वाणी और शरीर द्वारा व्यवहार करने वाले अधिकारी पुरुषों के समस्त पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। अब यहाँ पर विचार करने योग्य ये है कि शास्त्र के अनुसार मन, वाणी और शरीर का व्यवहार यानी कर्म, हम लोग मन, वचन, कर्म पर बहुत बात करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा,
1: जी जी,
3: लेकिन हम लोग इस पर विचार नहीं करते कि हमारा मन क्या सोचता है, हम अपनी वाणी से क्या बोलते हैं और कर्म क्या करते हैं। यानी इन तीनों में आप देखें तो कहने में, बोलने में और करने में इतना भेद है कि हम मन से कैसी कैसी अपनी कल्पनाएं, कैसी कैसी फैंटेसी क्रिएट करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जो हम सोच रहे हैं उसके अनुसार क्या हम बोल भी रहे हैं। बोलेंगे तभी जब सोच और बोलने में एकता हो। आजकल तो इस पर आधुनिक जो मोटिवेटर हैं वो बहुत सारी लोग इस बात को कह रहे हैं कि मैनिफेस्ट करो, ये करो, वो करो, लेकिन हजारों साल पहले भारतीय ज्ञान परंपरा में ऋषियों ने वो सूत्र बताए हैं, जब शास्त्र विहित हम कर्म नहीं करते। शास्त्र विहित कर्म का अर्थ ये कदापि नहीं है, कई लोग इसका अर्थ ये निकालते हैं कि शास्त्रों को थोपा गया है, क्योंकि शास्त्र जिस समय लिखे गए उस समय की दुनिया अलग थी। आज जो दुनिया है वो डिजिटल दुनिया है, आज लोग कहां जा रहे हैं, तो आज के लिए कैसे वो समीचीन हो सकता है। शास्त्र का मतलब होता है कि जो सत्य है, जो नियम है, वो कभी नहीं बदलेगा। नियमों में नए नए नियम, नई नई जानकारियां जुड़ेंगी। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि पुरानी जानकारियां गलत हो गई।
4: जी जी,
3: है ना, पुरानी जानकारियां भी मौजूद हैं। अगर पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत अगर न्यूटन ने दिया, तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को आज नकार दिया गया।
4: बिल्कुल,
3: वो ज्ञान है। तो ऐसे ही शास्त्र ज्ञान है, जहां पर सत्य को उद्घाटित करने के नियम बताए गए हैं, इसलिए ऋत कहा गया। ऋत मतलब सत्य। सत्य की खोज शास्त्रों में हुई है और ऋषियों ने देखा है, तो इसलिए जो शास्त्र कहते हैं उसके अनुसार मन से चिंतन करो, और फिर जो चिंतन करो उसके अनुसार बोलो,
4: बोलो,
3: वही आप अपने कर्म में करो। क्योंकि जो आप बोलते हैं वो आपका मस्तिष्क सुनता है। लैंग्वेज जैसे

0: कि हम लोग 80% ऐसे विचार करते हैं, ये तो शुद्ध सिद्ध है कि जो विचार हमारे किसी काम के नहीं है उन विचारों में हम संलग्न रहते हैं
1: जी।
0: हम ऐसी भाषा बोलते हैं जिन भाषा को सुन करके हम खुद ही दुखी हो जाए, खुद ही डिमोरलाइज हो जाए, हमारा आत्मविश्वास डिग जाए
1: जी।
0: उस हिसाब से फिर हमारा शरीर का जो हमारा जो मस्तिष्क है वो हमारे शरीर को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। तो पुरुषार्थ की सिद्धि तभी होगी जब शास्त्र के अनुसार मन विचार करेगा। विचार में यहाँ थोड़ा सा मैं विस्तार दूंगा कि श्रवण मतलब शास्त्र को सुने, फिर मनन करें, फिर उसका निधिध्यासन करें। अद्वैत में ये तीन स्टेप कहा जाता है कि श्रवण मनन निधिध्यासन। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप वैसा बोलने भी लगेंगे और जो बोलेंगे वही आपका शरीर सुनेगा, फिर उसी अनुसार वो व्यवहार करेगा। और अगर ऐसा आपने किया तो आपका पुरुषार्थ निश्चित ही सिद्ध होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जेहिकर जेपर सत्य स्नेहु तेहिके मिले ही न कछु संदेहु। कितनी बड़ी बात बोली उन्होंने सामान्य शब्दों में कि आपका सत्य स्नेह तो हो और वो कैसे दिखेगा, मन वचन कर्म से दिखेगा। ऐसा नहीं कि आप कर्म से कुछ और करें, मन से कुछ और सोचें और से कुछ और बोले, है ना।
1: जी,
0: तो
1: जी,
0: ऐसा
1: जी।
0: ये योग होना चाहिए
1: जी, जी,
0: इन तीनों का योग, मन अच्छा, वचन कर्म का
1: जी। अच्छा ये बताएं कि मोह में फंसने का मुख्य कारण क्या है।
0: मोह में फंसने का मुख्य कारण सिर्फ ये है कि मनुष्य केवल मन से किसी वस्तु की इच्छा करता है, शास्त्र अनुसार कर्म से नहीं, वह पागलों से चेष्टा करता है। उसकी चेष्टा केवल मोह में डालने वाली है, पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली नहीं।
1: अच्छा,
0: मन से इच्छा करिए और शास्त्रों के अनुसार कर्म न करिए तो ये चेष्टा जो है वो पागलों की चेष्टा
1: जी, जी, जी, जी।
0: विक्षिप्त कर देगी आपको। हाँ, हाँ। और आप देखेंगे तो लगभग लोग इसके शिकार हैं।
1: बिल्कुल,
0: है ना। इच्छा हमारी कितनी प्रबल है, राजा बनना किसे नहीं आता, सब चाहते हैं कि राजा बने, लेकिन राजा बनने के लिए जो कर्म है या राजा बन जाने के बाद जो राजा का कर्म है क्या हम कर रहे हैं, तो इसी पर तो पूरी परंपरा चल रही है। मुझे एक दृश्य याद आता है जब राजा और प्रजा की बात आई, समर्थ गुरु रामदास ने छात्रपति शिवाजी को एक बार कहीं यात्रा कर रहे थे वो, तो उनको लगा कि इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि ये बहुत कुशल राजा है
1: जी, जी,
0: और
1: जी।
0: प्रजा का भरण पोषण करता है। तो इस भ्रम से मुक्त करने के लिए उन्होंने कहा कि देखो ये क्या है, उन्होंने कहा तो पत्थर है, कहा इसको तोड़ो। तो कहते अरे साहब ये क्या तोड़ने का मतलब, तो तोड़ा गया तो उसमें एक कीड़ा निकला।
1: कीड़ा,
0: हाँ। कहते हैं कि तुमने अपने राज्य का भरण पोषण करने के लिए जितने साधन किए हैं, इस कीड़े के लिए तुमने क्या किया है, ये भी तो यहाँ जी रहा है।
1: बिल्कुल।
0: तो ये तुम भ्रम पाल के बैठे हो कि तुम जिंदा रख रहे हो,
1: तुम सबको पाल रहे हो,
0: और ये भ्रम मनुष्य को पल जाता है अपनी बुद्धि के साथ। जबकि वो ये बताना चाहते थे कि इस सृष्टि में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कर्म करने का हक है। मां फलेशु कदाचन, जो कहा भगवान कृष्ण ने, इसका बड़ा गूढ़ अर्थ था। मतलब मैं कहता हूं कि फल के साथ ट्रिगर होने वाले लोग, फल के साथ चलने वाले लोग इस रहस्य को कैसे जानेंगे, वो ये भूल जाते हैं कि फल कुछ और नहीं है, वो कर्म का ही रूपांतरण है। कर्म ही आपका फल बनता है और आप सोचते हैं कि कर्म फल अलग है, इसीलिए भारत में कर्म फल कहलाता है, या आपके कर्म का फल है। ये मत सोचो कि कहीं और से दैवी दैव के साथ मिला हुआ है, आप ही के कर्म का फल है। ये अलग बात है कि आप अपने उस कर्म को उद्घाटित नहीं कर पा रहे हैं कि आपके किस कर्म का ये फल है, लेकिन है वो आप ही के कर्म का फल। एक मैं कथा बताऊं आपको, पूछा गया, जिसे आपने प्रारब्ध की बात की, कहते हैं पूछा गया कि प्रारब्ध कैसे व्यक्ति का पीछा करता है, तो इंद्र कहते हैं कि जैसे हजारों गायों के बीच एक बछड़ा अपनी माँ के स्तन के पास पहुंच जाता है, किसी और के पास नहीं पहुंचता, ऐसे ही आपका प्रारब्ध, प्रारब्ध मतलब आपका पूर्व कृत कर्म, आपका पीछा कर रहा है। प्रारब्ध कोई फल नहीं है। लोगों ने ये बहुत गलत अवधारणा पाल रखी है कि प्रारब्ध का फल हम भोग रहे हैं, प्रारब्ध आपका कर्म है जिसका कर्म फल आप भोग रहे हैं, वो कर्म का फल है।
1: यही फल की प्राप्ति का कारण है,
0: यही फल की प्राप्ति का कारण है कि शास्त्र के अनुसार मनन करें, चिंतन करें और वैसी ही वाणी बोलें। इसी को हम लोग सदकर्म कहते हैं, सदचिंतन, सदविचार और सदकर्म। जब ये तीनों मिलते हैं तो पुरुषार्थ की सिद्धि होती है, ये वशिष्ठ जी कह रहे हैं राम से।
1: अच्छा ये बताएं कि पुरुषार्थ कितने प्रकार का होता है।
0: पुरुषार्थ दो प्रकार का होता है, एक शास्त्रानुमोदित पुरुषार्थ और दूसरा शास्त्र विरुद्ध पुरुषार्थ। यानी शास्त्रानुमोदित पुरुषार्थ पुण्य कर्म और शास्त्र विरुद्ध पुरुषार्थ पाप कर्म है। इन दोनों में से जो शास्त्र विरुद्ध पुरुषार्थ है वह अनर्थ का कारण होता है और शास्त्रानुमोदित पुरुषार्थ परमार्थ वस्तु की प्राप्ति का कारण होता है। परमार्थ वस्तु मतलब परमात्मा की प्राप्ति का कारण होता है, उस परम चेतना को जानने का मार्ग प्रशस्त करता है जिस चेतना पर ये सारी क्रियाएं हो रही हैं। जैसे कहते हैं महासागर के जल में जो उत्ताल तरंगे उठ रही हैं और गिर रही हैं वो सागर में हो रही हैं, ऐसे ही जो परमार्थ सत्य है उस परमार्थ सत्य में इस पूरे जगत की गति चल रही है, चाहे वो उत्पत्ति हो, चाहे वो स्थिति हो, चाहे वो प्रलय हो, इन तीनों स्थितियों में जो क्रिया है, क्रिया हो रही है, वो उस परमार्थ सत्य की वजह से हो रही है। यद्यपि सत्य के नाते क्रिया नहीं हो रही है, क्रिया सत्य से बिल्कुल अलग है, लेकिन क्या समुद्र की तरंगे समुद्र की वजह से हैं?
1: नहीं,
0: समुद्र की वजह से नहीं है। विचार करके देखें तो वो चंद्रमा और सूर्य के एक आकर्षण का प्रभाव है।
1: जी जी जी।
0: देखें तो ज्वार भाटा जो आता है वो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आता है। बृहद ज्वार बृहद भाटा क्यों आता है? क्योंकि उस समय फुलमून होता है, मतलब पूर्ण चंद्रमा होता है, ठीक है, या चंद्रमा नहीं होता है, तो उनका वो आकर्षण है। अगर वो आकर्षण न होता तो समुद्र में लहर नहीं होती। तो लहर समुद्र में नहीं है, लहर चंद्रमा का आकर्षण है।
1: जी जी।
0: तो ऐसे ही प्रकृति में क्रिया हो रही है, लेकिन क्रिया जो है उस परम परमार्थ जो परम सत्य है उसके स्थिति में हो रही है, वो स्थित है। हाँ, जो अज्ञेय है, जो ज्ञात नहीं हो पा रहा है। ज्ञेय तो आप जगत को जानेंगे, और हमारे यहाँ ऋषि कहते हैं कि नहीं, ज्ञेय वो परमार्थ सत्य है। देखिए ये अंतर हो गया पाश्चात्य और भारतीय दर्शन का, कि भारतीय दर्शन ने कभी भी ज्ञेय प्रकृति की शक्ति को नहीं कहा, उसने परमार्थ सत्य को ज्ञेय कहा, कहा वो जानने योग्य है। हाँ। और राम उसको जानने के अधिकारी हो गए हैं, इसलिए उनको ये ज्ञान दिया जाए। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रकृति को ही जानने में पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। हम भगवान के पास भी भगवान के लिए नहीं जाते, संसार के लिए जाते हैं। आप विचार करके देखें कि संसार का कोई कष्ट, संसार की कोई पीड़ा, संसार का कोई सुख पाने के लिए हम भगवान की आराधना करते हैं। अंततः भगवान ने इतना कुछ दिया, उसके बाद हम संतुष्ट नहीं हुए। जो मांग रहे हैं क्या वो पाके संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं होंगे। या जिनको मिला है वो संतुष्ट हैं? नहीं हैं। लेकिन हम कभी विचार नहीं करते, क्योंकि शास्त्रानुकूल हम पुरुषार्थ नहीं करते। शास्त्रानुमोदित पुरुषार्थ जब करेंगे तब इस तरह की दृष्टि पैदा होगी और हम बीतराग को समझ पाएंगे और वैराग्य प्रकट होगा। बीतराग में वैराग्य प्रकट होता है।
1: हाँ।
0: और कई बार संसार की विफलताओं से भी वैराग्य प्रकट होता है।
1: जी,
0: वो बीतराग की स्थिति नहीं है।
1: जी जी जी
0: जी,
1: ये बात निराशा की है। निराशा है बिल्कुल। अच्छा, हम प्रारब्ध और कर्म की बात कर रहे हैं, तो योग वासिष्ठ क्या कहता है प्रारब्ध क्या है, और क्या इस जन्म में प्रारब्ध ही भोगता है मनुष्य?
0: प्रारब्ध को लेकर के मैंने भी बहुत सारे लोगों के विचार देखे। कई ऐसी मान्यताएं हैं जहां लोग कहते हैं कि प्रारब्ध हम भोग रहे हैं। प्रारब्ध को इस रूप में बताया गया कि प्रारब्ध का फल हम भोग रहे हैं। निश्चित ही कभी भी कोई फल बिना कर्म के बनता ही नहीं है, कर्म का ही फल बनता है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं राम से, कहते हैं कि राम यह पूर्व जन्म का जो पुरुषार्थ है वह प्रारब्ध है। पूर्व जन्म का पुरुषार्थ यानी पूर्व जन्म के कर्म का जो फल है वो है प्रारब्ध, यानी वो भी कर्म का ही फल है। प्रारब्ध कुछ और नहीं है, कर्म का फल है। और व्यक्ति जो है प्रयत्न करके अपने कर्म फल को क्षीण कर सकता है।
1: कैसे?
0: हाँ, इसके लिए वो कहते हैं कि ये जो प्रारब्ध है मुझे प्रेरित करके विशेष परिस्थितियों में डाल देता है, इस प्रकार की बुद्धि को बलपूर्वक कुचल डालना चाहिए। ये इशारा है वशिष्ठ जी का कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि प्रारब्ध हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में बलपूर्वक डाल देता है या हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो प्रारब्धावशात है, तो कहते हैं इसको प्रयत्न पूर्वक कुचल देना चाहिए, क्योंकि वह प्रत्यक्ष प्रयत्न से अधिक प्रबल नहीं हो सकता।
1: अच्छा,
0: प्रारब्ध
1: बड़ी बात हो गई।
0: देखिए ऋषि की घोषणा है, राम जी से कह रहे हैं कि वो प्रत्यक्ष प्रयत्न से अधिक प्रबल नहीं हो सकता। तब तक प्रयत्न पूर्वक उत्तम पुरुषार्थ के लिए सचेष्ट रहना चाहिए जब तक कि पूर्व जन्म का अशुभ पौरुष स्वयं पूर्णतः शांत न हो जाए।
1: ये बड़ा सुंदर उत्तर हो गया। कई बार होता है ना, लोग कहते हैं कि अगर भाग्य में लिखा है, अगर प्रारब्ध है, तो फिर हम कुछ न करें, क्यों करें, क्या फर्क पड़ता है? तो ये सुंदर जवाब,
0: भाग्यवाद यही तो पोषित हो रहा है इसी बात के लिए। मुझे रामचरित मानस की पंक्तियां याद आ रही है। रामचरित मानस की दो पंक्तियों को मैं उद्धृत करना चाहूंगा। जैसे एक जगह गोस्वामी जी लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही स्वतः फल चाखा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो यहाँ पर वही बात कह दी इन्होंने, जो इन्होंने कही है अभी, कि प्रयत्न से अधिक प्रबल प्रारब्ध नहीं हो सकता।
1: बात है, लेकिन मैं बड़ी मुग्ध होती हूँ इस बात पर कि जब हम योग संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं तो हम गीता की भी बात कर रहे हैं तो तुलसीदास जी का रामचरितमानस की पंक्तियां आ जाती हैं, मतलब कैसे योगी वो भी थे, कैसी कैसी बातें वो लिख रहे हैं, जो वशिष्ठ जी कह रहे हैं
0: वो भी
1: तुलसीदास जी कह रहे हैं,
0: नाना पुराण निगमागम संबतम कहा ही उन्होंने, विभिन्न पुराणों के निगम आगम का संबत बात मैं कर रहा हूँ। इसीलिए कहा गया कि शास्त्रानुकूल, शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ। वही गोस्वामी जी एक जगह लिखते हैं कि वही है सोई जो राम रचना तर्क बढ़ाओ साखा,
1: बिल्कुल
0: है ना। तो अब देखिए यहाँ पर जो भाग्यवादी लोग हैं वो सहारा ले लेते हैं,
1: ले लेते हैं
0: जो भगवान चाहते हैं
1: वही जो राम रचि राखा,
0: क्या वो भूल जाते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर स्वतः पल चाखा। तो ये वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि राम ऐसा नहीं है। और सच ये है, जो जहां तक मुझे लगता है सुनीता जी, कि हमारे ऋषि इतने दूरदृष्टा थे कि वो हमारे मन का प्रबंधन करना चाहते थे। वो जानते थे कि जब कभी आपका मन आपके पुरुषार्थ से छीण हो, विकल हो, तब वो इस सहारे से आप अपने आप को रोकें, सोई जो राम, ताकि आपको विचलन न हो। लेकिन अब ये भी आप सहारा लेकर के पलायन न कर जाएं, इसलिए उन्होंने कहा कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर स्वतः पल चाखा। तो उन्होंने कहा कि वो कभी भी आपके मतलब प्रयत्न से प्रबल नहीं हो सकता। और वो कह रहे हैं कि जब तक पहले जन्मों का किया हुआ अशुभ कर्म समूल नष्ट न हो जाए, तब तक तत्परता से उत्साह पूर्वक साधन करते रहना चाहिए।
1: अच्छा,
0: ये उपदेश है वशिष्ठ जी का हम सभी के लिए, यद्यपि वो राम जी को कह रहे हैं कि जब तक पूर्व जन्म के अशुभ, माने हमारे जीवन में कुछ ऐसे परिणाम आ रहे हैं जो हमें कबूल नहीं हो या स्वीकार नहीं हो, तो हमें क्या करना चाहिए, इस जीवन में पुरुषार्थ इतना प्रबल कर देना चाहिए। मुझे एक कथा आती है, एक भारत के बहुत बड़े ऋषि हुए हैं जिन्होंने 24 बार गायत्री का पुरुषरण किया।
1: अच्छा।
0: और उन्होंने जिस जिस के लिए किया, उनके जीवन में बहुत कष्ट था, तो वो तंग आकर के गुरु ने कह दिया कि गायत्री का पुरुषरण करिए और सब दुख दूर हो जाएगा। 24 बार उन्होंने किया और उनकी पत्नी नहीं रही, बेटा नहीं रहा, सब कुछ संसार का चिंता चला गया, लेकिन वो विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा गुरु की बात है, मान लिया। और जब 24 पुरुषरण होने के बाद गायत्री प्रकट हो गई और कहते हैं कि जो मांगो तुम्हारी जो वांछा हो, तो वो हंसने लगे, कहते थे जिनके लिए मांगना था
1: वो चले गए,
0: वो सब चले गए
1: जी।
0: अब तो कोई इच्छा ही नहीं बची, उन्हीं के लिए सब मैं कर रहा था, मेरा तो कोई कभी इच्छा नहीं था,
1: कभी नहीं।
0: मेरा अपनों के साथ जो नाता था उन्हीं के लिए हम बेहोल थे, परेशान थे, और वो सब के सब चले गए। तब तक तो आप आई नहीं, अब जब वो चले गए तो मांगू किसके लिए। तो गायत्री देवी कहती है, ऐसा मतलब ऋषि ने कहलवाया है कि जरा पीछे मुड़ के देखो। तो जब पीछे देखते हैं वो, तो उनका प्रारब्ध जल रहा था।
1: अच्छा।
0: यही बात है, पीछे आग लगी थी। कहा देखो ये तुम्हारे जो 24 पुरुषरण का फल है, कि हर पुरुषरण ने तुम्हारे प्रारब्ध को जलाया है, तुम्हारे अशुभ फल को मिटाया है, और उसका परिणाम ये है कि तुम आज भी पुरुषरण कर रहे हो, जबकि तुम कब के डिग चुके होते। 24 तक टिकना मामूली बात नहीं है। तो ऐसे में तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं, तुम्हारे प्रयत्न से तुम्हारा पुरुषार्थ, जो अशुभ पुरुषार्थ था, जो शास्त्र विरुद्ध था, वो सब नष्ट हो चुका है। अब तुम निर्मल हो गए हो, अब तो तुम्हारे सामने जगत की सारी रिद्धियां सिद्धियां तुम्हारे कदमों में झूलेंगी, क्योंकि तुम अब इस योग्य बने हो।
1: बिल्कुल।
0: तो वो गायत्री को प्रणाम करते हैं, कहते हैं देवी अब क्यों मुझे इस अविद्या के चक्र में पड़ना। अब तो अविद्या का आवरण हट गया आपके आने से, आप तो ज्ञान की अधिष्ठात्री हैं, देवी हैं, अब तुम्हें प्रकाशित हो गया, अब मैं क्या फिर मांगू आपसे। तो बड़ी कृपा की आपने मुझे बोल, कहते हैं वो मुक्त हो गए। तो ऐसा भी ऋषियों ने दृष्टि दी है। तो प्रयत्न से हम अपने पूर्व के फल को मिटा सकते हैं, लेकिन उसका आधार प्रयत्न है, उसका आधार प्रारब्ध के अधीन होकर के बैठ जाना या पलायन कर जाना नहीं है।
1: अच्छा, एक बात आप बताएं कि इहलोक और परलोक की हमने बात की, इसकी सिद्धि कैसे होती है?
0: इहलोक और परलोक की सिद्धि, इहलोक और परलोक की सिद्धि होती है, आप जब शास्त्र के अनुसार किया हुआ उद्योग करते हैं, शास्त्रानुसार जो उद्योग करते हैं
1: जी,
0: उस उद्योग से इहलोक और परलोक की सिद्धि होती है। शास्त्र यहाँ बार बार इसलिए कह रहे हैं कि शास्त्र जो है हमारे सुधीजन या गुरुजनों का एक पूरा, शास्त्र गुरु है। जैसे कथा आती है भागवत में, जब जा रहे हैं भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर, तो उद्धव से कहते हैं कि अब मैं इसी मतलब भागवत महाशास्त्र में रहूंगा, भागवत महापुराण में रहूंगा। यद्यपि उसको लोग कह के वो तत्व नहीं निरूपित करते, भागवत महापुराण कहने का आशय उनका ये था कि शास्त्र में रहूंगा, शास्त्रों में जो वचन है ऋषियों के, उनके द्वारा तो देखे गए दृश्य हैं, वो चाहे जितने पुराने हों लेकिन आज भी वो अर्वाचीन है, नवीन है, प्राचीन नहीं है। देखिये एक बात आप ध्यान रखिए, सनातन जो धर्म की बात करते हैं हम लोग, एक्चुअल में सनातन धर्म है, जो सत्य है वो सनातन है और सनातन धर्म है। कोई धर्म सनातन नहीं है,
1: धर्म का नाम सनातन नहीं
0: है, सनातन धर्म है।
1: जी, जी,
0: और सनातन की बात शास्त्रों में हुई है, जिस भी शास्त्र में वहां का अध्येता आता है वो सनातन परंपरा की बात करता है,
1: सनातन ही धर्म है,
0: सनातन ही धर्म है। और यहाँ पर क्या होता है, कई बार हम लोग सनातन धर्म और इन धर्मों की लड़ाई में उलझ जाते हैं, लेकिन जो सनातन है, जो कभी खंडित नहीं होगा, अखंड ज्ञान जो है, अद्वैय ज्ञान जो है, वो धर्म,
1: वो धर्म है,
0: जिसके सिवाय कोई दूसरा ज्ञान नहीं है, अद्वैय ज्ञान। और अद्वैय ज्ञान वही ज्ञान है, परमार्थ सत्य, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरा, ये है अद्वैय ज्ञान, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये है अद्वैय ज्ञान, सब ब्रह्म में है। लेकिन ये दृष्टि आते ही आप देखिए, मतलब कहता हूं मैं, जो विषम दृष्टि है मनुष्य की, जहां पर हम अपना पराया, मैं और तुम, अहम मम वृत्ति से ग्रसित हो जाते हैं, इस वृत्ति से मुक्ति दिलाती है यही अद्वैय ज्ञान की परंपरा, जहां पर दूसरा कुछ है ही नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको भी बहुत सुंदर चौपाई में कहा है कि सी राम में सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरि जुगपानी। यही है अद्वैय ज्ञान कि सी राम में है। अब यहाँ कोई कहे तुलसी के राम, कहां से तुलसी के राम हो गए भाई, जब पूरा जगत ही राम में है, देख रहे हैं वो, तो कहां राम नहीं है
1: जी।
0: जित देखूं तो तू ही तू है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तो लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। ये कहने के अलग अलग ढंग हैं, लेकिन सी राम में जिसको जगत दिख गया, अब उसके पास भेद दृष्टि कहाँ रही, राम से अलग कुछ है ही नहीं उसके लिए। तो ये जब दृष्टि आती है, ये है सनातन धर्म, जहां पर आप सर्वव्यापी उस परम तत्व को, ब्रह्म तत्व को सब में देख सके, इसको कहते हैं ब्राह्मी दृष्टि, ब्रह्म दृष्टि, इसी को ब्रह्म ज्ञान कहा गया, अद्वैय ज्ञान योग कहा गया, इसी योग का उपदेश वशिष्ठ जी कर रहे हैं राम जी को।
1: अच्छा, अक्सर लगता है कि जो जीवन है वो व्यर्थ बीत गया है ना,
0: जी
1: जन्म तेरा बातों ही बीत गया
0: जी, जी।
1: तो मैं जानना चाह रही थी कि किन लोगों का जीवन व्यर्थ में व्यतीत हो जाता है।
0: इसके लिए वशिष्ठ जी कहते हैं, जो शास्त्र के अनुसार अपनी श्रवण मनन आदि चेष्टाओं का साधन नहीं करते और चित्त में विषयों का ही चिंतन करते रहते हैं, उन मूढ़ पुरुषों की अत्यंत दूषित भोगेच्छा को धिक्कार है, और ऐसे लोगों का जीवन व्यर्थ व्यतीत हो जाता है। भोगेच्छा, अब आप देखिए, भोगों की इच्छाएं शांत नहीं होती, ये हमने आज तक के भोगों से सीखा
1: जी।
0: लेकिन नहीं सीख पाए, अनसुना कर दिया। आप भागवत महापुराण में कथा आती है ययाति का प्रसंग
1: जी,
0: सुना होगा, बहुत सारे श्रोताओं ने सुना होगा कि वो भोगों में इतने संलिप्त थे कि उन्होंने अपने पुत्र से भोगों की इच्छा को शांत करने के लिए जवानी मांगना शुरू कर दिया कि आप अपनी जवानी दे दो। और एक उनका अंतिम जो सबसे छोटा पुत्र था, अपने पिता के भोग की इस बिहवलता को देखकर वो समझ गया कि ये भोग कभी शांत नहीं करते, और उस पुरु ने अपना कहते हैं दे दिया उनको कि ले जाओ। और जब लेकर के फिर कुछ दिन उन्होंने भोग किया तो उन्हें लगा कि अरे मेरे पुत्र को भोगों की नश्वरता का बोध है, लेकिन मैं कितना कृतज्ञ हूं कि मैं उससे मांग रहा हूं, बाकी पुत्रों से मांगा उन्होंने नहीं दिया, छोटे ने दे दिया, कहा कि वो उनका गुरु बन गया। तो कई बार हमारे परंपरा में गुरु परंपरा इतनी सुदृढ़ रही है कि पिता का गुरु पुत्र भी बना है, और सबसे छोटा पुत्र जो है वो उनको ज्ञान दे गया, और फिर वो अपने आप को धिक्कारते हैं, वो भोगेच्छा को धिक्कारते हैं, और पुरु को उसके यौवन को सौंपते हैं, और फिर वो मुक्त हो जाते हैं इससे। तो कहते हैं कि ऐसे लोग अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं। आपको बताऊं, जो लगातार हमेशा विषयों का ही चिंतन कर रहे हैं, विषय विष कहा गया है ऋषियों की दृष्टि में, और हम लोगों के लिए विषय अमृत है, विषय अमृत का पान करते हैं हम लोग,
1: उसी के लिए जी रहे हैं,
0: उसी के लिए जी रहे हैं, और ये नहीं सोचते हैं कि मतलब विषय मारता है, जिसको हमारे भर्तृहरि जी कहते हैं कि भोगम न भुक्ता वय में वो भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वय में वो जीर्णा, कि भोगों को हमने नहीं, भोगों ने हमें भोगा, तृष्णा ने हमें बूढ़ा कर दिया, वो बूढ़ी नहीं हुई, वो तो जवान अभी भी है।
1: जी जी,
0: और हर वृद्ध आदमी देखिए वो तृष्णा के साथ आने वाली पीढ़ियों की योजनाओं को लेके बैठा है ना, जबकि अब आंखों से देखना बंद हो गया, हाथ पांव कांपने लगे, शरीर नहीं संभल रहा है, लेकिन आज भी परिवार और संसार की चिंता वैसे ही बनी हुई है। तो तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, शरीर बूढ़ा हो गया। तो ये कोई भर्तृहरि जैसा आत्मदृष्टा देखेगा, कोई योगी देखेगा, तो इसीलिए राम ये योग जो वासिष्ठ है, ये योगियों का प्रसंग है, और इसके लिए हमारे श्रोताओं को निश्चित ही अच्छी अवधारणा के साथ इस ग्रंथ का श्रवण करना चाहिए।
1: अच्छा, लेकिन कमाल की बात यह है कि जो बातें आप कह रहे हैं
0: जी,
1: कि तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, हम बूढ़े हो गए, मनुष्य बूढ़ा हो गया, सुना, बहुत बड़ा सुना, लेकिन असर तो हम पर भी नहीं है।
0: जी जी बिल्कुल ठीक है आपने।
1: ये असर कैसे हो?
0: हाँ, अभ्यास वही जो अभी हमने शुरू में ही कहा है कि शास्त्र के अनुसार मन वाणी और शरीर का व्यवहार।
1: जी जी।
0: तो अब जैसे शरीर बूढ़ी होगी ये मानकर हम क्या जवानी में व्यवहार करते हैं। फिर मुझे एक कथा याद आ गई कि एक बूढ़े बाबा जा रहे थे कहीं से, तो वो थोड़ी झुकी कमर थी, हाथ में लाठी लिए थे, तो बच्चों ने उन्हें छेड़ा, कहा कि आप तो धनुष के आकार के हो गए, बाबा ये धनुष कहाँ से लिया? तो बाबा ने कहा कि बेटा समय आने पर तुम्हें भी मिल जाएगी।
1: बिल्कुल।
0: तो ये अगर हम शरीर की दशा देख लें तो निश्चित तौर पर हमें मतलब ये समझ में आ जाएगा। तो हमारा मतलब अनुशासित हो जाएगा।
1: जी, जी।
0: हम उदंड नहीं होंगे, हम विचलित नहीं होंगे।
1: जी। जी। अच्छा ये बताएं कि जीवन में परम फल की प्राप्ति कैसे होती है?
0: जीवन में परम फल की प्राप्ति परम स्वार्थ रूप परमात्म साक्षात्कार रूपी फल से होती है। परम स्वार्थ रूप कहा वशिष्ठ जी ने उसे, कि आपके जीवन का परम स्वार्थ, जिसे हम संसार में अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हैं। स्वार्थ बहुत प्यारा शब्द है, लेकिन इसके अर्थ इतने बिगाड़ दिए गए कि हम स्वार्थी शब्द का नाम से घृणा करते हैं कि बड़ा स्वार्थी आदमी है।
1: हाँ।
0: जबकि स्वार्थ शब्द योगियों का शब्द है कि जो स्वयं के अर्थ को खोजने में तत्पर हो या जिसने स्वयं के अर्थ को जान लिया वो स्वार्थी है।
1: स्व का अर्थ।
0: तो ये कहते हैं कि परम स्वार्थ जो है वह है परमात्मा साक्षात्कार। और जब आप स्वार्थ को सिद्ध करते हैं तो आप अपने स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं, और स्वरूप साक्षात्कार में अयमात्मा ब्रह्म या अहम ब्रह्मास्मि का बोध होता है, ज्ञान नहीं होता, बोध होता है। जी, तो ये है परम स्वार्थ।
1: ये बोध और ज्ञान की लड़ाई हम लोग के साथ भी चल रही है।
0: हम लोग ज्ञान में सुन ली, हम लोगों ने क्या किया, ऋषियों की भाषा सुन ली, लेकिन न उसका मनन किया, श्रवण तो कर लिया मनन नहीं किया, मन से विचार ही नहीं करते।
1: जी जी।
0: और निधिध्यासन तो दूर, तो फिर व्यवहार करने का सवाल ही नहीं होता। तो हमारे पुरुषार्थ की सिद्धि कैसे हो?
1: जी,
0: हमारे पुरुषार्थ की सिद्धि इसलिए नहीं हो रही है। अच्छा एक बार और विचार करिए कि संसार में कभी किसी के पुरुषार्थ की सिद्धि हुई? पुरुषार्थ का जो परम पुरुषार्थ है वो मोक्ष है।
1: जी।
0: संसार में तो बंधन ही मिलता है ना, आप बहुत कुछ अर्जित कर लें तो और बड़ा बंधन खड़ा कर लेंगे, और छोड़ने की इच्छा नहीं होगी। जितनी आपकी इच्छाएं पूरी होती चली जाएं, उतनी ही आप इच्छाओं के बंधन में बंधते चले जाएंगे, उतना ही वो संसार की वस्तु आपको और गहरे में बांधेगी। परम पुरुषार्थ तो मोक्ष है। तो पुरुषार्थ का मतलब क्या, धर्म। इसीलिए भारत का ऋषि अद्भुत था। धर्म, धर्म में फिर हमने बात की सनातन धर्म, है ना, जो सनातन है उसके अनुसार व्यवहार करना, उसके अनुसार विचार करना और उसी को बोलना, यह है धर्म। फिर धर्म जब होगा तो जीवन का अर्थ सिद्ध होगा। अर्थ मतलब यहाँ धन ही नहीं है।
1: हाँ।
0: जीवन भी तो एक धन है, जीवन से बड़ा धन क्या है?
1: बिल्कुल।
0: जीवन पर जब संकट आए तो संसार के समस्त धन को क्या हम दांव पर नहीं लगाते?
1: बिल्कुल।
0: तो जीवन से बड़ा कोई धन नहीं है, और उसी जीवन को संसार के धन को पाने के लिए हम नष्ट करते हैं और बीमार होते हैं, और बीमार होकर फिर बाद में बचाने के लिए धन खर्च करते हैं। ये हम लोगों की मूर्तापूर्ण कहानी है कि पहले हम धन को कमाने के लिए अपने शरीर को बीमार करते हैं, और फिर बीमारी से मुक्त होने के लिए कमाए हुए धन को खर्च
1: करते हैं। जी।
0: और एक दिन मर जाते हैं। तो हमने कमाया कि खोया, क्या किया? कंकड़ पत्थर इकट्ठा किया।
1: जी।
0: तो कहते हैं कि वो तब अर्थ की सिद्धि होती है, और अर्थ जब सिद्ध होता है तब आपके काम की सिद्धि होती है। भारत में पूर्ण काम की बात की गई है। भारत का ऋषि कहता है काम मतलब अधूरी कामनाएं नहीं, पूर्ण काम होना। एक मंत्र बहुत सभी हमारे श्रोताओं ने सुना होगा, आपको भी शायद स्मृति हो जाए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। माने आप देखें तो आपका जो स्वरूप है वो पूर्ण है, और ऐसा पूर्ण है जिसमें से कुछ भी घटा लीजिए उसकी पूर्णता में कमी नहीं होगी। संसार के किसी भी विषय वस्तु को अगर आपसे छीना जाए तो आप अधूरे हो जाएंगे, लेकिन अगर आप अपने जीवन के अर्थ को प्रकट कर चुके हैं तो वो कभी भी अपूर्ण नहीं होगा। और पूर्णस्य पूर्ण मादाय पूर्ण मेवा अवशिष्यते, उस पूर्ण से जो घटा तो भी पूर्ण, जो शेष बचा वो भी पूर्ण। तो ऐसे में पूर्ण को जब हम जान लेते हैं तो हम पूर्ण काम होते हैं, तो काम की सिद्धि होती है। और जब ऐसे पूर्ण काम हम होते हैं तो मोक्ष तो हो ही जाता है। यही तो मोक्ष है। पूर्ण काम होना मतलब मोक्ष होना, और पूर्ण काम होना मतलब अपने ओम पूर्ण मदह, उस पूर्ण ओम स्वरूप को अनाहत जो ध्वनि है उस तरंग के साथ हो जाना है। अपने स्वरूप को ही नहीं जानना बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप तरंगों की भाषा भी समझना, जिसको क्वांटम फिजिक्स तरंग पदार्थ के रूप में व्यक्त करता है कि एक ही समय में कब कोई वस्तु पदार्थ है कब तरंग है ये जानना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे ही हमारी तरंगों की भी एक दुनिया है, जहां पर वो तरंगों की अनाहत नाद कहा हमारे ऋषियों ने उसे। वो तरंगें दो की वजह से नहीं है, आहत नहीं है, वो अनाहत है, वो ओंग है, अनहद नाद। तो उसके द्वारा हम अपने जीवन को,
1: समय बहुत कम रह गया है तो मैं चाहती हूँ कि बहुत संक्षेप में आप बता दें कि जीवन में गुणों को ग्रहण करने की विधि क्या है।
0: सुंदर कहा आपने, जीवन में गुणों को ग्रहण करने की विधि है विचार पूर्वक दोषों को त्याग करके गुणों को ग्रहण करना चाहिए।
1: अच्छा,
0: अब देखिए ये भी एक ऋषि का कितना गूढ़ तत्व चिंतन है। हम लोग दोष के साथ गुण को ग्रहण करते हैं। वशिष्ठ जी के ही इस योग वशिष्ठ में एक प्रकरण आता है जिसमें कहते हैं कि शुद्ध गाय का दूध भी अगर चमड़े के थैले में दूहा जाए तो वो अपवित्र हो जाए। तो ऐसे ही दोष के साथ अगर गुण ग्रहण किया गया तो गुण भी दोषपूर्ण हो जाएगा। तो दोष का त्याग कर आप गुणों को ग्रहण करें। और दोष का त्याग कैसे होगा? विचार पूर्वक होगा, क्योंकि बिना विचारे आप दोष के साथ होते हैं, विचार पूर्वक आप दोषों को देख पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप प्रतिक्रिया मत करें, आप रिस्पॉन्ड करें। रिएक्शन के बजाय रिस्पॉन्डिंग व्यक्तित्व होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए कि हम रिस्पॉन्स करें। तो इस तरीके से, और वो तभी होगा जब विचार पूर्वक हो। और कहा भी गया हमारे यहाँ, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, है ना। तो पछताने वाली बात तब होती है जब दोष के साथ गुण ग्रहण किया जाता है और विचार पूर्वक दोष को त्याग करके गुणों को ग्रहण किया जाए।
1: तो बहुत ही सुंदर चर्चा रही शशिकांत जी, आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए, आपका हम आभार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज हमने चर्चा की पौरुष की प्रधानता और प्रारब्धवाद के खंडन विषय पर। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच उपस्थित थे योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी, मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपके साथ बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब अनुमति दें, नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अब मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों को नाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब समय है विशेष कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे दो प्रस्तुतियां, हवाइन गिटार और शास्त्रीय संगीत।

0: पहले आप सुनेंगे हवाइन गिटार वादन, कलाकार हैं सुनील पावगी। और दूसरी प्रस्तुति होगी कल्पना झोकरकर के शास्त्रीय गायन की। ये प्रस्तुतियां दी गई भारत भवन के स्थापना दिवस के मौके पर। आइए पहले सुनते हैं हवाइन गिटार वादन सुनील पावगी का।
1: एक छोटी सी धुन सुना रहा हूं जिसमें कुछ कुछ चीजें भी बीच में लगाऊंगा, आप पहचाने तो बहुत अच्छा। मिश्र पीलू में एक धुन है।

ये था आज का खास कार्यक्रम जिसमें आपने पहले सुना हवाइन गिटार वादन सुनील पावगी का और दूसरी प्रस्तुति रही कल्पना झोकरकर के शास्त्रीय गायन की। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम, जिसमें हमने हवाइन गिटार और शास्त्रीय संगीत का आनंद लिया। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहे रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: स्टोन हाइट की किंवदंती और मलक्का का पतन। ये उस दौर की बात है जब मलक्का का महान बंदरगाह शहर समृद्ध था, व्यापार में सक्रिय था और पूर्ण व्यवस्था के साथ शासित था। उस समय शहर पर सुल्तान अहमद शाह का शासन था और शहर की प्रसिद्ध किलेबंदी पत्थर से नहीं बल्कि खजूर के पेड़ों के मजबूत तनों से बनी थी। कहानी 10 पुर्तगाली जहाजों के आगमन से शुरू होती है। बेड़े के कप्तान ने सुल्तान को शानदार उपहार भेंट किए, सोना चांदी के सिक्के, बढ़िया कपड़े और जंजीरें। सुल्तान बहुत संतुष्ट था, लेकिन उसके बुद्धिमान मंत्रियों बेंधारा और तेमेंगोंग को एक अनजाना डर सता रहा था। उन्होंने सम्मानपूर्वक राजा से कहा, महाराज, इन गोरे लोगों पर बहुत अधिक भरोसा न करें, इनसे कोई भला नहीं होगा। सुल्तान ने विदेशियों की उदारता से प्रभावित होकर अपने सलाहकारों की बात अनसुनी कर दी। शाही अनुग्रह के इस क्षण का लाभ उठाते हुए पुर्तगाली कप्तानों ने एक विनम्र अनुरोध किया, हमें केवल एक जानवर की सूखी खाल के बराबर जमीन का टुकड़ा चाहिए। इतने छोटे से टुकड़े में कोई खतरा ना देखते हुए सुल्तान हंसा और अनुरोध स्वीकार कर लिया। हालांकि पुर्तगाली भू राजनीतिक छल के उस्ताद थे, उन्होंने जानवर की एक खाल ली और बड़ी सटीकता के साथ उसे काट कर एक लंबी पतली रस्सी बना ली। उन्होंने इस रस्सी का उपयोग जमीन के एक विशाल चौकोर हिस्से को मापने के लिए किया, जो सुल्तान की कल्पना से कहीं बड़ा था। उस जमीन पर उन्होंने तुरंत ईंटों और चूने से पत्थर का घर बनाना शुरू कर दिया। जब मलक्का के लोगों ने दीवारों में अजीब छेद बनते देखे और पूछा कि ये क्या है, तो पुर्तगालियों ने झूठ बोला, ये वो खिड़कियां हैं जिनका उपयोग गोरे लोग करते हैं। वास्तव में ये तोपों के लिए बनाए गए छेद थे। रात के अंधेरे में पुर्तगालियों ने अपने जहाजों से गुप्त रूप से भारी तोपें और बंदूकें उतारी और उन्हें बक्सों में छिपा दिया, जिनके बारे में उन्होंने दावा किया था कि उनमें केवल कपड़े हैं। मंत्रियों ने राजा से निर्माण रोकने की आखिरी बार विनती की, लेकिन सुल्तान अडिग रहा। ये गोरे लोग हमारे देश को किसी भी तरह बर्बाद नहीं कर सकते। धोखाधड़ी अपने चरम पर तब पहुंची जब मलक्का के लोग शांति की नींद सो रहे थे। अचानक पत्थर के घर की खिड़कियों से आग के गोले बरसने लगे। पुर्तगालियों ने शहर पर बमबारी की और खजूर के तनों वाली किलेबंदी, जिसे कभी मजबूत माना जाता था, टुकड़ों में बिखर गई। सुल्तान अहमद शाह और उनकी प्रजा अंधेरे में भागने को मजबूर हो गए। सुल्तान मुआर, फिर जोहोर और अंत में बिनटोंग भाग गए और मलक्का का स्वर्णिम शहर हमेशा के लिए फ्रैंक्स के हाथों में चला गया। ये मलय कथा हालांकि यूरोपीय तथ्यों से भिन्न हो सकती है, एक गहरा नैतिक सबक देती है। अजनबियों के बीच अनुबंध और उनकी अस्पष्टताओं का उपयोग अक्सर विजय के हथियार के रूप में किया जाता है। ये इस बात की याद दिलाता है कि कैसे एक सभ्यता की उदारता को ही उसके विनाश का कारण बना दिया गया।
2: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: नमस्कार, मैं हूं कनिका तिवारी और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के।

नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आइए सुनते हैं भोपाल में आयोजित कार्यक्रम जननायक की रेडियो रिपोर्ट।

0: रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में आयोजित 3 दिवसीय जननायक समारोह में।
1: राजा हीरा खान सिंह नृत्य नाट्य

अरैया सिंहोलगढ़ माध देवी के स्थान पूजा स्थान माध राजा तपचरिया कारी काम के ध्यान मस्त कार जैसे कारी काम के भाई अयकना हीरागढ़ में हीरा खान छत्री जन्म लैसे

0: अरे साहकरण, तुम अकेले? और ये कौन है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो?
1: महारानी, महाराज अब नहीं रहे।
0: क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
1: हाँ महारानी,
0: ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता।
1: महारानी, महारानी,
0: महाराज,
1: हिम्मत से काम लीजिए। इस बच्ची का पालन पोषण आप करिए, ठीक उसी तरह जैसा आप अपने पुत्र का करेंगी। बड़े होने पर इन दोनों का विवाह भी कर दीजिए, तभी आपका पुत्र अपने पूर्वजों की हत्याओं का बदला ले सकेगा।

राजा हीरा खान रानी कमाल हीरो बढ़ते बढ़ते हीरा गड़बा एक दिन रानी कमाल हीरो कैसे मनवा।

0: ये थी आज की रेडियो रिपोर्ट। अगली रेडियो रिपोर्ट तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे भोपाल में आयोजित जननायक कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।
2: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: कॉक्स बाजार एक मानवीय त्रासदी और नौकरशाही का विश्वासघात। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे प्रसिद्ध समुद्र तट स्थलों में से एक कॉक्स बाजार एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर रखा गया है जिसकी मृत्यु अत्यंत पेशेवर दुख और हताशा की स्थिति में हुई थी। वो किसी विदेशी सेना से नहीं बल्कि अपने ही सहयोगियों की निरंतर टालमटोल की नीति से हार गया था। वो व्यक्ति था कैप्टन हीराम कॉक्स और 1799 में उसका दुखद अंत शुरुआती ब्रिटिश राज की उस गलाकाट हकीकत को उजागर करता है जहां नौकरशाही की ईर्ष्या अक्सर किसी भी युद्ध के मैदान से अधिक घातक होती थी। 1799 में ईस्ट इंडिया कंपनी एक मानवीय आपदा का सामना कर रही थी। बर्मी हिंसा से बचकर भागे 25,000 से अधिक अराकानी शरणार्थी चटगांव के दक्षिणी जंगलों में भूख से मर रहे थे। इस संकट को सुलझाने के लिए कलकत्ता की केंद्र सरकार ने स्थानीय अधिकारियों को दरकिनार करते हुए कॉक्स को विशेष आयुक्त नियुक्त किया। वो पैदल सेना के केवल एक मामूली कैप्टन थे, फिर भी उन्हें प्रो कंसुलर शक्तियां दी गई थीं, जिससे वे भूखों को खाना खिलाने के लिए स्थानीय खजाने से असीमित धन निकाल सकते थे। क्या आप जानते हैं कि स्थानीय अधिकारियों ने अपने जिले के इस बाहरी के दखल पर कैसी प्रतिक्रिया दी? उन्होंने सक्रिय असहयोग का एक ऐसा अभियान चलाया जो जितना प्रभावी था उतना ही क्रूर भी। जब कॉक्स ने आपातकालीन राहत के लिए 80,000 रुपए की मांग की तो चटगांव के कार्यवाहक कलेक्टर थॉमस पाउनी ने खजाना खोलने से साफ मना कर दिया। पाउनी स्थापित प्रक्रिया के पीछे छिप गए और जोर देकर कहा कि उन्हें पैसा जारी करने से पहले राजस्व बोर्ड से 3 प्रतियों में प्राधिकरण चाहिए। जब कॉक्स ने अनाज के लिए पड़ोसी जिलों ढाका और त्रिपुरा की ओर देखा तो वहां के अधिकारियों ने भी बहाने बनाए। यहां तक कि जब चावल की व्यवस्था हो गई तो स्थानीय नौकरशाही ने अचानक दावा किया कि उन्हें शरणार्थियों तक अनाज पहुंचाने के लिए कोई नाव नहीं मिल रही है। जब तक कोई सहायता बस्ती तक पहुंचती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भ्रष्ट स्थानीय अधिकारियों ने आने वाले सामान का अधिकांश हिस्सा हड़प लिया जबकि शरणार्थी भोजन के अभाव में प्रतिदिन मरते रहे। राजस्व में भारी खर्च और इस अव्यवस्था को देखकर कार्यवाहक गवर्नर जनरल सर अल्यूड क्लार्क ने इन प्रयोगों को विफल घोषित कर दिया। उन्होंने केवल 1 महीने के भीतर कॉक्स को वापस बुला लिया ये कहते हुए कि उनकी उपस्थिति जिले के नियमित और स्थापित अधिकार में बहुत अधिक हस्तक्षेप करती है। कॉक्स का मनोबल और उनका स्वास्थ्य अपने ही साथियों के इस दैनिक प्रतिरोध के दबाव में टूट गया। ड्यूटी से मुक्त होने के कुछ ही समय बाद वे सीमावर्ती क्षेत्रों की जहरीली जलवायु में गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। कॉक्स बाजार शहर उनका एकमात्र स्मारक है लेकिन उनकी कहानी लिमिटेड राज की एक दिलचस्प याद दिलाती है। ये साबित करता है कि शुरुआती कंपनी शासन में गवर्नर जनरल का मानवीय मिशन भी कुछ दृढ़ स्थानीय नौकरशाहों द्वारा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और पेशेवर क्षेत्र की रक्षा के लिए विफल किया जा सकता था। हीराम कॉक्स केवल असफल नहीं हुए, उन्हें उसी मशीनरी ने व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया जिसकी उन्होंने सेवा की थी।
1: ये दुनिया 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर, मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
2: ये मेरा इंडिया।
1: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूं मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारी देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। देश का चैनल देश के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आजाद हिंद। आज की कड़ी हिंदी साहित्य की कवयित्री महादेवी वर्मा के जीवन पर केंद्रित है।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: श्रोताओं को इतिहास का नमस्कार
2: और स्वीकार कीजिए तारीख का भी नमस्कार।
1: तारीख आज पता है हम किसकी बात करने वाले हैं?
2: किसकी?
1: भारतीय साहित्य संस्कृति और परंपरा की एक सर्वमान्य महाकवित्री महादेवी वर्मा जी की।
2: महादेवी वर्मा जी की?
1: हाँ।
2: अरे वाह इतिहास, ये तो मेरी भी मनपसंद कवित्री हैं।
1: और मेरी भी।
2: और इनके रेखा चित्रों का तो कोई जवाब ही नहीं।
1: अच्छा तुम्हें पता है महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 में उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद नगर में एक सुसंस्कृत परिवार में हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में इन्होंने एमए की उपाधि प्राप्त करने के बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य के रूप में कार्य करने लगी। और जानती हो अपने अंतिम दिनों तक हिंदी के माध्यम से कन्याओं को साहित्य और संस्कृति की शिक्षा देने वाली इस विद्यापीठ का वे मार्गदर्शन करती रहीं।

0: महादेवी जी की आरंभिक शिक्षा मिशन स्कूल इंदौर में हुई। उनके पिता इंदौर में शिक्षक थे। आपकी पहली कविता 1922 में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बाद में कई वर्षों तक वे इस पत्रिका की संपादिका भी रहीं।
1: हाँ, महादेवी वर्मा छायावादी गीति काव्य की एक कीर्ति पताका थीं। उनके 5 गीत संग्रह प्रकाशित हुए, निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत और दीपशिका। इनमें से पहले 4 पूरी साज सज्जा और गुरु गंभीर भूमिका के साथ यामा पत्रिका में भी संकलित हैं।
0: हाँ, और गद्य संकलन में प्रमुख हैं श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार, और शाश्वत जीवन मूल्यों से पोषित उनके साहित्य कला विषयक विचार साहित्यकार की आस्था नाम से प्रकाशित हैं। उनकी रचनाएं चित्त को भाव विभोर कर देती थीं। मन कह उठता था, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ।

0: महाकवित्री महादेवी जी ने जीवन के मधुर कोमल रूपों, प्रेम और सौंदर्य को अपने काव्य के प्रतिपाद रूप में ग्रहण किया। यह गीत की प्रबल मनोवेग का सहज उच्छलन ना होकर के रमणीय कला निर्मित ही है, जिसकी अन्विति किसी एक मूल वर्ती मनोराग पर ना होकर के कलात्मक अनुभूति पर निर्भर करती है। उनके काव्य का केंद्रीय भाव विरह है।
1: महादेवी की कला चित्रमय है। शब्दों के माध्यम से ही नहीं, रंग रेखा के माध्यम से भी उन्होंने मोहक चित्र अंकित किए हैं।
0: सन 1942 में उन्होंने विश्ववाणी के बुद्ध अंक का संपादन किया और भारत छोड़ो आंदोलन के क्रांतिकारियों की मदद की। दिल में अपने एहसास जगाओ, आओ आगे आओ।

0: साहित्यिक जीवन के प्रारंभ में ही महादेवी जी को सेक्सेरिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1944 में उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। 1952 में वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य बनी। वर्ष 1976 में उत्तर प्रदेश सरकार ने तथा 1982 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने उन्हें सम्मानित किया। सन 1982 में वे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित की गईं और सन 1983 में उन्हें यामा के लिए 1.5 लाख रुपए से सम्मानित किया गया।
1: ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली वे तीसरी महिला और चौथी रचनाकार थी। जहां पूर्ववर्ती साहित्यकारों को एक पुरस्कार उनकी किसी एक पुस्तक पर दिया गया था, जबकि महादेवी वर्मा को यह पुरस्कार उनके समग्र लेखन पर दिया गया था। उनमें राष्ट्र प्रेम और महिलाओं के उत्थान की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने आजीवन महिला उत्थान के लिए कार्य किया। प्रयाग महिला विद्यापीठ उनके प्राचार्य काल में बापू के आदर्शों की निष्ठा का प्रतीक बना। महादेवी वर्मा जी की बापू के प्रति अतः श्रद्धा थी।

0: श्रोताओं, भारतीय काव्य में महादेवी वर्मा का गौरवपूर्ण स्थान है। आधुनिक साहित्य की उपलब्धि का मानदंड है छायावाद का काव्य। छायावाद का सार सर्वस्व है। उनकी प्रगीत कला और प्रगीत का अत्यंत मधुर रूप है गीत। महादेवी जी ने अपनी परिष्कृत सौंदर्य संवेदना और समृद्ध शिल्प विधान से गीत कला को चरमोत्कर्ष प्रदान किया और वैष्णव कवियों से लेकर के रविंद्रनाथ ठाकुर तक की परंपरा का निर्वहन और गुणात्मक विकास किया।
1: इतिहास जी, यदि हम महादेवी वर्मा की बात करें और उनकी रचना न हो तो ये नाइंसाफी नहीं होगी।
0: बिल्कुल,
1: तो क्यों ना एक रचना मैं सुना दूं?
0: अरे बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए।
1: नींद में सपना बन अज्ञात, गुदगुदा जाते हो जब प्राण, ज्ञात होता हंसने का अर्थ, तभी तो पाती हूँ ये जान। प्रथम छूकर किरणों की छांह, मुस्कुराती कलियां क्यों प्रात, समीरण का छूकर चल छोर, लौटते क्यों हंस हंस कर पात। प्रथम जब भर आती चुपचाप, मोतियों से आंखें नादान, आंखती तब आंसू का मोल, तभी तो आ जाता ये ध्यान।
0: वाकई बहुत अच्छी कविता थी महादेवी वर्मा जी की। अच्छा तारिक, महादेवी वर्मा जी को पक्षियों से भी बहुत बड़ा प्रेम रहा।
1: बिल्कुल,
0: महादेवी वर्मा जी की एक बड़ी ही मार्मिक कविता है कहाँ रहेगी चिड़िया, जिसमें उन्होंने चिड़िया के दर्द को बड़ी ही सुंदरता से कहा है। आंधी आई जोर शोर से, डाली टूटी है झकोर से, उड़ा घोंसला बेचारी का, किससे अपनी बात कहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी।
1: और इतिहास महादेवी की एक बड़ी प्यारी विरह कविता है, जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते वे पग पखार, जो तुम आ जाते एक बार,
0: जो तुम आ जाते एक बार।
1: आज महादेवी जी हमारे बीच नहीं है। 11 सितंबर 1987 में वे सदा के लिए हमें छोड़कर चली गईं, लेकिन उनकी रचनाएं और गीत उन्हें चिरस्मरणीय बनाए रखेंगी और अपने अंतिम दिनों में उनके द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां सदा सदा हमें प्रेरणा देती रहेंगी। तोड़ दो ये क्षितिज, मैं भी देख लूं उस ओर क्या है, जा रहे जिस पंथ से युग, कल्प उसका छोर क्या है।

0: वादा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: आजाद हिंद, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम आज की कड़ी, कवियत्री महादेवी वर्मा के जीवन पर केंद्रित थी। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे दशमलव आठ मेगाहर्ट्ज़ पर यह रेडियो आजाद हिंद है। अब समय है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा का। इस कार्यक्रम में आज का विषय है नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी। इस विषय पर विषय विशेषज्ञ निहारिका पंसोरिया जानकारी दे रही हैं। इनसे बातचीत करेंगे रत्नेश सोनी।
2: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया एफएम 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। कार्यक्रम है स्वास्थ्य चर्चा और इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे, वो विषय है नशीली दवाओं का दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मुहिम। और इस विषय पर बात करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं निहारिका जी, जो NIWCYD बचपन के साथ कार्य कर रही हैं इस फील्ड में। उनसे जानेंगे कि वो इस फील्ड में कैसे आई। निहारिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
3: धन्यवाद, सभी को नमस्कार।
2: तो निहारिका जी, हम बात कर रहे हैं नशे का जो दुरुपयोग है देश में और इसकी रोकथाम है, तस्करी, इस फील्ड पर आप बहुत समय से काम कर रही हैं, तो आपकी यात्रा कब प्रारंभ हुई, आप इससे कैसे जुड़ी?
3: लगभग 12 वर्षों से मैं समाज सेवी के रूप में भोपाल शहर में काम कर रही हूँ और भोपाल शहर के ऐसे समुदाय में काम कर रही हूँ जिन्हें हम आमतौर पर बस्ती क्षेत्र या झुग्गी झोपड़ी के नाम से जाना जाता है। हालांकि शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन आम भाषा में उनका उपयोग किया जाता है। तो खास तौर पर वहाँ के समुदाय में रहने वाले जो बच्चे हैं, युवा हैं और परिवार है, उनके साथ मैं लगातार काम कर रही हूँ, जहाँ पर मैंने देखा कई बार बहुत सारे जो बच्चे और महिलाएं स्कूल से बाहर होते हैं या डोमेस्टिक वायलेंस का जब वो सामना करते हैं, सबसे बड़ा जो कारण नजर आता है वो है नशा। नशे के कारण बहुत सारे जो बच्चे हैं वो स्कूल से बाहर हैं या महिलाओं के साथ में जो हिंसा है इस वजह से होती है, और उसका कारण ये भी है क्योंकि वो आसानी से उस जगह पे उपलब्ध है। तो ये एक बड़ा कारण जो है मुझे समझ में आया। तो फिर हमने इस पे काम करने की शुरुआत की कि समस्याओं के पीछे की जो वजह है नशा, उस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, उस पे लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है और लोगों को समझाना ज़रूरी है कि नशा हमारे जीवन में किस तरीके से परेशानियाँ लेकर आती है।
2: आप इसमें काम कर रही, नशा इतने आसानी से बच्चों को या जो नशा करने वाले उनको बड़े आसानी से मिल रहा है बाजार
3: में? जी हाँ, बिल्कुल।
2: इसके पीछे आप क्या मानती, किसकी खामी है और इतने आसानी से कैसे उपलब्ध है, जबकि सरकार इस पर रोक लगाती खासी?
3: सरकार तो बहुत काम कर रही है, लेकिन जो जमीनी स्तर पे जो काम होना चाहिए, खासतौर पे मॉनिटरिंग का जो काम होना चाहिए, मुझे लगता है वो व्यवस्था में अभी कमी है। हम उसे मजबूत करने की आवश्यकता है क्योंकि आसानी से अवैध तरीके से जिन जगहों पर बिक रहा है, और स्लम की यदि हम बात करें तो बहुत ही घनी बस्ती क्षेत्र होता है जहाँ पर थोड़ा ढूंढना भी शायद मुश्किल है, तो वहाँ पर बच्चों के लिए जो उपलब्धता है हमें उस पर मॉनिटरिंग पे बहुत काम करने की आवश्यकता है, और उन तक जो पहुँच रहा है तो कहीं ना कहीं वो चैनल भी स्ट्रांग होगा। तो यदि हम जो हमारा तंत्र है उसको मजबूत करके जमीनी स्तर पर यदि काम करने की आवश्यकता है, जो मुझे लगता है, क्योंकि वहाँ तक लोगों की पहुँच नहीं है और बहुत ही आसानी से यदि बच्चों को मिल रहा है तो ये हमारे लिए भी कई बार सवाल खड़े करता है।
2: बिल्कुल, ये बात जी। एक बात आती है कि एक तो जब आप इसमें फील्ड में काम कर रहे हैं तो जो लोग ये नशे का व्यापार कर रहे हैं, क्या वो कोई टारगेट लेकर चलते हैं कि वो किन लोगों को नशे में लिप्त करेंगे, बच्चों को ही या युवा वर्ग को या लड़कियों को, ऐसा कुछ आपने स्पेसिफिक देखा या सभी लोग इसमें लिप्त होते हैं? मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो लोग ये व्यापार कर रहे हैं क्या उनका कोई टारगेटेड ग्रुप है?
3: अधिकांश यदि मैं जिन एरिया में काम करती हूँ वहाँ की बात करूँ, क्योंकि अधिकतर जो जुड़ाव होता है वो बच्चों और युवाओं के साथ में होता है, यदि मैं उनके अनुभवों की बात करूँ तो जो मुझे समझ में आया है कि बच्चे उनके लिए एक बहुत आसान टारगेट है।
2: अच्छा।
3: क्योंकि एक तो बच्चों को प्रभावित करना बहुत आसान होता है, और दूसरा क्योंकि आज जो बच्चे हैं उनकी बहुत ख्वाहिशें सपने हैं, तो कहीं उसका लालच देना और उनको अपने काबू में करना बहुत आसान है। और हम देखें कि बच्चे जो हैं इन तो उनसे श्रम कराना बहुत आसान होता है, उसकी कीमत ज़्यादा नहीं देनी पड़ती है, और क्योंकि बच्चे का जो जुड़ाव है उनके समुदाय स्तर पर बहुत ज़्यादा होता है, एक विश्वसनीय भी होता है। तो जो मुझे समझ में है कि खासतौर पर युवा लड़के जो हैं इसमें बहुत शामिल हैं और वो नशे के आदि भी हैं, तो शायद उन्हें लालच देके अपने सर में जोड़ना और उनसे काम करवाना, ये उनके लिए बहुत आसान मुझे लगता है जो है, क्योंकि अभी कुछ युवाओं के साथ जब मेरी बातचीत हुआ तो जब मैंने उनको जिस हालत में देखा तो बहुत ज़्यादा नशा करते हुए, फिर वॉयलेंस करते हुए, तो थोड़ा समय लिया उनसे बात करने का। जब गहरी उनसे बातचीत हुई तो समझ में आया कि घर में क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें परेशानी होती हैं, तो कई बार बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि हम किससे जाके अपनी बात कहें। तो आजकल की जो युवा जनरेशन है, लगता है कि यदि हमको अपने स्ट्रेस को दूर करना है तो नशा एक सुकून देने वाली जगह है, या नशा जो है बहुत हमको आराम देगा, तो वहाँ से बच्चे शुरुआत करते हैं, जुड़ते हैं अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, और फिर धीरे धीरे वो एक ऐसे चैनल से जुड़ते हैं और उनका उपयोग हो रहा है ये वो समझ नहीं पाते हैं। हाल ही में एक बच्चे ने सुसाइड अटैम्प किया, वो नशा मुक्ति केंद्र में ही उसने सुसाइड अटैम्प किया क्योंकि उसको नशे की बहुत लत थी। जब आपके हाथ में नशा आता है तो आप सोचते हैं कि मैं इसे ट्राई करूं, कोशिश कर लूं, क्योंकि जिज्ञासु तो बहुत होते हैं युवा साथी। तो उसने शुरुआत जस्ट एक शौक के तौर पर टेस्ट करने के लिए किया और धीरे धीरे उसकी आदत लगी। जब उसे नहीं मिल पाया तो उसकी लत से फिर उसने सुसाइड अटैम्प किया। तो युवा जो है जिस तरीके से जुड़ रहे हैं, शौक के तौर पर जुड़ते हैं, फिर स्ट्रेस को रिलीज करना अपना, और फिर धीरे धीरे वो इस चैनल में शामिल हो जाते हैं।
2: दो तीन चीजें अभी आपसे जो बातचीत हुई अभी तक की उसमें समझ में आई कि युवा इससे आसानी से जुड़ रहे हैं। एक कारण उनका लालच, तो हम आपसे जानना चाहेंगे वो किस तरह का लालच ये देते हैं बच्चों को, या सबसे पहली में हमारा जानना उद्देश्य कि पहला क्या उद्देश्य होता होगा या क्या तरीका होता होगा जो लोग बच्चों को इसमें लाते हैं या नशे के लिए आगे लाते हैं, एक बात। दूसरी बात कि आपने कहा स्ट्रेस, तो ये स्ट्रेस होता है इसलिए नशे की तरफ बढ़ जाते हैं, या दो बातें कि नशे की तरफ जाते हैं इसलिए भी स्ट्रेस होता है, दोनों बातों को एक बार आप हमें बताएं।
3: तो पहली बात जो आपने कही, जो युवा जुड़ते हैं उद्देश्य क्या होता है, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, खासतौर पर हम कानून व्यवस्था की करें, तो बच्चों के ऊपर कार्यवाही उस तरीके से नहीं होती है। तो शायद इसलिए वो बच्चे उनका इजी टारगेट रहता होगा कि बच्चों के ऊपर हम कानूनी इस तरीके से कार्यवाही नहीं कर सकते, तो बच्चों को शामिल करना एक ये उद्देश्य उनका हो सकता है। दूसरा मुझे लगता है कि अभी हम जब बात करें, खासतौर पर कोविड के वास्ते, जब हम लोगों को समझ में आया कि मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, तो यदि हम देखें कि वैसे स्पेसेस नहीं है जहाँ पे आप अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को व्यक्त कर पाएं खुलकर। अच्छा। तो कई बार व्यक्ति जो है व्यक्त नहीं कर पाता, तो वो खुद के लिए उस कमी को दूर करने के लिए कुछ चीज़ों को खोजता है, जिसमें एक जो चीज़ समझ कि नशे के ऊपर वो ज़्यादा होता है, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि नशे में हम होश में नहीं रहेंगे तो शायद हमें वो चीज़ें याद नहीं आएंगी, और कई बार जो है नशा नहीं मिलने के कारण भी व्यक्ति में स्ट्रेस होता है। तो दोनों कारण,

0: या आप उन तक पहुंच पाए।
1: हम लोग जब समुदाय में काम करते हैं तो वहाँ पर हम लोग लोगों के साथ रैपो बिल्डिंग करते हैं। अच्छा। लोगों से मिलना, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या चल रहा है, तो ऐसे बातचीत के साथ में शुरुआत होती है। तो एक परिवार के साथ में संपर्क होता है, फिर हमारे वहाँ पर बस्तियों में जाके हम जनसंवादों का आयोजन करते हैं ताकि लोग हमसे जुड़ पाए और हमसे बातचीत कर पाए। तो कई बार जनसंवाद तरीका होता है जहाँ पे लोग इन मुद्दों को बताते हैं, कई बार व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी वो हमें बताते हैं उनकी बातों के बारे में, समस्याओं के बारे में, तब वहाँ से ये चीज़ें जो है निकल के आती हैं। जैसे कई बार महिलाएं जब आती, क्योंकि मैं काउंसलिंग का भी काम करती हूँ, तो कई बार महिलाएं जब आती हैं कि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हुआ, तो जब उनसे वजह पूछे जाते हैं तो वो एक नशा एक कारण बताते हैं कि इस वजह से जो है मेरे साथ में ही हुआ। और कई बार ये मैंने जो देखा है कि लाइव बोलते कि नशे में मुझे मारा गया, पीटा गया। कई बार नशे में व्यक्ति समझता है कि मैं बहुत पावरफुल हो गया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो अधिकतर वायलेंस देखने को ज्यादा मिलता है नशे की वजह से। तो इस तरीके की बातें जो है जब संवाद होता है व्यक्तिगत रूप से, जब उनसे मिलते हैं या वो हमसे संपर्क भी करते हैं, तब वो हमें ये जानकारी देते हैं।
0: पहले ये बात करें, फिर आपसे ये भी पूछेंगे कि ये जो नशा ये करते हैं, इसमें खासतौर कौन सा नशा ज्यादा कर, जो सबसे ज्यादा नशा आपको जो आप देखते हैं, किस चीज का नशा करते हैं ज्यादातर लोग?
1: ज्यादातर जो है शराब का नशा करते हैं, सिगरेट जो है वो यूज करते हैं, गांजा जो है वो यूज करते हैं, कुछ मामलों में ड्रग्स जैसी चीजें समझ, लेकिन वो बहुत ज्यादा उस पर नहीं निकल के आया कि यही, लेकिन कुछ लोगों ने जिक्र किया कि इस तरीके के नशे पे उपलब्ध सलोचन है खासतौर पे। कुछ युवा साथी की हम बात करें तो जो विक्स है या जो मेडिसिन मेडिकल पे मिलते हैं उनका भी वो उपयोग करते हैं।
0: तो जब भी आपको कोई केस आप दिमाग में अगर आपके आए, तो हम चाहेंगे कि आप उसको दिमाग में रखते हुए बिना किसी का नाम बताए हमें ये बताइएगा कि जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले, पहली दफ़ा आपको पता चला कि ये मिस्टर एक्स हैं जो, या जो भी वो व्यक्ति है वो नशे की आदत में है, तो सबसे पहला कदम आप क्या करते हैं?
1: एक युवा साथी हमको मिले थे जिन्हें बहुत ज़्यादा वो था, हमने पहले उनसे दोस्ती की, थोड़ा उनको जानने की कोशिश किया। तो वो हमसे मिले, हमारे साथ बैठे, हमने उनको जानने की कोशिश, तो एक दोस्ती जैसा माहौल वहाँ पे शुरू हुआ, बातचीत होनी शुरू हुई। फिर धीरे धीरे उनसे जानने की कोशिश किया कि वो उन्हें कब से इस चीज़ का आदत लगा। तो उस बच्चे ने बताया कि क्योंकि उनके परिवार में जो पिताजी हैं वो नशे का उपयोग करते हैं, तो धीरे धीरे उन्होंने मंगवाना शुरू किया बच्चे से। तो वो कई बार होता है, जैसे मैंने भी देखा है कि जब हमको सर्दी खांसी होती थी तो हमारे पिताजी एक ढक्कन सिरप हमको दे देते थे कि सर्दी ठीक हो जाए। तो ऐसे ही वो बच्चे ने अपने पिताजी के लिए लाना शुरू किया, धीरे धीरे फिर उसने टेस्ट करना शुरू किया। फिर वो जिस समुदाय में रहते हैं वहाँ के जो और उसके पीयर्स या हम दोस्त की बात करते हैं, तो दोस्तों के साथ में जुड़ा, तो दोस्तों ने उसे इन्फ्लुएंस किया कि तू लड़का है यार, तू ये नहीं करेगा तो कौन करेगा, मर्द है, मर्द तो पीते हैं। तो इस तरीके से उसने धीरे धीरे उसने ट्राई करना शुरू किया, फिर वो पीना शुरू हो गया। तो उस व्यक्ति से जब मेरी बात हुई तो उसने बताया उसने बहुत ज्यादा नशे का उपयोग किया और वो 10 साल का था तब वो जुड़ा। तो आज वो जो बच्चा है 18 साल का है, तो आप सोचिए कि 8 साल से 18 से 10 साल तक उसने कंटिन्यू वो चीज़ें करी। तो दो तीन जो परेशानियां मुझे निकल के आई कि एक तो जो हमारे दोस्त होते हैं, पीयर्स होते हैं, उनका एक बड़ा असर हमारे ऊपर पड़ता है। यदि आप वो चीज़ नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत सवाल खड़े करते हैं। घर का माहौल है, यदि आपके उपलब्धता में, यदि घर में आप वो चीज़ें देख रहे हैं तो आप उसमें जुड़ जाते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं कि प्रथम शिक्षा जो है बच्चों को अपने परिवार से मिलती है, तो परिवार का जो माहौल देखता है वो अडॉप्ट करता है। तो वो चीज़ हमने उसमें देखी। फिर जब इस तरीके की चीज़ें निकल के आई तो हमने उनसे पूछा जब आप करते हो तो आपको क्या नुकसान होता है इससे। तो फिर उस व्यक्ति ने खुद बताया कि जब मैं पीता हूँ तो मैं कहीं भी पड़ा हुआ मिलता हूँ या मुझे होश नहीं रहता है, कई बार मैं ऐसी चीज़ें करता हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए शायद, जैसे कई बार छेड़खानी करना हुआ, खुद को नुकसान पहुँचाना हुआ, लड़ाइयाँ करना। तो उन्होंने दोनों चीज़ें बताई। तो फायदे के रूप में भी पूछा उनसे क्या हुआ, तो फायदे के रूप में कुछ समय के लिए शायद मैं कुछ चीज़ें अपनी भूल जाता हूँ, लेकिन उसने नुकसान ज़्यादा उसके बताए। तो ऐसे दोस्ती में उनसे बातचीत किया, तो हमने एक हमारा ग्रुप चलता है, उस ग्रुप में उस बच्चे को हमने जोड़ा। तो ग्रुप में हमने बातचीत करना कि हम और क्या चीज़ें कर सकते हैं, अल्टरनेटिव क्या है, मान लो हमें कोई परेशानी होती है तो हम और क्या कर सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, किसी की मदद ले सकते हैं। तो जुड़ाव इस तरीके से होता है। फिर हम काउंसलिंग के प्रोसेस में जाते हैं, फिर हमें लगता है कि केस में शायद हम नहीं मदद, तो फिर हम रेफरल करते हैं, तो जो प्रोफेशनल काउंसलर हैं या जो नशा मुक्ति केंद्र हैं तो फिर हम उनकी सहायता लेते हैं। तो इस तरीके से हम उनमें मदद करते हैं। आज मुझे खुशी इस बात की जब उस व्यक्ति से बातचीत हुआ तो उसने वो काउंटिंग करके बता रहा है कि मैंने 3-3.5 लाख रुपए का नशा किया और पैसे ना होने के बाद कई बार चोरियां भी की, तो कई बार लोगों से पैसा भी मांगा और कई बार पिटे भी हैं। लेकिन एक चीज मुझे समझ में आया कि शायद उनको समझाने वाला एक स्पेस नहीं था, या वो उनमें वो अवेयरनेस नहीं थी, या उनके साथ में दिक्कत चल रही है वो वहीं कहीं शेयर नहीं कर पाए। तो वो एक स्पेस उनको हमसे मिला, उन्होंने शेयरिंग किया, काउंसलिंग हुआ, हमने और ऐसे लोगों से जोड़ा जो उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी वो जो बच्चा है वो बिल्कुल नशा नहीं करता है। तो ये हमारे लिए बड़ा
0: मतलब इससे बात कह सकते हैं कि जितने भी लोग नशा कर रहे हैं और अभी तक मान लीजिए वो छोड़ नहीं पा रहे हैं और उसके आदी हैं, तो अगर वो काउंसलिंग तक पहुंचते हैं या आपसे या आप जैसी अन्य संस्थाओं के संपर्क में आते हैं तो बहुत बड़ा मतलब

0: कारण बन सकता है कि वो नशे से दूर हो जाए। जितनी बात आपकी हुई अपनी, जब आप इस तरह के केसेस आपको मिलते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों या युवा हों, तो परिवार का क्या आपको उसमें सपोर्ट मिलता है, या कई बार आपको लगता है कि परिवार भी आप लोगों के अगेंस्ट हो जाए, वो भरोसा कर पाते हैं आप पे जल्दी कि ये हमारे बच्चे को या इंसान का नशा छुड़ाने के लिए आए हैं या उसमें सहायता करेंगे, या अगेंस्ट भी होता है, दोनों बातें बताइएगा।
1: विश्वास एकदम से तो वो नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लगता है ये अचानक से कौन सा व्यक्ति आ गया जो हमारे परिवार की इतनी चिंता कर रहा है या हमारे परिवार के बारे में सोच रहा है। तो वो उस विश्वास को बना पाना शुरुआत में मुश्किल होता है, लेकिन जब लगातार उनसे मुलाकात होती है, कई बार जब हम जिस तरीके के संवाद करते हैं, कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, तो हम उन्हें इन्वाइट भी करते हैं, तो कुछ चीज़ें वहाँ से ऑब्जर्व करते हैं। जैसे जिस बच्चे की मैंने आपको कहानी इससे पहले बताई, तो उन परिवार का पहले ये था कि वो नहीं भेजते थे, लेकिन उन्होंने जब अवसर दिया, हमने उन्हें जोड़ा, उन्होंने अपने बच्चे में बदलाव देखा, तो उनका विश्वास हमसे बढ़ा, तो फिर उन परिवार ने हमको सहयोग करना शुरू किया। क्योंकि परिवार भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों से बहुत परेशान होता है। जब परिवार को जोड़ा, उन्होंने अपने घर में उस बच्चे के अंदर बदलाव देखा, तो उनमें एक विश्वास बढ़ा और फिर उन्होंने हमें सहयोग किया। तो शुरुआत में तो बहुत दिक्कतें होती हैं, क्योंकि आप जब किसी के पास जाते हैं तो उन्हें भी लगता है, क्योंकि कई बार ऐसे लोग भी जुड़ते हैं जो आपका सहयोग करने तो आते हैं, लेकिन वो सहयोग ना करके आपका उपयोग कर लेते हैं कई बार, तो ये एक चुनौती रहती है। लेकिन आप लगातार काम करते हैं, क्योंकि मुश्किलें नहीं आएंगी तो आप काम नहीं कर पाओगे और आप सीख नहीं पाओगे। तो ये जो परेशानी आई, ये चुनौती थी, लेकिन हमारे लिए सीख भी था कि हमें परिवार से कैसे जुड़ना है, क्योंकि हम सीधे उन्हें समाधान लेकर जाएंगे तो वो नहीं समझेंगे। तो उनकी समस्याओं को समझना, समस्याओं से उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, जब तक वो इस चीज़ को महसूस नहीं करेंगे तो शायद वो आपको मदद नहीं कर पाएंगे। तो एक परिवार के रूप में हमारा उनसे जुड़ाव होता है, ना कि एक संस्था या समाजसेवी के रूप में। तो एक परिवार का सदस्य बन के हम उनसे जुड़ते हैं, फिर उनके साथ में काम करते हैं।
0: एक बात और पूछेंगे निहारिका जी, जो जैसे आप इसमें काम कर ही रही हैं और इतने लंबे समय से, अलग अलग आपने बताया लगभग 6 राज्यों में आप काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अभी जितने लोग जैसे आप कर रहे हैं ये पर्याप्त है, या अभी काफी और लोगों को या कुछ अन्य संस्थाओं को आने की जरूरत है, क्योंकि नशे की प्रवृत्ति तो काफी बड़ी हुई है?
1: मुझे लगता है कि बहुत कम है और बहुत काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि सुविधाएं हैं लेकिन उसकी अवेयरनेस या लोगों तक उसकी जानकारी नहीं है। तो लोगों को आगे आना पड़ेगा और लोगों की आवश्यकता है इसमें काम करने के लिए। और मुझे लगता है कि हमारी जो व्यवस्था है उसमें और बदलाव करने की भी ज़रूरत है। मैं जो देख पाती हूँ कि बच्चों के लिए उस तरीके की सुविधा नहीं है कि हम पुनर्वास उनका कर पाए, खासतौर पर नशे की उससे। एक दूसरा हमें ये थोड़ा बालश्रम में भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कि अभी तक यदि हम बालश्रम कानून की बात करें तो नशे में जो बच्चे लगे हुए हैं कहीं ना कहीं हम उसको एड्रेस नहीं कर पाते हैं। तो हमें इस और भी देखने की ज़रूरत है कि नशे में कितने जो बच्चे हैं वो काम कर रहे हैं, वो भी देखने की आवश्यकता है। दूसरा, जो हमारी व्यवस्थाएँ चल रही हैं अलग अलग, उन पर भी हमें मजबूत और वो कैसे काम कर पाएँ, इसकी बहुत ज़रूरत है। तो एक तो बच्चों के लिए ऐसे केंद्र हो,
0: जैसे काम मतलब उनको रोकने के लिए और नशे से दूर करने के लिए।
1: बिल्कुल, ऐसे कुछ कुछ अभियान चल रहे हैं, लेकिन उस अभियान को और मजबूती और सक्रिय होने की जरूरत है। और खासकर जमीनी स्तर पे जो सुविधाएं मिलना चाहिए, जैसे मैं ऐसे केंद्रों की बात कर रही हूँ जहां पर बच्चों को निःशुल्क एक पुनर्वास जो होना चाहिए, एक प्रॉपर काउंसलिंग मिलना चाहिए, एक जगह होनी चाहिए जहाँ से बच्चा निकल पाए, तो वो एक सुविधाओं का गैप नज़र आता है। दूसरा, जो प्रचार प्रसार होना चाहिए योजनाओं का, जानकारियों का, वो एक मुझे कम नज़र में आता है। तो इस तरीके की चीज़ें और होना चाहिए और लोगों तक उसका उपलब्धता होनी चाहिए। तो यदि हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, और मुझे लगता है कि परिवार में भी हमें ध्यान देना चाहिए, कि कई बार परिवार का जो माहौल होता है वो बहुत असर करता है, और भी जागरूक होने की ज़रूरत है। और कई बार मैंने देखा है लोग जागरूक तो होते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं। जैसे हम देखें कई बार जब नशे के पदार्थ मिलते, उसमें लिखा होता है कि इसमें कैंसर ये है, हम उपयोग करते, हम जानते हैं लेकिन हम उसमें एक्शन नहीं लेते। तो उस पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, यदि आप जागरूक हैं, अवेयर हैं, तो लेकिन उसके लिए कार्यवाही करना बहुत ज़रूरी है।
0: आप जब फील्ड में काम करती हैं, इस पर लंबे समय से काम कर भी रही हैं, तो आपको किस तरह की समस्याएं फेस करने में आती हैं? इतना आसान तो है नहीं कि भाई कोई आपको पता चला या मिले आप उस व्यक्ति से कि ये नशा करता है, तो उसके बाद यूं ही तो हो नहीं जाता हो कि उनसे नशा, आपको भी बहुत सारी समस्याओं को फेस करना होता होगा, तो वो किस तरह की होती है?
1: कई बार जब हम समुदाय में इंटर करते हैं तो बहुत सारे जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, जो मैं देखती हूँ कि नशे कारण बहुत ज़्यादा अनसेफ हो जाते हैं, असुरक्षित हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ खुला स्पेस या खेलने का मैदान है वहाँ पर लोग ग्रुप में बैठ के नशा करते हैं या उस तरीके की गतिविधियाँ करती हैं, तो एक जो असुरक्षित वाला माहौल है वो मुझे वहाँ नज़र में आता है। दूसरा जो चुनौती कई बार रहता है, यदि व्यक्ति नशे में है तो हिंसक होता है, वो चीज़ों को उस समय समझ नहीं पाता है, तो वो हिंसक जैसा माहौल जो है वहाँ पे देखने को मिलता है। और दूसरा जो है, जो खासतौर पर जो महिलाओं के साथ में जो हिंसा है, लड़कियों के साथ में जो छेड़खानी वाले मसले हैं, वो बहुत समुदाय में नज़र आते हैं। जैसे घरेलू हिंसा का एक बड़ा कारण यही है, नशा है, और कई बार जो रिपोर्टिंग भी होना चाहिए वो कई बार नशे के कारण वो रिपोर्टिंग भी नहीं हो पाती है कि व्यक्ति नशे में शायद गलती से हो गया होगा, तो एक जो रिपोर्टिंग है वो भी नहीं हो पाती है। और कई बार व्यक्ति क्योंकि वो नशे में है तो इस चीज़ को वो टाल देते हैं कि नशे में इसलिए शायद उनसे गलती हो गई होगी। तो इस तरीके की समस्याएँ जो है हमें वहाँ पर नज़र में आती है। मानसिक स्वास्थ्य एक स्ट्रेस वाला बहुत है, क्योंकि यदि आपके परिवार में कोई नशा कर रहा है, माहौल वैसा है, तो आप तनावित महसूस करेंगे और आपका मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य पे उसका असर पड़ेगा ही। तो ऐसे तमाम समस्याएं जो हैं वो नज़र में। कई बार मैं देखती हूँ कि बहुत सारे जो बच्चे वो स्कूल से बाहर ड्रॉप आउट भी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि घर में यदि कोई बीमार है या नशे के लिप्त है तो वहाँ पर जिम्मेदारी फिर जो है बच्चों को निभानी पड़ती है।
0: सॉल्यूशन जो ये समस्याएं आपको लगती हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या इनके सॉल्यूशंस हैं ताकि ये समस्याएं लगभग कम और ख़त्म हो और इस पर काम और बेहतर करा जाए? जैसे आपने समस्याएं गिनाई, तो इन ये समस्याएं ना आए आप, इसके लिए कोई आपको लगता है क्या तरीके हैं?
1: मुझे लगता है एक तो हमें अवेयरनेस पे, जागरूकता पे काम करना चाहिए, जो मुझे लगता है खासतौर पे जहाँ पर अवैध तरीके से जो नशे के पदार्थ उपलब्ध हैं उस पे कार्रवाई होना चाहिए और सख्त कार्रवाई होना चाहिए। तो ज़मीनी स्तर पे हमें उन जगहों को चयनित करना और उस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और ख़ासतौर पे जो लोग नशे में लिप्त हैं उनको बाहर निकालने के लिए हम जो प्रक्रियाएं चला सकते हैं वो प्रक्रियाओं की सुविधाएं हमें उपलब्ध करानी चाहिए, चाहे वो एक परामर्श देना हो, चाहे वो उनके पुनर्वास के लिए नशा मुक्ति केंद्रों की ज़रूरत हो। ऐसे कुछ अभियान जो मैंने देखा है, जैसे पुलिस विभाग का अभियान, तो उन्होंने बहुत से सामाजिक संस्थाओं के साथ में, युवाओं के साथ मिलकर, कॉलेजेस के साथ में मिलकर चलाया, जो बहुत प्रभावी रहा है। तो यदि हम सब मिलकर उसमें काम करेंगे तो एक बहुत बेहतर रिजल्ट हम उसमें देख पाएंगे। तो सब साथ में मिलकर काम करें, ये बहुत ज़रूरी है।
0: शुरू में भी एक एग्जांपल दिया था, कोई बच्चा था 10 साल की उम्र से ही नशे में आ गया था, कोई और दूसरा भी हो सकता है 12 साल की, एक उनकी किसी उम्र हो सकती है। तो जो भी होते हैं जब ये नशे से मुक्त हो जाते हैं तो इनको दोबारा सामान्य जीवन में लाने के लिए आप क्या प्रयास करते हैं, क्या होता है कि कैसे क्या आ पाते हैं और आते हैं तो फिर वो किस तरह से काम कर रहे होते हैं? आपने ऐसे लोग एग्जाम्पल होंगे आपके सामने,
1: काफ़ी सारे युवा साथी हम जुड़े हैं। तो कई बार होता है कि जो प्रीवियस लाइफ है उनकी, तो कई बार लोग जज भी करना शुरू कर देते हैं। तो जब वो उस दूर लाइफ से बाहर आता है लेकिन लोग कमेंट्स उसको कई बार करते हैं, तो एक स्टिग्मा भी होता है कई बार, तो वो एक चुनौती होता है। तो वो माहौल को निर्माण करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये एक चुनौती है उन लोगों के लिए। तो इस पे हम लोग जो काम करते हैं, खासतौर पर हम लोग सिर्फ उस परिवार के साथ साथ उस समुदाय में भी काम करते हैं ताकि ऐसा वातावरण मिल पाए ताकि व्यक्ति सहज महसूस करे वहाँ पर। तो लोगों को हम जागरूक करते हैं कि यदि व्यक्ति बाहर आया है उस चीज़ से तो हम कैसे मिलकर उन्हें सहयोग कर सकते हैं। तो कम्युनिटी में हमारे जो संवाद होते हैं, परिवारों के साथ में संवाद होते हैं, कई बार हम लोग ऐसी गतिविधियों का भी, समावेशी गतिविधियों का भी आयोजन करते हैं कि हर व्यक्ति उसमें जुड़ पाए। तो इस तरीके के मुद्दों पर हम बात करते हैं और ख़ासतौर पर लोगों की भूमिका उसमें करते हैं कि आपके समुदाय में रहने वाला कोई व्यक्ति है, वो आपका परिवार का हिस्सा है, वो आपका हिस्सा है, तो हम उस व्यक्ति को बेहतर रहने के लिए कैसे कर सकते हैं। तो समुदाय के साथ में हम लोग जब काम करते हैं तो ऐसा माहौल देने की प्रयास करते हैं, और कई बार देखा भी है जो हमारी गतिविधियां होती हैं, जो कार्यक्रम करते हैं, उस व्यक्ति को ऐसा महसूस कराते हैं कि वो व्यक्ति वहाँ सहज महसूस करे और जो पूर्व में जो उसके साथ में घटनाएं हुई हैं, जो हुआ है, वो सामने।
0: एक चीज़ तो चलते चलते समय की भी एक सीमा होती है। एक प्रश्न आएगा, अभी आपने शुरुआत कही थी कि स्लम एरियाज में जाना पड़ता है आपको, हाँ ये सत्यता है और आप इस पे काम करती, तो ये मोहर इस बात की कि स्लम एरियाज में इस तरह के केसेस ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन क्या लगता है आपको जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, संभ्रांत घरों के हैं, जिनके पास सारी सुविधाएं, वो भी नशे में लिप्त हो रहे हैं?
1: बिल्कुल है।
0: इस पर एक बार आप बताइए, उसमें कितने केसेस आपने देखे, या मतलब उसको ध्यान में रखते हुए बताइए।
1: बिल्कुल, कोविड के समय हम लोगों ने हमारा एक ब्रोशर तैयार किया था काउंसलिंग के लिए, तो वहाँ पर हमारे पास कई बार केसेस आए और वो ऐसे हाई प्रोफाइली सोसाइटी के ही लोगों के आए थे। तो क्योंकि स्लम एरिया में हमारा एक्सेस है, वहाँ लोग दिखते हैं, जुड़ते हैं, तो वहाँ पता चल जाता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो आइसोलेटेड हैं, जो रहते हैं, वहाँ पर भी समस्या है। कई बार जब मैं बाहर निकलती तो देखती हूँ जो बच्चे पीजीज में यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आते हैं, या जो तमाम दुकानें हमें नजर आती है, वहाँ बहुत बड़ा स्टूडेंट क्राउड हमें नजर आता है। तो हर वर्ग का व्यक्ति इससे परेशान है और जुड़ा हुआ है।
0: इनका क्या प्रमुख कारण होता है? ये तो सब तरह से सुविधाएं इनके पास, टारगेटेड हैं, अच्छा खासा माहौल है, ये नशे की लत में क्यों पड़ जाते हैं?
1: माहौल का मतलब सिर्फ अच्छी शिक्षा देना नहीं होता है। माहौल जो है कि आपका बच्चा जो है वो किन गतिविधियों में जा रहा है, उसे क्या समस्या है, वो एक स्पेस वहाँ पर नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि जो पेरेंट्स का भी जो डायलॉग है वो बच्चों के साथ निरंतर नहीं होता है, और कई बार बच्चा जो बाहर गतिविधि करता है उसका भी ऑब्जर्वेशन कई बार नहीं रहता है, क्योंकि वो वहाँ पर कई बार बच्चे बाहर रहते हैं तो उनकी मॉनिटरिंग उस तरीके से नहीं हो पाती है, या फिर वो दोस्तों के साथ में जुड़ के जो चीज़ें कर रहा है। और कई बार जो है जो हाई प्रोफाइल सोसाइटी में लोगों को जो मुझे जो देखा है कई बार, उनके लिए एक पैटर्न है अपनी लाइफ को इन्जॉय करने का, तो वो इन्जॉयमेंट के जो साधन के रूप में वो को देखते हैं, तो मुझे लगता है कि उन पे भी और बात करने की जरूरत है, क्योंकि हम उन्हें बना देते कि आपको सुविधाएं, आपको जरूरत नहीं है परेशानी, तो वो उसी माहौल में डरते कि हमें शायद किसी से गाइडेंस की आवश्यकता नहीं, या फिर हम जो कर रहे वो सब ओके है।
0: मतलब इस बात से निकल के ये आता है कि एक जो केवल हम गरीबी या स्लम में रहने वाले बच्चों पे केवल आरोप नहीं बढ़ रहे हैं, हम तो वास्तविकता पे बात कर रहे हैं कि हमें वहां भी वो बच्चे मिलते हैं, और जो नशे का उपयोग है वो केवल गरीबी ही नहीं, वो तो एक टारगेटेड है ही, लेकिन एक समाज जो पूरी तरह से संभ्रांत है, उसके पास सारी सुविधाएं, वो भी नशा कर रही है, उसके नशे करने के अपने अलग कारण है, है ना, ये बात हम कह सकते हैं। निहारिका जी, आपका तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए, और बहुत ही अच्छे कार्य में आप लगी हैं, इसके लिए हम आपका पुनः धन्यवाद करेंगे हमारी और हमारे रेडियो की टीम की ओर से। प्रयास बहुत ज़रूरी है कि इस नशे को ख़त्म करा जाए, ताकि देश एक अच्छी दिशा में बढ़े।
1: बिल्कुल,
0: तो आपका ही जो आप साधुवाद हम आपका देंगे जो आप कार्य कर रहे हैं। तो ये था कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, जिसपे हमने आज बात करी नशीली दवाओं का दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ विषय पर। और ये जो कार्यक्रम था, इसका मार्गदर्शन हमें दिया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना है अदिति गौड़ जी की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, और समन्वय सहयोग है सतीश बाथम का, और मैं था आपके साथ आपका ध्वनि मित्र रत्नेश सोनी। निहारिका जी, आपका एक बार पुनः धन्यवाद।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
2: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज हमने जाना नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के संबंध में। जानकारी दी निहारिका पंसौरिया, जो कि विषय विशेषज्ञ हैं, और इनसे बातचीत कर रहे थे रत्नेश सोनी। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर सुनते रहें रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: नमस्कार, मैं हूँ अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
4: ढाका की आपूर्ति नावें और कैप्टन कॉक्स की त्रासदी। क्या आप जानते हैं कि औपनिवेशिक इतिहास की सबसे दुखद मानवीय विफलताओं में से एक संसाधनों की कमी के कारण नहीं, बल्कि आपूर्ति वाली नावों के एक ऐसे बेड़े के कारण हुई थी जिसे स्थानीय नौकरशाही ने खोजने से ही इनकार कर दिया था। ये कहानी है ढाका की आपूर्ति नावों की और उस व्यक्ति की जिसने अपने ही सहयोगियों की टाल मटोल वाली नीति से लड़ते हुए दम तोड़ दिया। वर्ष 1799 था। चटगांव के दक्षिणी जंगलों में एक भयावह मंजर था। बर्मी हिंसा से बचकर भागे 25,000 से अधिक अराकानी शरणार्थी भूख से मर रहे थे। इस संकट को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार ने स्थानीय अधिकारियों को दरकिनार कर दिया और कैप्टन ही राम कॉक्स को विशेष आयुक्त नियुक्त किया। वो प्रोकंसुलर शक्तियों के साथ आए थे और उन्हें भूखों को खिलाने के लिए स्थानीय खजाने से असीमित धन निकालने का अधिकार था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्थानीय अधिकारियों ने अपने क्षेत्र में इस बाहरी के हस्तक्षेप पर कैसी प्रतिक्रिया दी? उन्होंने सक्रिय असहयोग का अभियान छेड़ दिया। जब कॉक्स ने राहत के लिए 80,000 रुपए मांगे, तो चटगांव के कार्यवाहक कलेक्टर थॉमस पाउनी ने खजाना खोलने से साफ मना कर दिया। उन्होंने स्थापित प्रक्रिया की आड़ ली और 3 प्रतियों में कागजी कार्रवाई की मांग की। हताश होकर कॉक्स ने अनाज के लिए पड़ोसी जिलों ढाका और त्रिपुरा की ओर देखा, लेकिन वहां की नौकरशाही भी उतनी ही संवेदनहीन थी। ढाका और त्रिपुरा के अधिकारी एक दूसरे पर जिम्मेदारी टालते रहे, जबकि शरणार्थी भोजन के अभाव में प्रतिदिन मर रहे थे। इस बेतुकेपन का चरम तब आया जब आखिरकार चावल की व्यवस्था हो गई। आपको लगेगा कि संकट टल गया, लेकिन स्थानीय नौकरशाही ने अचानक दावा किया कि उन्हें नावें नहीं मिल रही हैं। विशाल नदी प्रणालियों वाले इस क्षेत्र में ढाका और चटगांव के अधिकारियों ने ये तर्क दिया कि उपयुक्त परिवहन नावें उपलब्ध नहीं थीं। क्या आप जानते हैं कि इस दैनिक प्रतिरोध का क्या परिणाम हुआ? जनवरी 1800 तक केवल 16,000 मन चावल ही बस्ती तक पहुंच सका, जो कॉक्स द्वारा मांगी गई मूल मात्रा के 1/4 से भी कम था। जो थोड़ी बहुत सहायता पहुंची, उसे भी भ्रष्ट अधिकारियों ने चुरा लिया। कार्यवाहक गवर्नर जनरल ने केवल भारी खर्च और स्थानीय अधिकारियों की परेशानी को देखा और मिशन को विफल घोषित कर दिया। उन्होंने कॉक्स को ये कहते हुए वापस बुला लिया कि वे स्थानीय सत्ता के काम में बहुत अधिक हस्तक्षेप कर रहे हैं। इस प्रणालीगत तोड़फोड़ से कॉक्स का मनोबल और स्वास्थ्य दोनों टूट गए। वे वहां की जहरीली जलवायु में बीमार पड़ गए और जल्द ही उनकी मृत्यु हो गई। आज कॉक्स बाजार शहर उनके एकमात्र स्मारक के रूप में खड़ा है, लेकिन उनकी कहानी लिमिटेड राज का एक डरावना उदाहरण है। ये हमें सिखाता है कि शुरुआती ईस्ट इंडिया कंपनी में अपने निजी स्वार्थ की रक्षा करने वाले कुछ मुट्ठी भर नौकरशाह किसी भी दुश्मन सेना से कहीं अधिक घातक हो सकते थे। ढाका की लापता नावें समुद्र में नहीं खोई थीं, उनका गला लाल फीता शाही ने घोंट दिया था।

नमस्कार, मैं हूं मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारी देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: स्वराजसन
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है स्वामी विवेकानंद के जीवन मूल्यों पर आधारित कार्यक्रम युग प्रवर्तक।
0: स्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के 150वें जन्मशती वर्ष के अवसर पर उनके आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: आपने अब तक जाना कि स्वामी जी मध्य प्रदेश होते हुए एक बार फिर महाराष्ट्र गए थे। वहां कोल्हापुर और बेलगांव में ठहरे थे। उन्हीं दिनों ट्रेन में उनकी मुलाकात लोकमान्य तिलक जी से हुई थी। उन लोगों की दोस्ती जीवन पर्यंत बरकरार रही। बेलगांव में श्री भाटे जी के अलावा वे श्री हरिपद मित्रा जी के घर में भी 9 दिनों तक ठहरे थे। उन दिनों की घटनाओं का विवरण हमें मित्र महाशय के संस्मरणों में मिलता है। वे वन विभाग के सब डिविजनल ऑफिसर थे। उन्होंने लिखा था,
1: बेलगांव 18 अक्टूबर 1892 ईस्वी मंगलवार। संध्या हुए लगभग 2 घंटे हुए हैं। एक प्रसन्न मुख युवा सन्यासी मेरे एक परिचित महाराष्ट्रीयन वकील के साथ मेरे घर पर पधारे हैं। मेरे वकील मित्र ने कहा, ये एक विद्वान बंगाली सन्यासी हैं, आपसे मिलने आए हैं। घूमकर देखा, प्रशांत मूर्ति, नेत्रों से मानो विद्युत प्रकाश निकल रहा हो, दाढ़ी मूछ मुड़ी हुई, शरीर पर गेरुआ अंगरखा, पैर में मरहटी चप्पल, सिर पर गेरुआ पगड़ी। सन्यासी के उस भव्य मूर्ति का स्मरण होने पर अभी भी जैसे अपनी आंखों के सामने देखता हूं। कुछ देर बाद प्रणाम कर पूछा, महाशय क्या आप तंबाकू का सेवन करते हैं? मेरे पास कोई और दूसरा हुक्का नहीं है, आपको यदि मेरे हुक्के में तंबाकू पीने में कोई आपत्ति न हो तो तंबाकू तैयार करने को कहूं। उन्होंने कहा,
2: तंबाकू चुरट जब जो पाता हूं तब उसी का सेवन करता हूं, और आपके हुक्के से पीने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
1: फिर मैंने उन्हें अपने यहां ठहरने के लिए कहा और उनसे पूछा, आपका सामान अपने यहां मंगवा लूं?
2: मैं वकील बाबू के यहां अच्छी तरह से हूं, और आपको बंगाली जानकर यदि उनके यहां से मैं चला हूं तो उनके मन में दुख होगा, क्योंकि वे सभी लोग मुझ पर बड़ी भक्ति और स्नेह करते हैं। अतएव ठहरने ठहराने के विषय में पीछे विचार किया जाएगा।
1: उस रात कोई अधिक बातचीत न हो सकी, किंतु उन्होंने जो 2-4 बातें कही उसी से अच्छी तरह समझ गया कि वो मेरी अपेक्षा 1000 गुना अधिक विद्वान है और बुद्धिमान है। इच्छा मात्र से ही वो बहुत धन उपार्जित कर सकते हैं, तथापि रुपया पैसा छूते तक नहीं, और सुखी होने के कोई भी साधन के न होते हुए भी मेरी अपेक्षा 1000 गुना सुखी है। ज्ञात हुआ उन्हें किसी वस्तु का अभाव नहीं है, क्योंकि उन्हें स्वार्थ सिद्धि की इच्छा नहीं है। मेरे यहां नहीं रहेंगे ये जानकर मैंने फिर कहा, यदि चाय पीने में कोई आपत्ति न हो तो कल प्रातःकाल मेरे साथ चाय पीजिए, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। उन्होंने आना स्वीकार किया और वकील बाबू के साथ उनके घर लौट गए। रात में उनके विषय में बड़ी देर तक सोचता रहा। मन में आया, ऐसा निष्प्रह, चीर सुखी, सदा संतुष्ट, प्रफुल्ल मुख पुरुष तो कभी देखा नहीं। दूसरे दिन 19 अक्टूबर 1892 ईस्वी की बात है, प्रातःकाल 6 बजे उठकर स्वामी जी की प्रतीक्षा करने लगा। देखते देखते 8 बज गए, किंतु स्वामी जी नहीं दिखाई पड़े। अंत में अधीर होकर मैं अपने एक मित्र के साथ स्वामी जी के वास स्थान की ओर चल पड़ा। वहां जाकर देखता हूं कि एक महासभा जुटी हुई है। स्वामी जी बैठे हुए हैं और उनके समीप अनेक प्रतिष्ठित वकील तथा विद्वान लोग बैठे हैं। उनके साथ बातचीत हो रही है। स्वामी जी किसी को अंग्रेजी में, किसी को संस्कृत में और किसी को हिंदी में उनके प्रश्नों का उत्तर तुरंत दे रहे हैं। कोई कोई हक्सले के दर्शन को प्रमाणिक मानकर उसके आधार पर स्वामी जी के साथ तर्क करने को उद्यत है, किंतु वे किसी को हंसी में, किसी को गंभीर भाव से यथोचित उत्तर देकर सभी को चुप करा रहे हैं। मैंने जाकर प्रणाम किया और एक और बैठ गया और अवाक सुनने लगा। सोचने लगा, ये मनुष्य है या देवता? एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण वकील ने प्रश्न किया, स्वामी जी संध्या पूजा आदि के मंत्र संस्कृत में हैं, हम लोग उन्हें समझ नहीं पाते, इन सब मंत्रोच्चारण का क्या कुछ फल है?
2: अवश्य उत्तम फल है। इन संस्कृत मंत्रों का अर्थ तो इच्छा रहने से सहज ही समझ सकते हो, फिर भी समझने की चेष्टा नहीं करते, इसमें भला किसका दोष? और यद्यपि तुम मंत्रों का अर्थ नहीं समझते, तो भी जब संध्या वंदन आदि करने बैठते हो तो उस समय क्या सोचते हो? धर्म कर्म कर रहा हूं ऐसा सोचते हो, या ये सोचते हो कि कोई पाप कर रहा हूं? यदि धर्म कर्म समझकर संध्या वंदन करने के लिए बैठते हो तो उत्तम फल पाने के लिए वही पर्याप्त है।
1: इसी समय दूसरे एक व्यक्ति संस्कृत में बोले, धर्म के संबंध में मलिच्छ भाषा द्वारा चर्चा करना उचित नहीं है, अमुक पुराण में इसका उल्लेख है। स्वामी जी ने उत्तर दिया,
2: किसी भी भाषा के द्वारा धर्म चर्चा की जा सकती है, हाई कोर्ट के फैसले को छोटी अदालत नहीं काट सकती।
1: और इस प्रकार 9 बज गए। जिन लोगों को ऑफिस या कोर्ट जाना था वे सब चले गए, कोई कोई उस समय भी बैठे रहे। स्वामी जी की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ते ही उन्हें चाय पीने के लिए जाने की बात याद आ गई। वे बोले, बच्चा बहुतों का मन तो दुखा कर नहीं जा सकता था ना, कुछ बुरा मत मानना। बाद में मैंने उनसे अपने निवास स्थान पर रहने के लिए विशेष अनुरोध किया। इस पर वे बोले कि मैं जिनका अतिथि हूँ, यदि उन्हें मना लो तो मैं तुम्हारे पास ही रहने को प्रस्तुत हूँ। फिर वकील महाशय को समझा बुझा कर स्वामी जी को साथ ले अपने स्थान पर आया। उनके साथ एक कमंडल और गिरवे वस्त्र में लपेटी हुई एक पुस्तक, बस इतना ही सामान था। स्वामी जी उस समय फ्रांस देश के संगीत के संबंध में एक पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे। घर पर आकर लगभग 10 बजे चाय पानी हुआ, उसके बाद ही स्वामी जी ने एक गिलास ठंडा जल भी मंगवा कर पिया। ये देखकर कि मुझे अपने मन की कठिन समस्याओं के बारे में पूछने का साहस नहीं हो रहा है, तो उन्होंने स्वयं ही मुझसे दो एक बातें की और उसी से उन्होंने मेरी विद्या बुद्धि को नाप लिया।
3: इस तरह हरिपद बाबू के घर पर 20 अक्टूबर तक 2 दिन बीत गए। इस सुयोग से हरिपद बाबू के मन में दीर्घकाल से धर्म और दर्शन के संबंध में जितने संदेह थे, स्वामी जी से उन्होंने एक एक कर सबको दूर करने का अनुरोध किया और स्वामी जी ने भी आनंद पूर्वक वैसा ही किया। इसके अलावा नगर के अनेक पढ़े लिखे लोग प्रतिदिन वहाँ एकत्रित होते और अनेक प्रसंग चलते। स्वामी जी भी सभी विषयों में यथा योग्य समाधान का उपाय बताते। शहर के 5वें दिन उन्होंने कहा,
2: सन्यासियों को नगर में 3 दिन और गांव में 1 दिन से अधिक ठहरना उचित नहीं। मैं अब जल्दी चला जाना चाहता हूँ। एक स्थान पर अधिक दिन रहने पर माया ममता बढ़ जाती है। हम लोगों ने घर और आत्मीय जनों का परित्याग किया है, अतः जिन बातों से उस प्रकार की माया में मुग्ध होने की संभावना है उनसे दूर रहना ही हम लोगों के लिए अच्छा है।
3: अंत में मित्र महाशय का आग्रह सुनकर वे और भी 2-4 दिन रुकने के लिए सहमत हो गए। स्वामी जी के याददाश्त के बारे में हरिपद बाबू ने लिखा है कि एक बार एक अंग्रेजी किताब से स्वामी जी 2-3 पन्ने कंठस्थ बोल गए। मित्र बाबू आश्चर्यचकित हो गए, सोचा सन्यासी जी ने इस किताब को क्यों रट लिया है। उन्होंने जवाब दिया,
2: रटा कहाँ है, बस 2 बार पढ़ा है, 1 बार स्कूल में पढ़ते समय और दोबारा 5-6 महीने पहले।
0: और एक दिन दोपहर में बिछौने पर लेटे हुए एक पुस्तक पढ़ते पढ़ते स्वामी जी जोरों से हंस पड़े। एकाएक ऐसा होने का कारण जानने के लिए हरिपद बाबू ने उस कमरे के दरवाजे के पास आकर देखा, स्वामी जी एकाग्रचित्त होकर पढ़ रहे हैं, किसी दूसरी ओर दृष्टि नहीं है। इस तरह प्रायः 15 मिनट बीत जाने पर उन्होंने हरिपद बाबू को देखकर अंदर आने के लिए कहा और हरिपद बाबू इतनी देर से खड़े हैं सुनकर कहा,
2: जब जो काम करना हो तब उसे पूरी लगन और शक्ति के साथ करना चाहिए। गाजीपुरा के पवहारी बाबा ध्यान जप पूजा पाठ जिस प्रकार एक चित्त होकर करते थे, उसी प्रकार वे अपने पीतल के लोटे को भी एक चित्त होकर मांजते थे। ऐसा मांजते थे कि सोने समान चमकने लगता था।
0: स्वामी जी उन दिनों साधारण व्यक्ति की तरह ही हास परिहास गपशप करते पर उसी के बहाने अनेक जटिल समस्याओं का समाधान भी कर देते थे। इसके साथ ही उनकी दृष्टि भी मर्म भेदी थी, प्रत्येक व्यक्ति के मन में अंदर तक देख लेते। एक समय एक धनी का पुत्र स्वामी जी के पास बारंबार आता था और साधु होने की इच्छा प्रकट करता था। उत्सुक होकर हरिपद बाबू ने जानना चाहा, स्वामी जी इस लड़के को साधु बनने के लिए उपदेश देंगे या नहीं। किंतु स्वामी जी ने कहा,
2: ये केवल एमए परीक्षा के भय से साधु होना चाहता है। मैंने उससे कहा है, एमए पास कर चुकने के बाद साधु होने के लिए आना, साधु होने की अपेक्षा एमए पास करना कहीं अधिक सरल है।
3: हरिपद बाबू की पत्नी किसी गुरु से मंत्र दीक्षा लेना चाहती थी। उस समय हरिपद बाबू ने अपनी पत्नी से कहा था, ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाना जिसकी भक्ति मैं भी कर सकूं। ऐसे स्वामी जी को अपने निकट पाकर उन्होंने सहधर्मिणी से पूछा, यदि ये सन्यासी तुम्हारे गुरु हो तो तुम उनकी शिष्या हो सकती हो। स्वामी जी से ये अनुरोध करने पर उन्होंने पहले तो कहा कि गृहस्थ के लिए गृहस्थ गुरु ही ठीक है, गुरु होना बहुत कठिन कार्य है, शिक्षा का समस्त भार ग्रहण करना पड़ता है, दीक्षा के पहले गुरु के साथ शिष्य का कम से कम 3 बार भेंट होना आवश्यक है, इत्यादि कहकर मित्र दंपति को टालना चाहा, किंतु उन लोगों के तीव्र अनुरोध की उपेक्षा नहीं कर पाए। अंत में 25 अक्टूबर को उन दोनों ने स्वामी जी से दीक्षा ली।
0: एक दिन स्वामी जी ने कहा, कुछ दिन तुम्हारे साथ जंगल में तंबू डालकर रहने की मेरी इच्छा है, किंतु शिकागो में धर्म महासभा होगी, यदि वहां जाने की सुविधा हुई तो वहीं जाऊंगा। हरिपद बाबू ने तुरंत चंदा इकट्ठा करने का प्रस्ताव किया, किंतु स्वामी जी ने कुछ सोचकर उसे स्वीकार नहीं किया। हरिपद बाबू उस समय स्वास्थ्य के लिए औषधियों का अत्यधिक व्यवहार करते थे। इस बात को जानकर स्वामी जी ने एक दिन कहा,
2: जब देखो कि किसी रोग ने अत्यधिक प्रबल होकर धराशायी कर दिया है, उठने की शक्ति नहीं रही, तभी औषधि का सेवन करना, अन्यथा नहीं। मानसिक दुर्बलता आदि रोगों में से तो 90% काल्पनिक हैं। जितने दिन जियो आनंद से रहो, पर जिस आनंद से एक बार कष्ट हो चुका है उसके पीछे फिर और कभी न दौड़ना। तुम्हारे हमारे समान एक व्यक्ति के मर जाने से पृथ्वी अपने केंद्र से दूर तो न हट जाएगी और न जगत का किसी तरह से कोई नुकसान ही होगा। आप भले हो तो जग भला, ये उक्ति कितनी सत्य है कोई नहीं समझता। आज से किसी में बुराई देखने की चेष्टा करना एकदम छोड़ दो। देखना जितना ऐसा कर सकोगे उतना ही उनके विचार और उनके कार्य बदल जाएंगे।
0: दवा और लोक व्यवहार विषयक दोनों उपदेशों को मान लेने पर हरिपद बाबू का बड़ा कल्याण हुआ था। उन्होंने स्वयं लिखा था, बस उसी दिन से औषधि सेवन का मेरा पागलपन दूर हो गया और दूसरों के दोष ढूंढने की चेष्टा को त्याग देने के फलस्वरूप क्रमशः मेरे जीवन का एक नया भाग उजागर हो गया।
3: और एक दिन की बात है, कलकत्ते में एक व्यक्ति भूख से मर गया। ये समाचार अखबार में पढ़कर स्वामी जी इतने दुखी हुए थे कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। वे बारंबार कहते रहे, अब तो देश गया। किसी के द्वारा कारण पूछे जाने पर वे बोले,
2: देखते नहीं दूसरे देशों में गरीबों की सहायता के लिए पुअर हाउस, वर्क हाउस, चैरिटी फंड आदि संस्थाओं के रहने पर भी प्रतिवर्ष सैकड़ों मनुष्य अनाहार से मर जाते हैं, पर हमारे देश में एक मुट्ठी भिक्षा की प्रथा होने से अनाहार के कारण लोगों का मरना कभी सुना नहीं गया। मैंने आज पहली बार अखबार में ये समाचार पढ़ा कि अकाल न होते हुए भी कलकत्ता जैसे शहर में अन्न के बिना मनुष्य मरे।
0: हरिपद बाबू द्वारा पश्चिमी सभ्यता के अनुसार भी भिक्षा देने की प्रथा बंद करने के पक्ष में विचार प्रकट करने पर स्वामी जी अत्यंत उदार दृष्टि के साथ बोले,
2: दोगे तो केवल 2-1 पैसा, उसके लिए वो 1 पैसा वो किसमें खर्च करेगा? ठीक खर्च होगा या गलत होगा, ये सब बातें लेकर माथा पच्ची करने की क्या आवश्यकता। और यदि सचमुच ही वो उस पैसे को गांजे में उड़ा देता हो तो भी उसे देने से समाज का लाभ ही है, नुकसान नहीं। क्योंकि तुम्हारे समान लोग यदि दया करके उसे कुछ ना दें, तो तो वो तुम लोगों के पास से चोरी करके लेगा।
3: वस्तुतः स्वामी जी के जीवन में ये एक विशेष गुण दिखाई पड़ता है, वे कभी भी पश्चिमी जगत की सभ्यता के मोह से मोहित होकर अपने देश की सभी प्रथाओं की निंदा नहीं करते थे, बल्कि प्रत्येक आचार विचार का उद्देश्य और अच्छाई बुराई सब देखकर तभी किसी निश्चय पर आते। परंतु बाल विवाह के विरुद्ध वे अत्यंत स्पष्ट विचार रखते थे और बेलगांव में उन्होंने इसे व्यक्त भी किया था। हरिपद बाबू ने लिखा है,
1: मैंने पहले से ही स्वामी जी को बाल विवाह के बिल्कुल विरुद्ध देखा है। वे सदैव सभी को, विशेषतः युवकों को, हिम्मत बांधकर समाज के इस कलंक के विरोध में खड़े होने के लिए उपदेश देते थे। स्वदेश के प्रति इस प्रकार अनुराग भी मैंने और किसी में नहीं देखा। स्वामी जी के पाश्चात्य देशों से लौटने के बाद जिन लोगों ने प्रथम बार उनके दर्शन किए थे, वे भी नहीं जानते कि वहां जाने के पूर्व वे संन्यास आश्रम के कठोर नियमों का पालन करते हुए, पैसों को स्पर्श तक नहीं करते हुए, कितने दिनों तक भारत के समस्त प्रांतों में भ्रमण करते रहे। किसी के एक बार ऐसा कहने पर कि उनके समान शक्तिमान पुरुष के लिए नियम आदि का इतना बंधन आवश्यक नहीं है, इस पर वे बोले,
2: देखो मन बड़ा पागल है, बड़ा उन्मत्त है, कभी भी शांत नहीं रहता, थोड़ा मौका पाते ही अपने रास्ते खींच ले जाता है, इसलिए सभी को निर्धारित नियमों के भीतर रहना आवश्यक है। सन्यासी को भी मन पर काबू रखने के लिए नियम के अनुसार चलना पड़ता है, मन पर विश्वास करके कभी निश्चित न रहना।
3: स्वामी जी से पहले भी अनेक देशी राजा महाराजाओं का परिचय हुआ था, किसी किसी ने तो दीक्षा भी ग्रहण की थी। इतने राजा महाराजाओं से एक सन्यासी इतनी घनिष्ठता क्यों रखे, इस विषय में एक दिन स्वामी जी से किसी ने पूछा और उन्होंने कहा,
2: निर्धन प्रजा की इच्छा रहने पर भी सत्कार्य करने की क्षमता उसके पास कहाँ, किंतु राजा के हाथ में प्रजाओं के मंगल विधान की क्षमता पहले से ही है, केवल उसे करने की इच्छा भर नहीं है। वो इच्छा यदि उसके भीतर किसी प्रकार जागृत कर सकूं, तो ऐसा होने पर उसके साथ साथ उसके अधीन सारी प्रजा की अवस्था बदल सकती है, और इस प्रकार जगत का कितना अधिक कल्याण हो सकता है।
3: अर्थात वे सन्यासी हैं, किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए धनी और शक्तिमान लोगों से आत्मीयता स्थापित नहीं करते थे। दरिद्रों के लिए उनका प्राण रोया करता था और उन लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने शासक वर्ग के हृदय में जनहित का बीज बोना चाहा था। कालांतर में स्वामी जी ने ये पथ छोड़कर लोक शिक्षा और जन जागरण के मार्ग को ही ठीक समझा था, और भारतीय विख्यात नेताओं में उन्होंने ही इसके प्रयोजन को सर्वप्रथम स्वीकार उद्घोष किया था। हरिपद बाबू कहते थे,
1: स्वदेश का कल्याण साधन उनकी जीवन का अन्यतम व्रत था, किंतु उन दिनों संन्यास और स्वदेश प्रेम में तालमेल ढूंढ पाना बहुत सहज नहीं था। अतएव स्वामी जी की भावधारा को एकाएक ग्रहण करने में अनेक लोगों को बाधा होती, और प्रत्यक्ष रूप से वे लोग उस विचारधारा की समालोचना भी करने लगते। स्वामी जी का स्वदेश के प्रति अत्यंत अनुराग था, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं। एक दिन इस संबंध में बातचीत के प्रसंग में उनसे कहा गया कि संसारी लोगों का अपने अपने देश के प्रति अनुराग रखना कर्तव्य है, परंतु सन्यासियों को अपने देश की माया छोड़कर सभी देशों पर समदृष्टि रखकर सभी देशों की कल्याण चिंता हृदय में रखना अच्छा है। इसके उत्तर में स्वामी जी ने जो ज्वलंत बातें कही, उनको जीवन में कभी नहीं भूल सकता। वे बोले,
2: जो अपनी माँ को खाना नहीं देता, वो दूसरे की माँ का क्या पालन करेगा।
1: वे स्वीकार करते थे कि हमारे प्रचलित धर्म आचार व्यवहार में, सामाजिक प्रथा में अनेक दोष हैं। वे कहते थे,
2: उन सभी का संशोधन करने की चेष्टा करना हम लोगों का मुख्य कर्तव्य है, किंतु उसके लिए संवाद पत्रों में अंग्रेजों के सामने उन दोषों को घोषित करने की क्या आवश्यकता है। घर की गलतियों को जो बाहर दिखलाता हो उसके समान गधा और कौन है।
0: हरिपद बाबू स्वयं अपने आप गीता पढ़ा करते किंतु उसका अर्थ समझ नहीं कर पाते थे, अतएव ऐसे पढ़ने की कोई सार्थकता नहीं मानकर उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया। किंतु जब स्वामी जी उस ग्रंथ से विशेष अंश पढ़कर उसकी व्याख्या करने लगे तब वे समझ सके कि गीता कैसा अपूर्व ग्रंथ है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से उसका कैसा घनिष्ठ संबंध जानकर उसके पुनः अध्ययन में अपना मन लगाया और बहुत लाभान्वित हुए। परंतु स्वामी जी ने केवल गीता की गंभीर बातों की व्याख्या ही नहीं की, उन्होंने टॉमस कार्लाइल के ग्रंथों और जूलियस बर्न के उपन्यासों के साहित्यिक सौंदर्य और चिंतन के विस्तार को भी बराबरी से समझाया था। हरिपद बाबू के घर में देखते देखते 8 दिन बीत गए। 9वें दिन यानी 27 अक्टूबर को स्वामी जी ने कहा,
2: और नहीं ठहरूंगा, रामेश्वर जाने के विचार से बहुत दिनों से इस ओर निकला हूं, पर यदि इसी प्रकार चला तो इस जन्म में शायद रामेश्वर पहुंचना ना हो सकेगा।
0: हरिपद बाबू ने निश्चय ही और रुकने का अनुरोध किया किंतु वे उन्हें रोक नहीं सके। ये निश्चित हुआ कि स्वामी जी मेल ट्रेन से मर्मागोवा की यात्रा करेंगे। हरिपद बाबू ने टिकट खरीद कर उन्हें गाड़ी में बैठा दिया। इसके बाद साष्टांग प्रणाम कर कहा,
1: स्वामी जी, मैंने जीवन में आज तक किसी को भी आंतरिक भक्ति के साथ प्रणाम नहीं किया, आज आपको प्रणाम कर मैं कृतार्थ हो गया।
3: पुर्तगालियों द्वारा अधिकृत गोवा में स्वामी जी किस किस जगह पर गए थे और क्या क्या देखा था ये ज्ञात नहीं है, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि देखने योग्य सब कुछ उन्होंने देखा था। मडगांव से हरिपद बाबू को लिखे गए एक पत्र में स्वामी जी ने कहा है,
2: अभी अभी तुम्हारा एक पत्र मिला, मैं यहाँ सकुशल पहुँच गया। मैं पंजिम तथा उसके आसपास के कुछ गांव एवं वहां के मंदिरों को देखने गया था, आज ही लौटा हूँ। गोकर्ण, महाबलेश्वर तथा अन्य स्थानों के दर्शन की इच्छा का मैंने परित्याग नहीं किया है। कल सुबह की गाड़ी से मैं धारवाड़ जा रहा हूं। यहां के अधिकतर ईसाई साक्षर हैं, अन्य लोग अधिकतर अशिक्षित हैं।
0: स्वामी जी गोवा में श्री सुब्राय नायक नामक एक व्यक्ति के नाम एक परिचय पत्र लेकर आए और उन्हीं के घर पर 3 दिन ठहरे। नायक संस्कृत के पंडित और आयुर्वेद शास्त्र के ज्ञाता थे। परिवार के गृह देवता श्री दामोदर जी के मंदिर से लगे एक कमरे में स्वामी जी वास करते थे। वो कमरा आज भी उसी तरह सुरक्षित है। एक दिन स्वामी जी के गायन के साथ तबला वादक खापूर जी पर्वतकर संगत कर रहे थे। तबला बजाने के साथ उनकी अंग भंगी देख कर स्वामी जी ने ऐसा करने से रोका। इस पर खापूर जी ने कहा, ये असंभव है। तब स्वामी जी ने स्वयं तबला बजाकर दिखा दिया कि वो सर्वथा संभव है। एक गायक को भी उन्होंने इस तरह की भंगिमा का परित्याग करने के लिए कहा था।
3: गोवा में रहते समय स्वामी जी रासेल जाकर कैथोलिक धर्म पुरोहितों का एक शिक्षा केंद्र देखा है। मडगांव से विदा लेते समय नायक जी ने स्वामी जी से उनका एक फोटो मांग लिया। ये फोटो बड़े आकार में इन दिनों दामोदर जी के मंदिर की बगल के कमरे में रखा हुआ है। नायक जी ने बाद में संन्यास ग्रहण किया और स्वामी जी सुब्रह्मानंद तीर्थ के नाम से ज्ञात हुए। उन्होंने उसी कमरे में देह त्याग किया।
0: इस कड़ी में हमने आपको स्वामी जी के जीवन की कई छोटी छोटी घटनाओं के बारे में बताया है। इन घटनाओं का शायद उनके संपूर्ण जीवन में ज्यादा महत्व नहीं है, पर इन प्रसंगों से उनके चरित्र के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डलता है। जैसे उनका फ्रांसीसी संगीत का ज्ञान, स्वदेश प्रेम, दरिद्र जनों के लिए चिंता, परिहास प्रियता एवं याददाश्त आदि सभी विषयों में उनकी रुचि थी तथा प्रकांड पांडित्य था। ऐसे सन्यासी को बारंबार नमन।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: मामला फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: युग प्रवर्तक, ये था हमारा स्वामी विवेकानंद के जीवन मूल्यों और आदर्शों पर आधारित कार्यक्रम। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है और अब जानकारी हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हमारी सांध्यकालीन सेवा आरंभ होगी शाम 5 बजे कार्यक्रम अक्षय निधि के साथ। शाम 5:05 पर सुने भक्ति संगीत। शाम 6 बजे महापुरुषों के जीवन पर केंद्रित वतन का राग कार्यक्रम आज क्रांतिकारी राजगुरु के जीवन पर केंद्रित होगा। शाम 6:30 पर कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। इस कार्यक्रम में आज का विषय है भूमि मिट्टी और प्रकृति। शाम 7 बजे योग संवाद कार्यक्रम में आज का विषय होगा पौरुष की प्रधानता और प्रारब्धवाद का खंडन। इस विषय पर जीवन कला विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी से बातचीत करेंगी सुनीता सिंह। शाम 7:30 पर सुने हमारा विशेष सांकेतिक कार्यक्रम जिसके अंतर्गत आज आप गिटार वादन और शास्त्रीय गायन का आनंद ले सकेंगे। रात्रि के 8 बजे भोपाल में आयोजित जननायक कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट का प्रसारण होगा। रात्रि के 8:30 पर आजाद हिंद कार्यक्रम में आज हम कवयित्री महादेवी वर्मा के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुनेंगे। रात्रि के 9 बजे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम का विषय होगा नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी। इस विषय पर विषय विशेषज्ञ निहारिका पंसोरिया से रत्नेश सोनी की बातचीत आप सुन सकते हैं। रात्रि के 9:30 पर कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो ये थी जानकारी हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। दोपहर के 12 बज रहे हैं, अब हमारी प्रातःकालीन सभा संपन्न होती है। हमारी सांध्यकालीन सभा शाम 5 बजे आरंभ होगी। तब तक आप हमारे केंद्र से देशभक्ति गीत एवं अन्य सांकेतिक प्रस्तुतियों का आनंद लेते रहें।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं गायन गौरव अभ्यंकर का, और इसके बाद प्रस्तुति होगी रघुनंदन पंचीकर के गायन की। तो सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं गौरव अभ्यंकर का गायन।
1: गायन का प्रारंभ एक स्वरचित शिव वंदना से करूंगा, जो कि याग रमन राग यमन में एक ताल में निबद्ध है, मध्य लय की रचना है।

तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं कार्यक्रम भारत भारती।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती। भारत भारती, भारत भारती।

भारत भारती के सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आप सभी का। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद अमान का शास्त्रीय गायन।

0: भारत भारती कार्यक्रम में आप सुन रहे थे मोहम्मद अमान का शास्त्रीय गायन। इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। इजाजत दें अपनी रेडियो सखी सुनीता सिंह को। नमस्कार, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती। भारत भारती।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम

0: हाँ, घूमना किसे पसंद नहीं। नई नई जगहें देखना, नए नए लोगों से मिलना, एक अलग तरह की संस्कृति और एक अलग तरह का नजारा।
1: हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने भाई, मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ घूमने फिरने के लिए।
0: और इन सब का अपना एक अलग ही आनंद होता है।
1: हो भी क्यों ना,
0: एक अलग ही रोमांच है। इस रोमांच की तमन्ना हमें मजबूर करती है कि हम अपने खोल से बाहर निकले और देखें कि दुनिया कितनी बड़ी और कितनी विविध है।
1: बिल्कुल ठीक कहा कंचन तुमने, वरना हमारी जिंदगी तो ऐसी हो जाएगी जैसे कुएं के अंदर एक मेंढक अगर हम घूमने नहीं निकले। एक बात बताऊं तुम्हें?
0: हाँ?
1: प्रसंगवश हमें 14वीं सदी के एक यात्री इब्न बतूता की याद आती है। मोरक्को के टेंजियर शहर का वो रहने वाला था।
0: हाँ?
1: और पैदाइशी तौर पर उसे घूमने का जबरदस्त जज्बा था। वह कहता था कि मुझे वो ज्ञान बिल्कुल नहीं चाहिए जो किताबों में लिखा है, भाई मैं तो चीजों को अपनी आंखों से देखना, उन्हें महसूस करने में ज्यादा विश्वास रखता हूँ।
0: हाँ, मैंने भी सुना है उनके बारे में।
1: अच्छा?
0: वो कहते थे कि मैं दुनिया देखने के लिए उतावला हो रहा हूँ, और घुमक्कड़पन के इसी उन्माद में 22 साल का ये युवक अकेले ही अपने घर से निकल पड़ा, ऐसे जैसे चिड़िया का बच्चा अपना घोंसला छोड़कर निकल पड़ता है।
1: बिल्कुल ठीक।
0: 14वीं सदी का माहौल आज जैसा तो नहीं होगा तब। उस जमाने में अकेले तो क्या, कारवा के साथ चलने पर भी जान की कोई गारंटी नहीं होती थी।
1: हाँ, आपको घर बैठे घुमाने का रोमांच अनुभव कराने के लिए चलो आज हम आपको सैर पर ले चलते हैं, एक रेडियो यात्रा पर। इस कड़ी में सबसे पहले हम चलते हैं बाबा भोलेनाथ की नगरी वाराणसी में।
0: वाह, वाराणसी से मुझे कहावत याद आ गई।
1: कौन सी?
0: शाम अवध सुबह काशी, यानी अवध की शाम और काशी की सुबह बड़ी ही सुहानी होती है।
1: ये तो ठीक है।
0: सच बात है, काशी यानी कि वाराणसी में सुबह मुंह अंधेरे ही हर हर गंगे हर हर महादेव करती टोलियां जब गंगा तट की तरफ बढ़ती हैं, तो मन एक बार की भक्तिमय हो उठता है। सूरज के जगने से पहले ही ये शहर जग पड़ता है, मंदिरों की घंटियां बजने लगती हैं और गंगा का घाट चहल पहल से भर जाता है।
1: काशी नगरी पूरी दुनिया में सबसे निराली है। भगवान शिव ने इसे अपने त्रिशूल पर धारण किया हुआ है, और मानता तो यह भी है कि यह शहर दुनिया में होकर भी मानो दुनिया में नहीं है, और इसलिए जब पूरा विश्व प्रलय में डूब जाएगा तो कहते हैं तब काशी ही अपनी जगह पर कायम रहेगी, ऐसी मान्यता लोगों में आदि काल से चली आ रही।
0: और काशी को वाराणसी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वरुणा और असी नदियों के बीच बसा हुआ है। श्रोताओं, यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये दोनों ही नदियाँ गंगा की सहायक नदियाँ हैं। इन नदियों ने अपने प्यार भरे आलिंगन में इस शहर को ऐसे पाला है जैसे दो माताएं किसी बच्चे को पालती हैं।
1: वाह वाह, क्या कल्पना करी है तुमने। दुनिया के इतिहास में अनेक नगरों का उत्थान और पतन होता रहा है। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो व हड़प्पा को ही ले लो। आज से 5000 साल पहले बसे इन शहरों में अब केवल मलबे ही मलबे बचे हैं, लेकिन वाराणसी शायद पूरी दुनिया का ऐसा सबसे पुराना शहर है जो लगातार जिंदा है, अनवरत धड़क रहा है। और हो भी क्यों ना, शिव जी की खास पसंद जो है ये काशी।
0: हाँ, और इसके बारे में मार्क ट्वेन ने तो ये भी कहा था कि ये शहर ओल्डर देन हिस्ट्री है। वे लिखते हैं कि ये शहर इतिहास से भी पुराना है, परंपरा से भी पुराना है, पुराणों से भी पुराना है, और इन सब की आयु को अगर एक साथ जोड़ लिया जाए तो ये शहर इससे भी दुगना पुराना है।
1: वाराणसी शहर इतना पुराना है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि विश्व के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख है। इस ग्रंथ में इसे काशी कहकर के पुकारा गया है। काशी शब्द का अर्थ होता है सिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का शहर या ज्योति का शहर।
0: और प्रकाश ज्ञान का भी प्रतीक होता है, धर्म का भी और जागरण का भी।
1: बिल्कुल,
0: ये हम नहीं कहते, हमारे पुराने श्लोक कहते हैं।
1: कौन से श्लोक?
0: अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यानी हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर, और अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। आपको बता दें कि ये पंक्तियां वृदारण्यक उपनिषद के नवरस मंत्र से ली गई हैं।
1: बिल्कुल, लेकिन वाराणसी के संदर्भ में प्रकाश का अर्थ ज्ञान नहीं, जागरण नहीं, बल्कि कुछ और ही है, और वो क्या है ये हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। अभी आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़। आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: ऋग्वेद के बाद अगला महत्वपूर्ण ग्रंथ स्कंद पुराण है, जिसमें पूरा का पूरा एक काशी खंड ही है।
1: अच्छा।
0: और इस खंड में 15,000 श्लोक हैं। इनमें से एक श्लोक में भगवान शंकर कहते हैं,
1: क्या
0: अखिल विश्व के तीनों लोकों में केवल एक ही शहर मेरा है और वो है काशी।
1: भाई वाह, क्या बात है।
0: और इसी शहर में मेरा शाही महल भी है।
1: श्रोता, अगर आप भूल रहे हो तो हम आपको याद दिला दें कि गंगा भी शिव की जटा से ही निकली है, यानी हर तरह से वाराणसी शिव में है। तभी तो हर हर गंगे यहाँ का सबसे बड़ा मंत्र है।
0: और रामायण व महाभारत ग्रंथों में भी वाराणसी की चर्चा बारंबार मिलती है। गौतम बुद्ध की बात करें तो उनका समय भी आज से लगभग 2,500 साल पहले का है।
1: बिल्कुल।
0: ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना पहला उपनिषद ऋषिपत्तन में दिया था। ये ऋषिपत्तन ही आज सारनाथ है, जो वाराणसी से ही लगा हुआ है, जैसे कि भोपाल और बैरागढ़।
1: हाँ, गौतम बुद्ध बोध गया से ज्ञान प्राप्ति के बाद जब यहाँ आए, तब यहाँ पर एक बगीचा हुआ करता था जिसे मृगार्दव कहा जाता था। इस शब्द का मतलब होता है कि ऐसा बगीचा जिसमें हिरण रहते हों। आज भी यह बगीचा है जिसे डेयर पार्क कहा जाता है, और आज भी यहाँ पे हिरण रहते हैं।
0: और इस बगीचे में ही गौतम बुद्ध जी ने 5 ब्राह्मणों को अपना पहला धर्म उपदेश दिया था। बौद्ध परंपरा में ये घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है, जिसका मतलब होता है धर्म के पहिए का गतिशील होना।
1: हाँ, बुद्ध के निर्वाण के बाद सारनाथ में धमेक स्तूप बनाया गया, जिसके आज केवल अवशेष ही मिलते हैं। यहाँ मुलागन गुटी नाम का एक विहार भी हुआ करता था। कहा जाता है कि बुद्ध ने अपना पहला वर्षाकाल यहीं व्यतीत किया था, और अब इस विहार को श्रीलंका की महाबोधि सोसाइटी द्वारा पुनर्निर्मित किया गया है।
0: इस तरह बुद्ध से संबंधित होने के कारण सारनाथ आज दुनिया भर के बौद्ध लोगों के लिए एक पवित्र स्थान है। और यहाँ हर समय पर जापान, थाईलैंड, तिब्बत, श्रीलंका और म्यांमार देशों के तीर्थयात्रियों का मेला लगा रहता है।
1: बिल्कुल ठीक कहा तुमने। सारनाथ का एक और महत्व है, और वह यह है कि यहाँ से प्राप्त अशोक की लाट से भारत सरकार का राज्य चिन्ह लिया गया है, जिसमें 4 सिंह एक दूसरे की ओर पीठ करके बैठे हुए हैं।
0: बौद्ध धर्म के समान ही जैन धर्म से भी वाराणसी का गहरा रिश्ता रहा है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म भी यहीं हुआ था। उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे।
1: वाराणसी अपने खूबसूरत घाटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यूं तो गंगा हर जगह मनोहारी है, पर काशी में तो इसकी छटा निराली है। मॉडर्न एज के जाने माने पेंटर मकबूल फिदा हुसैन को तो बनारस व यहाँ का गंगा तट इतना भाया कि उनकी पेंटिंग में अनेकों रंग इसमें बिखरे हुए हैं।
0: यहाँ इसके किनारों पर कुल 80 घाट बने हुए हैं, जो राजघाट से शुरू होकर 80 घाट तक फैले हैं। इन्हीं में से एक घाट का नाम मणिकर्णिका घाट है। राम जी के पूर्वज राजा हरिश्चंद्र ने जब अपने सपने में अपना राज्य दान दे दिया था, तब वे यहीं आकर एक डोम के दास बने थे।
1: लाइफ का कंट्रास्ट अगर देखना हो तो मणिकर्णिका घाट और दशाश्वमेध घाट देखें। एक मृत्यु का प्रतीक है तो दूसरा जीवन का। एक पर दाह संस्कार के लिए शवों की लाइन लगी रहती है तो दूसरी तरफ शादी विवाह की मन्नतें पूरी करने वालों से अटा पड़ा रहता है। पूरा का पूरा वातावरण जीवन की किलकारियों से भरा रहता है।
0: उस क्षेत्र के वरवधु शादी के बाद दशाश्वमेघ अवश्य आते हैं। गंगा माँ को चुनर चढ़ाई जाती है। दीपदान चलता रहता है। मंदिरों के घंटे जीवन का उद्घोष करते रहते हैं। घाट क्या है? पूरा एक शहर है। विदेशी यात्रियों का सबसे ज्यादा जमावड़ा भी यहीं दिखाई देता है। घाट की सीढ़ियों पर वे ऐसे शांति से बैठे रहते हैं जैसे यहाँ विद्यमान आध्यात्मिक ऊर्जा को चुपचाप आत्मसात कर रहे हो।
1: हाँ, और दूसरी ओर मणिकर्णिका कुछ और नहीं, बस मौत का सन्नाटा है यहाँ। यहाँ आकर के कबीर का दोहा याद आता है।
0: कौन सा?
1: पानी केरा बुलबुला असमानस की जात, देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात।
0: यानी मनुष्य का शरीर और क्या है, बस पानी का एक बुलबुला ही तो है। यहाँ से लौटने के बाद हफ्तों तक जीवन की निसारता पीछा करती रहती है। वैराग्य अनुराग पर चोट करता रहता है, पर अंत में जीत अनुराग की ही होती है। ऐसा ना हो तो सब सन्यासी ही हो जाए।
1: बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जब काशी की बात चले तो काशी विश्वनाथ मंदिर की चर्चा भला कैसे ना हो। यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आपको बता दे कि इनमें से 2 ज्योतिर्लिंग हमारे मध्य प्रदेश में भी है, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि वाराणसी को सिटी ऑफ लाइट्स भी कहते हैं, और यह लाइट कुछ और नहीं ज्योतिर्लिंग ही है।
0: दरअसल ज्योतिर्लिंग उस देव स्थान को कहते हैं जहां शिव मूर्ति की नहीं बल्कि शिवलिंग की उपासना होती है।
1: श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि शिव सनातन है, निराकार है। सबसे पहले उन्होंने स्वयं को अरिद्र नक्षत्र की एक रात्रि में एक अग्नि शिखा के रूप में प्रकट किया जो धरती को फाड़ करके बाहर निकल रही थी। इस अग्नि शिखा को ही प्रतीकात्मक रूप से शिवलिंग के रूप में प्रकट किया जाता है।
0: श्रोताओं, 3 ज्योतिर्लिंग के नाम तो आपने सुन ही लिए, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर और काशी विश्वनाथ। चलिए अब आपको शेष 9 नाम भी बताए देते हैं। केदारनाथ, वैद्यनाथ, सोमनाथ, नागेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, घुश्मेश्वर, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग।
1: श्रोताओं, काशी के विश्वनाथ मंदिर को कभी कभी गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता था। वजह यह थी कि इस मंदिर के शिखर पर 50 फीट ऊंचा सोने का पत्थर चढ़ा हुआ था। क्या आप जानते हैं कि यह पत्थर किसने चढ़ाया था? पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने।
0: इस मंदिर का कुछ रिश्ता हमारे मध्य प्रदेश से भी है।
1: हाँ।
0: राजमाता अहिल्याबाई होलकर कितनी शिव भक्त थी ये तो सभी जानते हैं।
1: बिल्कुल।
0: उन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और गंगा के कुछ घाटों को भी पक्का करवाया था। कहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि गंगा में डुबकी लगाकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर ले तो मोक्ष का द्वार उसके लिए स्वयमेव खुल जाता है।
1: और शायद यही वजह है कि आदि शंकराचार्य से लेकर के गुरु नानक, तुलसीदास, स्वामी विवेकानंद आदि कितने ही महापुरुषों ने इस मंदिर के दर्शन किए, स्वयं को धन्य किया। इतिहास के लंबे दौर में अनेक बार इस मंदिर को हमलों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार दुगनी शान शौकत के साथ इसका पुनर्निर्माण किया गया।
0: श्रोताओं, वाराणसी शहर धर्म और आध्यात्म की एक गंगा है। तभी तो यहाँ एक से बढ़कर एक पवित्र स्थल है। अब संकट मोचन को ही ले लीजिए। उल्लेख मिलता है कि वाराणसी में असी नदी के पास एक जगह पर हनुमान जी ने गोस्वामी तुलसीदास को साक्षात दर्शन दिए थे। सो उन्होंने उस जगह पर संकट मोचन हनुमान मंदिर की स्थापना की।
1: लेकिन आज जो मंदिर का ढांचा है उसका निर्माण पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर में बंदरों के झुंड मिलते हैं, इतने कि आप हैरान हो जाएं। ऐसा लगता है कि हम वानर लोक में आ गए हैं। पता नहीं जाने कैसे मालूम पड़ जाता है कि ये उनके राजा का मंदिर है।
0: जरा याद करें यहाँ पर हनुमान चालीसा की पंक्तियाँ।
1: कौन सी?
0: जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। यानी यहाँ हनुमान जी को कपिश कहा गया है।
1: बिल्कुल।
0: इसका अर्थ है कपि, यानी बंदरों के ईश और लौकिक अर्थ में राजा। प्रसंगवश आपको बता दें कि हनुमान चालीसा की रचना भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही की है और उसकी भाषा भी अवधी है।
1: हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि संकट मोचन मंदिर के बंदर भी बड़े नटखट और शरारती होते हैं। हो सकता है कि ये आपकी कोई कीमती चीज उठा ले जाएं, लेकिन केवल बार्गेनिंग के लिए नहीं, आप उनसे अपनी चीज को वापस लेना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ चीज उनको देनी पड़ेगी अदला बदली के लिए। बंदरों को आप कुछ खाने पीने की चीज दे दीजिए, वापस बदले में वो आपकी चीज आपको वापस लौटा देंगे।
0: संकट मोचन का रुतबा अगर आपको देखना हो तो जरा कभी मंगलवार या शनिवार को पधार कर देखिए। घंटों के पहले अगर दर्शन करने की आपकी बारी आ जाए तो कहिएगा। कहते हैं अगर किसी की कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी ना हो तो उसका सबसे प्रभावशाली उपाय है संकट मोचन के दर्शन करना।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद। कार्यक्रम है अतुल्य भारत। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़। आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, हम वाराणसी की बात करें और वाराणसी के शिल्प की बात ना करें ये तो हो ही नहीं सकता। वाराणसी का शिल्प बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में, खासकर यहाँ की बनी हुई बनारसी साड़ियाँ। इन साड़ियों का भारतीय लोगों के लिए क्या दर्जा है, इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हर दुल्हन की यह अभिलाषा होती है कि वह अपने विवाह के अवसर पर बनारसी साड़ी जरूर पहने।
0: ये साड़ियाँ होती तो सिल्क की हैं, पर इन पर सोने और चांदी की जरी की जाती है। एम्ब्रॉयडरी इतनी जबरदस्त होती है कि साड़ियाँ भारी भरकम हो जाती हैं। इसलिए ये केवल खास अवसरों पर ही पहनी जाती हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें पहनना संभव ही नहीं।
1: भारत की बात छोड़ दें तो विदेशों में भी इन साड़ियों के प्रति भारी दीवानगी देखने को मिलती है। अगर आपने अपने किसी एनआरआई दोस्त की पत्नी को बनारसी साड़ी भेंट कर दी तो समझ लीजिए कि जिंदगी भर के लिए वह आपका हो गया। वास्तव में शादी विवाह के मौके पर इस साड़ी का तोहफा देना एक बड़ी ही महानता मानी जाती है।
0: यहाँ आपको बता दें कि सिल्क की बनी बनारसी साड़ियाँ बनारस की प्राचीन संस्कृति का अंग नहीं रही हैं। लंदन का एक व्यापारी रॉल्फ फिच 16वीं शताब्दी में भारत आया। उस समय भारत पर सम्राट अकबर की हुकूमत थी। फिच ने भारत के अनेक शहर घूमे जिनमें वाराणसी भी था। उसने लिखा है कि वाराणसी सूती कपड़ों का एक प्रमुख केंद्र था।
1: श्रोताओं, एक बात हम आपको बता दें, सम्राट अकबर के काल तक वाराणसी सिल्क टेक्सटाइल के लिए नहीं जाना जाता था। वास्तव में बनारस की साड़ियां तो गुजरात के बुनकरों की देन है। 17वीं शताब्दी के बाद गुजरात में भयानक अकाल पड़ा और वहां से बहुत सारे बुनकर पलायन करके बनारस में आ गए और इन्हीं लोगों ने बनारसी साड़ियों की नींव डाली।
0: बनारस की बात चले तो यहाँ की गलियाँ कैसे छूट सकती हैं? पूरी दुनिया में मशहूर हैं यहाँ की गलियाँ।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं तो कई बार भटक चुका हूँ इन गलियों में।
0: बाहर वालों के लिए तो भूल भुलैया ही है, तो यहाँ वालों के लिए तोहफा। सड़क पर जाम लगा है, कोई बात नहीं, भीतर ही भीतर गलियों से निकल जाइए।
1: आप पूरा का पूरा शहर इन गलियों के सहारे नाप सकते हैं। करोड़ों का व्यापार इन गलियों में होता है। बनारसी साड़ियों की अच्छी से अच्छी दुकानें इन्हीं गलियों में हैं। बनारस के नायाब हैंडीक्राफ्ट आइटम्स भी इन्हीं गलियों में मिलते हैं।
0: श्रोताओं, विश्वनाथ मंदिर की चर्चा तो हो ही चुकी है। दशाश्वमेध घाट की सड़क से इस मंदिर को जोड़ने का काम भी एक गली ही करती है।
1: बिल्कुल।
0: जिसे विश्वनाथ गली कहा जाता है। गली क्या है, पूरा एक शहर है, मिनी वाराणसी आप देख सकते हैं यहाँ पर।
1: हाँ, एक से बढ़कर एक हैंडीक्राफ्ट के सामान, भगवान की अद्भुत मूर्तियाँ, राजा और सिपाही, पर्स, साड़ियाँ, गहने, ऐसा लगता है कि सपनों की गलियों में तैर रहे हैं आप। विदेशी पर्यटकों की तो भरमार रहती है इस गली में, लेकिन बार्गेनिंग बड़ी जबरदस्त होती है। कुछ खरीदना हो तो होशियार रहिएगा आप।
0: अरे हाँ, बनारस जाइएगा तो बनारसी लस्सी पीना मत भूलिएगा।
1: अच्छा,
0: वो स्वाद, वो सुगंध, आहा, वो स्टाइल आप कहीं और पा ही नहीं सकते। ताजी मलाईदार दही आपके सामने ही फेंटी जाएगी और बर्फ का चूरा मिलाया जाएगा, शक्कर मिलाई जाएगी और ऊपर से गुलाब जल डालकर आपको सर्व की जाएगी मलाई की परत के साथ
1: जी।
0: मिट्टी के ये बड़े बड़े कुल्हड़ में देखते ही बस मुंह में पानी आ जाएगा।
1: अरे मुझे तो सोच कर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। लस्सी बनाने की परंपरागत कला और पूरी तरह से हैंडमेड काम, ना मिक्सी ना फ्रिज और लस्सी की लस्सी।
0: लस्सी के अलावा एक और भी चीज मशहूर है बनारस की।
1: मुझे पता है आपका इशारा क्या है, बनारसी पान की तरफ ना।
0: हाँ बनारसी पान भी बनारस की एक पहचान है। यूं तो कलकतिया पान भी मशहूर है।
1: हाँ।
0: पर बनारसी पान की बात ही कुछ और है। क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में बेसिकली क्या अंतर है?
1: भाई कलकतिया पान बिल्कुल पक्का हरा होता है और बनारसी पान हल्का सा पीलापन लिए हुए होता है, मुझे तो इतना ही पता है। और इसीलिए इस कलकतिया पान की तुलना में इनमें कड़वापन कम होता है। बनारस के लोगों की कमजोरी है यह पान और शायद बनारस के बाहर के लोगों की भी। तभी तो डॉन फिल्म का यह गाना कि खाए के पान बनारस वाला, आज भी जब बजता है ना तो लोग झूम उठते हैं। श्रोता, बनारसी पान के बाद आपको याद दिला दे कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का बनारसी घराना बड़ा प्रसिद्ध है और यह घराना तबला वादन में महारत रखता है।
0: धर्म प्राण वाराणसी को भारत के 7 मोक्षदायी स्थलों में एक माना जाता है।
1: बिल्कुल।
0: गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका व द्वारवती स्थल मोक्षदायक हैं।
1: भारतीय उपमहाद्वीपों के शक्तिपीठों के बारे में आपने तो सुना ही होगा। ये वे स्थल है जहाँ पर दक्ष की पुत्री तथा भगवान शिव की पत्नी के विभिन्न अंग कट करके गिरे थे। इन सभी स्थलों पर आज शक्तिपीठों की स्थापना की गई है और ये पीठ अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। और वाराणसी में सती के कान की बाली गिरी थी, इस स्थान पर ही आज विशालाक्षी मंदिर बना हुआ है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद। कार्यक्रम है अतुल्य भारत। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़। देश का चैनल देश के लिए।
0: चलिए श्रोताओं, अब हम बात करते हैं वाराणसी से संबंधित कुछ महापुरुषों की।
1: बिल्कुल।
0: वाराणसी असाधारण नगर है। यहाँ के वातावरण में चैतन्य लहरियां बहुत होती हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ आने वाले व्यक्ति को एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है।
1: हाँ।
0: ऐसे लोगों का नाम गिनाने बैठे जो वाराणसी के दीवाने रहे हैं तो एक पूरा ही एपिसोड नाकाफी रहेगा, लेकिन हम कुछ चुनिंदा लोगों की बात करते हैं।
1: चलो शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं महाकवि तुलसीदास से। इन्होंने अपना अंतिम जीवन वाराणसी के एक गंगा घाट पर व्यतीत किया और अंत में देह त्याग भी यहीं किया। इस घाट का नाम तुलसी घाट कहलाता है।
0: गोस्वामी तुलसीदास जी की ही तरह कबीरदास जी का भी वाराणसी से गहरा संबंध है। उनका पालन पोषण यहाँ के एक जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने किया था। जिस जगह पर कबीर रहे और पले वो आज कबीर चौरा कहलाता है।
1: अब हम बात करते हैं महामना मदन मोहन मालवीय की। इनका जन्म तो इलाहाबाद में ही हुआ था, पर इनकी असली कर्मभूमि रही वाराणसी, जहां बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी के BHU की स्थापना करके वे अमर हो गए।
0: श्रोताओं, आपको ये बता दें कि ये यूनिवर्सिटी न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। इसका केवल मुख्य कैंपस ही 1300 एकड़ में फैला हुआ है।
1: हाँ, तो मदन मोहन मालवीय जो पेशे से वकील थे, भारत की गरीबी का सबसे प्रमुख कारण अशिक्षा मानते थे। सो उन्होंने वाराणसी में एक रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने की ठान ली। और उस समय भारत में जो यूनिवर्सिटीज थीं, वे केवल एफिलेटेड थी।
0: मदन मोहन जी के सामने रास्ता बहुत ही कठिन था। सरकार को राजी करना था, जमीन का इंतजाम करना था और ढेर सारा पैसा चाहिए था। लेकिन जब चाह होती है तो राह निकल ही आती है। राजा बनारस ने जमीन दे दी, भारत के धनपतियों ने अपनी तिजोरियां खोल दी और कांग्रेस के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने कानून भी पास कर दिया।
1: सबसे बड़ा सहयोग तो एनी बेसेंट का मिला, जो पहले ही बनारस हिंदू स्कूल स्थापना कर चुकी थी। यह स्कूल ही BHU के लिए आधारशिला बन गया और इस तरह जनता के पैसे से जनता की ताकत पर सन 1916 में भारत का पहला रेसिडेंशियल विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ गया।
0: जो रोल डॉक्टर हरि सिंह गौर का सागर विश्वविद्यालय की स्थापना में था, उससे भी बढ़कर मदन मोहन मालवीय जी का BHU की स्थापना में रहा, क्योंकि मदन मोहन मालवीय जी के सामने पैसे की जबरदस्त तंगी थी।
1: मदन मोहन केवल एक शिक्षा शास्त्री ही नहीं थे, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी महान सेनानी थे। कांग्रेस में उनका क्या स्थान था, यह इस बात से ही प्रमाणित होता है कि एक दो नहीं बल्कि कुल 4 बार वे इस संस्था के प्रेसिडेंट चुने गए। इसी संस्था के मंच पर सबसे पहले 1905 में बनारस अधिवेशन के दौरान ही उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि वे इस शहर में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करना चाहते हैं।
0: भारत के सबसे सरल, नेक और ईमानदार प्रधानमंत्रियों में जिनका नाम सबसे पहले जुमा पर आता है, वे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी भी बनारस के ही लाल थे, जो गंगा उस पार के गांव में रहते थे।
1: गरीबी बेइंतहा थी, पढ़ने के लिए गंगा पार करके शहर आना पड़ता था, पर नाव का किराया देने के लिए पैसा नहीं होता था, तो वे तैर करके गंगा पार करते थे। बनारस की गंगा कोई मामूली गंगा नहीं है, इसे पार करना एक जीवट का काम है, और जिसे लाल बहादुर शास्त्री ने किया, दुबले पतले कमजोर से इंसान ने।
0: लेकिन पढ़ाई का जज्बा भुजाओं में बल बनकर नदी पार कराता रहता। शायद ये गंगा जल के स्पर्श का ही प्रभाव रहा होगा कि उनकी रग रग में ईमानदारी और सच्चाई भर गई। कहते हैं कि प्रधानमंत्री होने के बावजूद जब उनका देहांत हुआ तो वे अपने पीछे संपत्ति नहीं बल्कि कर्ज छोड़ गए थे।
1: हाँ, मुझे याद है, वाराणसी शहर बड़ी शिद्दत से अपने इस लाल को याद करता है। यहाँ के हवाई अड्डे का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट।

0: इस कार्यक्रम का आलेख तैयार किया था श्रीमती पूनम जायसवाल ने और प्रस्तुत किया था प्रमोद शर्मा और
1: कंचन राजानी ने।
0: सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना।
3: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
4: मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज ससुराल गेंदा फूल और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो मित्र प्रमिला, लेकर आई हूँ आज का भारत भारती कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कंवर ग्रेवाल का सूफी गायन।

यार दी खातर नचना पैंदा जचना पैंदा जचना पैंदा नी खसमा खातर जचना पैंदा जचना पैंदा जचना पैंदा खसमा खातर जचना पैंदा नी।

आज दे समागम जिन्हें भी कदम चल के आए हो, खास तौर पर मेरिया बहुत सत्कारयोग साड़िया मावां ये साड़िया भैणा और बहुत सत्कारयोग साढ़े बुजुर्ग साहबान मेरे हाण दे सारे वीर दोस्त भरा मित्रे और छोटे छोटे बच्चे जिन्हें भी कदम चल के आए हो, आप सबनों इस मेले दियाँ इस लोक मेले दियाँ बहुत बहुत मुबारक। तुहाडा आना कदम कदम साढ़े सिर मत्थे बहुत बहुत आदर और सत्कार तुहाडा सारयां दा। और खास तौर पर जो सानू मिलाउण दे विच जरिया बनिया संस्कृति विभाग उन्हां दा खास तौर पर धन्यवाद करांगे, थैंक यू वेरी मच। आ जाओ बाबे एक एक करके कलामां दी लड़ी छेड़दे आ, कलाम पेश कर लगे हैं। ना जाई मस्तां दे वेड़े मस्त बना देणगे बीबा, मुड़ना लथने हो ऐसे रंग चढ़ा देणगे बीबा। खुल के बात करदे आ उन्हां मस्त फकीर बाबे लोगों की, उन्हां माइयां की जिन्हां ने दुनिया वाले पासे अपना घेरा सीमित करके बंदगी वाला दाज कत्या ते उहदा चरखा कत के उहदा दाज जोड़ के उहदे घर जाके उहदियां होके वस गईआं। ना जाई मस्तां दे वेड़े मस्त बना देणगे बीबा, पेश कर लगे जी। आवाज सजनों क्लीयर है तुहानू सारयां नू, मैनू एक ताड़ी मार के दस दो यार। ओके है, ओके है। मस्त बना देणगे बीबा, पेश कर लगे।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के तीसरे सूक्त से वाचन। ऋषि हैं गृत्समद, भार्गव शौनक, देवता हैं आप्री सूक्त, इद्म अथवा समिद्ध अग्नि, नराशंस, इड, बहिर, दिव्य द्वार, ऊषा सानाक्ता, दिव्य होतागण, प्रचेतस। देवियां हैं सरस्वती, इड़ा, भारती, त्वष्टा, वनस्पति, स्वाहाकृति, और छंद है जगती।
3: साध्वपांसी सनता न उक्षिते, उषा सानक्ता वैयेव रणविते, तंतुम ततम संवयन्ति समीची यज्ञस्य पेशः सुदुघे पयस्वती। यज्ञ के स्वरूप को सुंदरता प्रदान करने वाली उषा और नक्ता देवियां वरुणी के समान शब्दायमान हो, हमारे उत्तम कर्मों को प्रेरणा देती हुई पूजित होती हैं। ये देवियां फैले धागों को बुनती हुई उत्तम प्रकार से गति करने योग्य बनाकर सभी प्रकार की कामनाओं को पूरा करते हुए अन्न और दुग्धादि से पूर्ण बनाती हैं। दैव्या होतारा प्रथमा विदुष्टर ऋजु यक्षतः समृचा वपुष्टरा, देवान्यजन्ता वृतुथा समंजतो नाभा पृथिव्या अधि सानुषु त्रिषु। दोनों दिव्य होता अग्रणी विद्वान तथा रूपवान हैं। वे ऋचाओं के माध्यम से सरलता पूर्वक देव यज्ञ संपन्न करते हैं। पृथ्वी की नाभि में वे तीनों सवनों में भली प्रकार संयुक्त होते हैं। सरस्वती साधयंती धियम न इडा देवी भारती विश्वतूर्ति, तिस्रो देवी ही स्वधया बहिर रेदमिच्छिदम पांतु शरणम निषद्य। अनेक श्रेष्ठ गुणों से युक्त देवी इडा, देवी भारती तथा देवी सरस्वती, ये तीनों देवियां हमारे इस यज्ञ स्थल पर विद्यमान रहकर अपनी धारणा शक्ति के द्वारा हमारे इस यज्ञ का संरक्षण करें। पिशंग रूपः सुभरो वयोधाः सृष्टि वीरो जायते देवकामः, प्रजां त्वष्टा वीष्यतु नाभिमस्मे अथा देवानामप्येतु पाथः। अग्नि रूप त्वष्टा देव हमें श्रेष्ठ संतान प्रदान करें। वह पुत्र सुवर्ण जैसी कांति वाला, उत्तम हृष्ट पुष्ट, अन्न तथा पराक्रम को धारण करने वाला, दीर्घायु, वीर, श्रेष्ठ बुद्धिमान, उत्तम गुणों की कामना करने वाला तथा देवों द्वारा प्रदर्शित उत्तम मार्ग का अनुगामी हो। वनस्पति रव सृजन्मुप स्थागग्निर्हविहि सूदयाति प्रधीभिहि त्रिधा समक्तम नयतु प्रजानन्देवेभ्यो दैव्यः शमितोपहव्यम्। वनस्पतियों से अपना प्रकाश फैलाते हुए अग्निदेव हमारे समीप स्थित हों। ये अग्निदेव अपनी शक्ति से हविष्यान्न का परिपाक करते हैं। दिव्य गुण संपन्न शांत स्वभाव वाले ये अग्निदेव तीन प्रकार से तैयार हविष्यान्न को देवों के पास पहुंचाए। घृतम मिमिक्षे घृतमस्य योनिर्घृते श्रितो घृतमवस्य धाम अनुश्वधमा वह मादयस्व स्वाहाकृतम वृषभ वक्षी हव्यम्। इन अग्निदेव का मूल आश्रय स्थल घी है, अतः इन्हें घृत से सिंचित करते हैं। हे बलशाली अग्निदेव, स्नेह पूर्वक समर्पित की गई आहुतियों को सभी देवों तक पहुंचाकर उन्हें प्रसन्न करें।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के तीसरे सूक्त से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भक्ति संगीत।

मूर्खों का संग ना करना, विद्वानों का संग करना और पूजनीय पुरुषों का सत्कार करना उत्तम और शुभकारक कर्म है।

ईश्वर भक्ति के अनेक मार्ग बताए गए हैं, उनमें सबसे सरल मार्ग ईश्वर का नाम स्मरण करना है। नाम स्मरण करने का कोई नियम नहीं है। भक्त जहां भी हो, चाहे जिस हालत में हो, ईश्वर का नाम स्मरण कर सकता है।

हम ईश्वर की भक्ति ईश्वर को पाने के लिए करते हैं। भक्ति का वास्तविक अर्थ है ईश्वर से मिलने के लिए चलना, और यदि हम ईश्वर को पा लिए तो इसी को मोक्ष कहते हैं।

निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करना ही सच्ची भक्ति है और यही हमारा परम कर्तव्य है। प्रभु का सच्चा भक्त वही है जो भगवान से ही प्रेम करता है, सच्चे हृदय से उन्हें याद करता है, किंतु उनसे संसार की कोई वस्तु नहीं मांगता। वह प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, मुझे सिर्फ आपका प्रेम चाहिए।

इसी भक्ति रचना के साथ आज का कार्यक्रम शांति गीत पूरा होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वतन का राग कार्यक्रम में आज हम स्मरण कर रहे हैं सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी शिवराम हरि राजगुरु का।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जी। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जी। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जी।

उसे ये फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है, हमें ये शौक देखें सितम की इंतहा क्या है। जोश जुनून से लबरेज वो दीवाने थे आजादी के, जिनकी रगों में लहू नहीं ज्वालामुखी धधकता था। गुलामी के विरुद्ध उनकी जिद जब भी लिखती इनकलाब ही लिखती। ब्रिटिश सत्ता के बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए भगत सिंह के जरिए जिस क्रांतिकारी संगठन ने जोर का धमाका किया था, उसी संगठन से जुड़े थे सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी राजगुरु, जिन्होंने इस संगठन के साथ मात्र 4 साल का सक्रिय जीवन पाया, लेकिन यही 4 साल उन्हें अमर कर गए। शिवराम हरि राजगुरु का जन्म 24 अगस्त सन 1908 को पूना जिले के खेड़ा गांव में हुआ था। बचपन में ही उनके पिता श्री हरि नारायण का निधन हो गया और उनका पालन पोषण उनकी मां और भाई ने किया। राजगुरु को कसरत का बहुत शौक था। वे हिंदू धर्म ग्रंथों और वेदों के अध्ययन में भी विशेष रुचि रखते थे। वीर शिवाजी और बाल गंगाधर तिलक से वो अत्यंत प्रभावित थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने 11 साल के राजगुरु को हिला कर रख दिया था और भारत की गुलामी उन्हें बेचैन करने लगी थी। अंग्रेजी की शिक्षा उनके मन को नहीं भाती थी, सो पढ़ाई में मन नहीं रमता। इसीलिए भाई और भाभी का बहुत तिरस्कार सहना पड़ता था। अंततः तंग आकर उन्होंने घर छोड़ दिया और विद्या अध्ययन और संस्कृत सीखने के लिए वाराणसी आ गए। यही उनके क्रांतिकारी जीवन का प्रस्थान बिंदु था। यहां अनेक क्रांतिकारियों से उनका संपर्क हुआ। चंद्रशेखर आजाद से वो इतना अधिक प्रभावित हुए कि उनके संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से तुरंत जुड़ गए। दल की ओर से सबसे पहले शिव वर्मा के साथ मिलकर उन्हें दिल्ली के एक गद्दार साथी को मारने का दायित्व सौंपा गया। दोनों के पास मात्र एक ही रिवॉल्वर थी, इसलिए शिव वर्मा दूसरा रिवॉल्वर लेने लाहौर चले गए। लेकिन राजगुरु के जोश को इतना सब्र कहां था। एक शाम मौका पाते ही उन्होंने उस गद्दार को अकेले ही मार गिराया। गोली चलाने के कुछ ही देर बाद वहां पुलिस पहुंच गई। वो 2 बार फंसते फंसते बचे। उन्होंने शहर की तरफ न जाकर रेलवे लाइन के सहारे मथुरा की तरफ का रास्ता पकड़ लिया। वो रेलवे लाइन के किनारे किनारे चले जा रहे थे कि अचानक सर्च लाइट की तेज रोशनी उन पर पड़ी और उसके साथ ही कई तरफ से गोलियां चलने लगी। राजगुरु तुरंत पेट के बल लेट गए और रेंग कर एक नाली में छिप गए। फिर वहां से उसी तरह रेंगते हुए पास के खेतों में चले गए। खेत में पानी भरा हुआ था। कोई रास्ता न देखकर वो उसी पानी में लेट गए। ऊपर सर्च लाइट नाच रही थी और राजगुरु सांस रोके खेत में पड़े रहे। कभी कभी राइफल की गोली हवा को चीरती हुई इधर से उधर निकल जाती और फिर सन्नाटा छा जाता। थोड़ी देर बाद पुलिस के बूटों की आवाज और सिपाहियों की बातचीत उन्हें सुनाई देने लगी। वो लोग आसपास के सूखे खेतों में उनकी तलाश कर रहे थे। जाड़े की उस ठिठुरती रात में कोई पानी के अंदर भी लेट सकता है, इसका पुलिस को अनुमान नहीं था। काफी देर बाद चारों ओर सन्नाटा हो जाने पर राजगुरु बाहर निकले। कीचड़ और पानी से तर उनका शरीर एकदम सुन्न हो रहा था। उसी हालत में रेलवे लाइन के किनारे किनारे चलते हुए उन्होंने 2 स्टेशन पार किए, तब मथुरा की गाड़ी मिली। मथुरा पहुंचकर उन्होंने जमुना में कपड़े धोए, उन्हें रेत पर सुखाया और लंगोट बांधे धूप में बहुत देर तक पड़े रहे। इतनी कठिन परिस्थितियों को सहकर अपनी सूझबूझ से वो सही सलामत कानपुर पहुंचे। इस घटना के बाद उनकी योग्यता, निष्ठा, साहस और दृढ़ संकल्प के प्रति दल आश्वस्त हो गया।

इस क्रांतिकारी दल से जुड़ने के बाद राजगुरु के जीवन को न केवल एक दिशा मिली, एक लक्ष्य मिला, बल्कि क्रांतिकारी साथियों के रूप में उन्हें जैसे

आजादी के लिए जागृत किया। लेकिन दिल्ली के गद्दार साथी को मारने की उस घटना में उनकी सूझबूझ और बहादुरी को देखते हुए उन्हें सैंडर्स हत्याकांड में शामिल कर लिया गया। 17 दिसंबर 1928 की तारीख तय हुई। लाहौर के पुलिस कार्यालय के बाहर क्रांतिकारी साथी जय गोपाल को तैनात कर दिया गया। वो अपनी बिगड़ी हुई साइकिल को सुधारने का अभिनय करने लगा। पुलिस कार्यालय के सामने वाली सड़क पर भगत सिंह और राजगुरु खड़े होकर पढ़ाई लिखाई की बातें करने लगे। पुलिस कार्यालय के सामने ही डीएवी कॉलेज था। उसके फाटक की ओट में चंद्रशेखर आजाद अपना माउजर पिस्तौल लिए भगत सिंह और राजगुरु की सुरक्षा में तैनात हो गए कि घटना के बाद अगर किसी ने भगत सिंह और राजगुरु का पीछा किया तो वो उसे मार गिराएंगे। शाम के 5 बज रहे थे। सैंडर्स बाहर निकला और अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर उसे स्टार्ट करने लगा। उसे ऐसा करता देख जयगोपाल ने अपनी साइकिल की ठुक ठुक बंद की और उठकर खड़ा हो गया। ये इशारा था भगत सिंह और राजगुरु के लिए। दोनों के हाथ अपनी जेबों में चले गए। भगत सिंह ने सोचा गोली खाली न जाए, इसलिए बेहतर होगा कि सैंडर्स को और पास आने दिया जाए। लेकिन राजगुरु को भला सब्र कहां था। उन्होंने तुरंत पिस्तौल निकाली और गोली दाग दी। उनका निशाना अचूक था। गोली सैंडर्स के माथे पर लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। अब भगत सिंह ने भी 4-6 गोलियां जड़ दी। गोलियों की आवाज सुनकर एक पुलिस इंस्पेक्टर फर्न बाहर दौड़ा। जब उसने भगत सिंह को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तब राजगुरु की पहलवानी काम आई। उन्होंने अपने दोनों हाथों में इंस्पेक्टर फर्न को ऊपर उठा लिया और पूरी ताकत के साथ जमीन पर पटक दिया। उसके बाद फर्न उठ नहीं सका। अब 3 सिपाही उनकी ओर दौड़े। आजाद ने कड़कती आवाज में गोली मार देने की चेतावनी दी। 2 सिपाही तो लौट गए, लेकिन हवलदार चानन सिंह आगे बढ़ने लगा। आजाद ने उसके पैरों पर गोली चलाई, लेकिन जब लंगड़ाता हुआ भी वो आगे बढ़ने लगा तब उसे चंद्रशेखर आजाद ने मार गिराया। लाहौर के चप्पे चप्पे में पुलिस छा गई, लेकिन इस नाकेबंदी के बीच भी जिस अनोखे ढंग से ये सभी क्रांतिकारी लाहौर से बाहर निकले, इतिहास का वो पन्ना भी बेहद रोचक है। भगत सिंह ने एक अंग्रेज अधिकारी का वेश बनाया और भगवती चरण वोहरा की पत्नी दुर्गा भाभी अपने 3 वर्षीय पुत्र के साथ भगत सिंह की पत्नी बनकर चल पड़ी। राजगुरु उनके नौकर बन गए और उधर चंद्रशेखर आजाद ने साधु का वेश बनाया और सभी लोग लाहौर से बाहर हो गए। इस घटना ने ब्रिटिश शासन को हिला कर रख दिया। भगत सिंह ने दल की ओर से चिट्ठी जारी करते हुए कहा, जेपी सैंडर्स मारा गया, लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया गया। आज संसार ने देख लिया कि हिंदुस्तान की जनता निष्प्राण नहीं हो गई है, उनका खून जम नहीं गया। वो अपने राष्ट्र के सम्मान के लिए प्राणों की बाजी लगा सकती है।

अपने क्रांतिकारी जीवन में राजगुरु अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी मानते थे भगत सिंह को। ये स्वाधीनता संग्राम में आगे बढ़कर मौत को गले लगाने की प्रतिस्पर्धा थी। यही कारण है कि दिल्ली असेंबली में बम फेंकने के बाद गिरफ्तारी देने के लिए भगत सिंह के साथ वो स्वयं जाने की जिद पर अड़ गए। आजाद ने उन्हें समझाया कि इसमें बयान देने का सवाल आएगा, तुम अंग्रेजी नहीं जानते हो, गिरफ्तारी के बाद तुम्हें भगत सिंह से अलग कर दिया जाएगा। उन हालात में अगर तुम बम फेंकने के राजनैतिक महत्व को एक अच्छे बयान द्वारा न समझा सके तो केस का सारा महत्व ही खत्म हो जाएगा। इस पर राजगुरु ने दलील दी कि आप भगत सिंह से कहकर मेरे लिए अंग्रेजी में एक बयान लिखवा दीजिए, मैं उसे कॉमा फुल स्टॉप के साथ कंठस्थ कर लूंगा, आप सुन लीजिएगा, अगर एक कॉमा की भी भूल हो जाए तो मुझे मत भेजिएगा। कैसी दीवानगी थी ये। पद, पैसा, प्रतिष्ठा के लिए होड़ तो आम बात है, लेकिन स्वातंत्र्य समर में मौत को गले लगाने की ये होड़ एक ईमानदार क्रांतिकारी के भीतर ही हो सकती थी। बहरहाल बात बनी नहीं और राजगुरु नाराज होकर पूना चले गए। असेंबली बम कांड में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच नागपुर में राजगुरु की मुलाकात केशव बलिराम हेडगेवार से हुई, जिनके साथ उन्होंने आगे की योजना बनाई, लेकिन इस योजना पर वो चल पाते उसके पहले ही 30 सितंबर सन 1929 को वो पूना में गिरफ्तार हो गए। जब भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंक कर अपनी गिरफ्तारी दी तो गिरफ्तार हुए सारे क्रांतिकारियों को मुकदमा चलाए जाने के लिए लाहौर में फिर इकट्ठा किया गया। इस प्रकार राजगुरु भगत सिंह से फिर जा मिले। वो इस बात से खुश थे कि शहादत के रास्ते पर अब वो भगत सिंह से पीछे नहीं रहेंगे। जेल में हुई भूख हड़ताल के दौरान जब डॉक्टर ने राजगुरु को दूध पिलाने के लिए गले में नली डाली तो राजगुरु ने लंबा संघर्ष किया और दूध पेट में न जाकर फेफड़ों में पहुंच गया, उन्हें निमोनिया हो गया। राजगुरु खुश थे कि वो भी यतीन्द्रनाथ दास की तरह अनशन में मृत्यु का वरण कर भगत सिंह से पहले शहीद हो जाएंगे। अनशन से घबराकर सरकार ने क्रांतिकारियों की मांगे मान ली, हड़ताल स्थगित करने का फैसला हुआ। भगत सिंह ने दूध का गिलास राजगुरु के होठों से लगाते हुए कहा, आगे भागना चाहते थे बच्चू? राजगुरु ने मजाक किया, मैं सोच रहा था पहले जाकर तेरे ठहरने के लिए वहां कोई कमरा बुक करा लूं। बगैर नौकर के अब तुमसे कोई सफर कहां हो सकेगा। सैंडर्स को मारने के बाद राजगुरु भगत सिंह के नौकर के रूप में जो लाहौर से बाहर निकले थे उनका इशारा उसी ओर था। राजगुरु के गाल पर एक हल्की सी चपत देते हुए भगत सिंह ने कहा, अच्छा दूध पियो, वादा करता हूं अब तुमसे सूटकेस कभी नहीं उठवाऊंगा। और दोनों हंस पड़े। हंसी मजाक, शरारत और गीत संगीत से जिंदगी बनाए रखने वाले व्यक्ति थे राजगुरु। लेकिन फांसी की सजा सुनाए जाने से कुछ सप्ताह पहले राजगुरु काफी गंभीर रहने लगे थे। सभी चिंतित हो गए। कुछ को लगा कि मौत को इतना निकट देखकर राजगुरु परेशान हो उठे हैं। एक दिन शाम के धुंधलके में बैरक के बरामदे में जंगलों के पास अकेले बैठे राजगुरु एकटक बाहर की तरफ देख रहे थे। तभी शिव वर्मा उनके पास आए और पूछा, क्या मौत से डर रहे हो या जो कुछ किया है उसका पश्चाताप है? राजगुरु पहले तो मुस्कुराए, फिर गंभीर होकर कहने लगे, कम से कम तुमसे ऐसे सवाल की आशा नहीं थी। मैं मौत से नहीं डरता, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम लोगों के बीच आने से पहले जीवन के 19 साल मैंने इसी दुनिया में गुजारे थे। मेरी जिंदगी का हर क्षण बोझ था। उस अपमानित जीवन में ये दुनिया मेरे लिए नरक से भी बदतर थी। फिर इन 3 सालों में ही कौन सा जादू हो गया कि यही दुनिया इतनी हसीन लगने लगी है। तुम लोगों का साथ छोड़कर जाने की सोचने पर दर्द होता है। इस प्यार के 2 क्षण और मिल जाएं, ये कौन नहीं चाहेगा। इस स्वाभाविक इच्छा को क्या मौत से डरना कहोगे? और फिर दोनों के बीच बहुत देर तक खामोशी बहती रही।
धीरे धीरे फैसले का दिन आ गया। 7 अक्टूबर सन 1930 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी गई। फांसी की कोठरी में राजगुरु का पुराना स्वभाव वापस आ चुका था। मस्ती, मजाक, छेड़खानी और गाने का सिलसिला फिर चल पड़ा। और जब अंतिम दिन 23 मार्च 1931 की शाम को राजगुरु की कोठरी खोली गई, तो बुलंद नारों के साथ उन्होंने दूसरे साथियों को सूचना दे दी कि अब चलने का समय आ गया है। ढलते सूरज की मध्यम रोशनी में राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव के साथ जैसे नई दुनिया बसाने के लिए स्वर्ग का द्वार खोलने निकल पड़े। भारत के ऐसे महान सपूत को हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 एफएम। कार्यक्रम है प्रकृति की पुकार। मैं हूँ धरा।
2: मैं हूँ बादल।

0: एक बीज था, गया बहुत ही गहराई में सोया। उसी बीज के अंतर में था नन्ना पौधा सोया। उस पौधे को मंद पवन ने आकर पास जगाया। नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया। सूरज बोला, प्यारे पौधे निंद्रा दूर भगाओ, अलसाई आंखें खोलो तुम, उठकर बाहर आओ। आंख खोलकर नन्हे पौधे ने ली जब अंगड़ाई, एक अनोखी नई शक्ति सी उसके तन में आई। नींद छोड़ आलस त्याग कर पौधा बाहर आया, बाहर का संसार बड़ा ही उसने अद्भुत पाया।
1: वाह वाह धरा वाह, कितनी सुंदर कविता है ये, हमने बचपन में शायद दूसरी या तीसरी कक्षा में पढ़ी थी।
0: हाँ हाँ बादल, बिल्कुल, लेकिन तब हमने इस कविता को सिर्फ पढ़ा था और रट लिया था, पर इसमें छिपी गूढ़ बातें अब समझ में आई हैं।
1: हाँ हाँ ये सही है कि प्रकृति से हमें वो सभी संसाधन मिलते हैं जो एक तरह से हमारी मदद करते हैं, ये हमें बढ़ने और विकसित करने में हमें सहयोग देते हैं।
0: यदि प्रकृति से बल्कि हमारी इस धरती से हमें वो सब मिलता है जो हमारे जीने के लिए आवश्यक है।
1: धरा, एक कहावत हम अक्सर कहते हैं, मिट्टी के मोल, लेकिन ये कहावत प्रकृति से मिले लाभ के लिए है, पर उस मिट्टी को चरितार्थ नहीं करती।
0: वो कैसे?
1: वो ऐसे कि अगर प्रकृति ने हमें भूमि आदि मिट्टी अगर नहीं दी होती तो हम अपना पेट कैसे भरते, और इस मिट्टी से उपजी हर फसल पृथ्वी के हर प्राणी के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी हमारे लिए।
0: पृथ्वी से अपनी फसल के लिए ऋग्वेद में कहा है, आपने भी जरूर पढ़ा होगा कि खेत में पैदा अनाज का क्रम से बंटवारा किया जाना चाहिए।
1: अगर बुरा ना मानो तो एक बात बताऊं?
0: हाँ हाँ जरूर, इसमें बुरा मानने की क्या बात है।
1: देखो, पहला हक जमीन में 4 उंगल भूमि गेहूं की बालों के नीचे पशुओं का, ठीक है। अब फसल की पहली बाली अग्नि की, और गेहूं के दानों को अलग करके मुट्ठी भर दाना पक्षियों का,
0: और इसके बाद आटा बनाने पर मुट्ठी भर आटा चींटियों का, चुटकी भर गुंधा हुआ आटा मछलियों का, फिर उस आटे की पहली रोटी गौ माता की,
1: और घर में तैयार खाने की पहली थाली घर के बुजुर्गों की, फिर अपनी थाली, और फिर आखिरी रोटी कुत्ते को दी जाए।
0: हाँ, हमारी संस्कृति हमें यही सिखाती है कि प्रकृति में अन्य जीवों और प्राणियों के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी है।
1: हाँ, हमारी भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है जिसका उपयोग हम कभी वानिकी और खनन में करते हैं।
0: बिल्कुल, देखा जाए तो भूमि का उपयोग खेती, आवास, उद्योग, व्यापार, आना जाना, मनोरंजन सभी कामों में है। तो इतने कामों के इस संसाधन का उपयोग हम ऐसे करें कि इससे नुकसान ना हो।
1: हमें खेती के लिए मिट्टी की गुणवत्ता का ध्यान रखना होगा। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है।
0: हाँ, परंतु अब के समय में बढ़ती जनसंख्या के कारण मांगें बढ़ रही हैं, और इस कारण वन भूमि और खेती की भूमि का दोहन हो रहा है। इससे प्रकृति की दी हुई नेमत कम होती जा रही है।
1: बिल्कुल सही धरा, और इसके साथ ही कम स्थान में अधिक और जल्दी पैदावार के लिए रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग किया जा रहा है। इससे हमारी भूमि की प्रकृति नष्ट हो रही है।
0: खनन इतना ज्यादा हो रहा है कि लगातार भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी और तूफान सक्रिय हो रहे हैं।
1: पहाड़ी स्थान में भूस्खलन आए दिन होते रहते हैं। ऐसा लंबे समय तक लगातार वर्षा होने के कारण होता है। ये एक ऐसी आपदा है जो चिंता का मुख्य विषय है।
0: भूमि के उपयोग में मानव द्वारा किया गया परिवर्तन, जैसे कृषि भूमि, वन भूमि का कम होना, शहरीकरण के लिए अधिक भूमि का उपयोग करना है, हमारी भूमि को प्राकृतिक परिदृश्य से बिगाड़ रहा है।
1: बिल्कुल सही धरा, और ये बदलाव पर्यावरण, समाज और हमारी अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा प्रभाव डालता है।
0: बिल्कुल, भूमि के उपयोग का परिवर्तन से हमारी जैव विविधता भी प्रभावित होती है, साथ ही मिट्टी की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
1: इसीलिए भूमि उपयोग परिवर्तन एक ऐसी खतरनाक प्रक्रिया है जिसके नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए ठोस कदम उठाने जरूरी हैं।
0: जी हाँ, देखा जाए तो मानव गतिविधियों के कारण उपजाऊ भूमि में मरुस्थलीकरण बढ़ता जा रहा है, और वनस्पति में कमी आती जा रही है।
1: हाँ, तापमान साल दर साल बढ़ता जा रहा है, वर्षा कम हो रही है, वनों की कटाई निरंतर जारी है, सिंचाई के तरीकों का गलत उपयोग, ऐसी गतिविधियाँ मरुस्थलीकरण को बढ़ा रही हैं।
0: शहरीकरण के कारण मिट्टी की उपजाऊ ऊपरी परत, जिसमें पौष्टिक व भरपूरता होती है, नष्ट होती जा रही है, भूमि बंजर हो रही है।
1: इसका परिणाम फसल का उत्पादन कम होने के कारण खाद्य पदार्थों में कमी होती है और किसान की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये सभी एक बहुत ही गंभीर समस्या है।
0: इस समस्या से निपटने के लिए हम सभी की भागीदारी आवश्यक है। बेहतर सिंचाई तकनीक और जल संरक्षण के उपाय अपनाकर हम मरुस्थलीकरण को रोकने में मदद कर सकते हैं।
1: हम अपने कार्यकलापों में परिवर्तन कर इस सिकुड़ती भूमि को बचा सकते हैं। आज पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है।
0: ये एक ऐसी भौगोलिक घटना है जिसमें हमारी उपजाऊ भूमि क्षेत्रों में मरुस्थल ऐसी विशेषताएं विकसित हो रही हैं। इससे वहाँ के रहवासी घबरा कर पलायन भी कर रहे हैं।
1: हाँ, क्योंकि ऐसी स्थिति में जमीन की उत्पादन क्षमता तो कम होती ही है, साथ ही हमारी प्राकृतिक वनस्पतियाँ भी खत्म होती जाती हैं।
0: मरुस्थलीकरण ये न केवल मानवीय जीवन बल्कि वन्य जीव भी प्रभावित कर रहा है। भूमि के बंजर होने से कृषि भूमि क्षेत्र कम हो रहे हैं।
1: हाँ धरा, यदि इस पर काबू नहीं पाया गया तो भविष्य में खाद्यान्न संकट गंभीर रूप ले सकता है। इससे निपटने के लिए पूरे विश्व को एकजुट होने की आवश्यकता है।
0: जी हाँ, भूमि की कमी नदियों के कटाव से प्रभावित होती है, हवा से भी मिट्टी के कटाव पर असर होता है।
1: वनों की कटाई मरुस्थल बढ़ने का प्रमुख कारण है। बढ़ती जनसंख्या के कारण पेड़ पौधों और वनस्पतियों को काटा जा रहा है। इस कारण कमल जंगल छोटे होते जा रहे हैं और मरुस्थल का बढ़ावा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है।
0: और इससे बचने के लिए सबसे पहले वृक्षारोपण तेजी से बढ़ाना है और वनों की कटाई एकदम से रोक दी जानी चाहिए।
1: हाँ, और इसके साथ ही मरुस्थली क्षेत्र के अनुकूल पौधों को लगाया जाए, मिट्टी के कटाव को रोका जाए
0: और कृषि कार्यों के अत्यधिक रासायनिक खाद के प्रयोग को भी रोका जाए। सिंचाई में भी मरुस्थली क्षेत्र के अनुसार काम किया जाए।
1: इसके साथ खनन गतिविधियों को तुरंत आवश्यकता से अधिक न किया जाए।
0: बिल्कुल, इस समस्या पर सबसे जल्दी नियंत्रण तभी हो सकता है जब वृक्षारोपण की दर को तेजी से बढ़ाया जाए, तो इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है।
1: परंतु देखने में आता है कि संसाधनों की कमी हम मनुष्यों को प्रतिस्पर्धा में घसीटती है और जब ये प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तो संसाधन अपने आप ही कम से कमतर होते जाते हैं।
0: किसी भी संसाधन का उपयोग हमारे हित में हो या आर्थिक क्रिया के रूप में, जिससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति संभव हो, पर इसकी उपयोगिता हमारे वास्तविक उपयोग से जुड़ी हुई होना चाहिए।
1: नहीं तो प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा, अकाल और बाढ़ का प्रकोप बना ही रहेगा। इससे भूमि का दुरुपयोग या वैज्ञानिक तरीकों की अनदेखी विनाश का आमंत्रण है।
0: हाँ, पर ये वातावरण तहरीली की समस्या का अभी भी समाधान हो सकता है, लेकिन तब तक बिना समय गवाए संसाधनों को रोककर हम व्यवस्थित होकर अपनी दिनचर्या और अन्य कार्यों को रोकने में कड़े अनुशासन को अपनाएं।
1: पानी की एक एक बूंद को सुरक्षित कर उसका सही उपयोग करें। वन क्षेत्र जितने भी बचे हैं उन्हें सुरक्षित कर लुप्त वनस्पति एवं जीव जंतुओं को संरक्षित करने में सहायता करें।
0: ईंधन की आवश्यकता होने पर अंधाधुंध वनों की कटाई ना करें, उन्हें नष्ट ना करें। पौधारोपण को बढ़ावा दें। बंजर भूमि है उसे ठीक कर पौधे लगाएं। सड़क या नदी तालाब के किनारों पर पेड़ लगाएं।
1: बिल्कुल सही कहा धरा। सौर ऊर्जा का विकास कर ऊर्जा की समस्या भी हल की जा सकती है। इससे काफी हद तक लकड़ी का उपयोग कम होगा और ये खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लाभदायक रहेगा।
0: इस तरह स्वयं तो पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें, साथ ही औरों को भी ऐसा ही करने को कहें और इसके महत्व को समझाएं। इन बातों पर अमल करके ही हम पर्यावरण की सुरक्षा कर पाएंगे।
1: अगर अभी भी घर नहीं चेते तो पर्यावरण के गिरते स्तर का परिणाम हमें जल्दी ही और अधिक विभिन्न रूपों में भुगतना होगा।
0: हाँ, और यदि ऐसा हुआ तो इससे हम मानव ही नहीं बल्कि पूरी प्रकृति की समस्त क्रियाएं अपनी विपरीत दिशा की ओर न सिर्फ कदम उठा रही हैं, बल्कि आगे और तेजी से बढ़ती जाएंगी।
1: हाँ, प्राकृतिक आपदाएं तभी आती हैं जब प्रकृति के प्रतिकूल दशा होती है। जैसे जो मिट्टी या भूमि उर्वरा होती है वो उत्पादन करना बंद कर देती है।
0: जो वर्षा समय पर होती है वो कम या अधिक होने लगती है, या फिर समय से पहले या समय निकलने के बाद भी नहीं होती। यानी दोनों ही सूरत में हमें नुकसान ही उठाना पड़ता है।
1: पृथ्वी का तापमान भी सामान्य ना होकर कम या ज्यादा हो जाता है, और ये सभी प्रकृति की गतियाँ हमारे जीवन को खतरे में डाल रही हैं।
0: हाँ, और पृथ्वी का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। ऐसे में हम अपनी आवश्यक संसाधनों को भी नहीं जुटा पाएंगे और अनेक विपदाएं जन्म लेती रहेंगी।
1: पर्यावरण में आए इस असंतुलन को पुनः नियंत्रण में करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हम प्रकृति के प्रदत्त संसाधनों का उपयोग इतना अधिक कर रहे हैं, वे सब समाप्ति की ओर जा रहे हैं।
0: यदि हम इनका इस तरह से दोहन करते रहे तो ये प्राकृतिक संकट स्वयं नहीं आता, बल्कि हम मनुष्य अपने क्रियाकलापों के द्वारा इसे आमंत्रण दे रहे हैं।
1: हाँ, अपने विकास के लिए हम प्रकृति का खुलकर उपयोग करते हैं, लेकिन अब हम इतना उपयोग कर रहे हैं कि संसाधन समाप्ति की ओर हैं। हमने ही इनका शोषण किया है और हम ही प्रकृति में इस असंतुलन के उत्तरदायी हैं।
0: हमें अपने कार्यकलापों में परिवर्तन लाकर इस सिकुड़ती भूमि को बचाना है। आज पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है। सूखा पड़ने की स्थिति तो और भी भयानक होती है। गांव की तस्वीर बड़ी ही हृदय विदारक हो जाती है। किसानों के पास कोई काम नहीं होता।
1: घर के पालतू जानवरों के भोजन की व्यवस्था न होने के कारण या तो वे खत्म हो जाते हैं या फिर उन्हें जंगलों में छोड़ दिया जाता है, और तब लोग शहर की ओर रुख कर लेते हैं।
0: निसंदेह सूखा और अकाल एक हृदय विदारक और गंभीर संकट है। इस तरह बाढ़ भी एक ऐसी ही प्राकृतिक विपदा है जिससे बचना बड़ा ही मुश्किल काम है।
1: बिल्कुल सही कहा धरा। बाढ़ तो केवल प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित कर ही संभव है। इसके लिए बांधों का आवश्यकता अनुसार निर्माण बहुत जरूरी है।
0: इसी तरह भूस्खलन को भी प्राकृतिक विपदा ही माना जाता है, परंतु ये हम मानवों द्वारा किए गए खनन और वृक्षों की कटाई के कारण ही है।
1: और भूस्खलन की आए दिन होने वाली घटनाओं के कारण जिन स्थानों की अर्थव्यवस्था केवल पर्यटक पर ही टिकी होती है वो भी अब बहुत डगमगाने लगी है।
0: पर्यावरण के प्रभाव में मिट्टी का भी प्रमुख रूप से योगदान होता है। इसे अगर यूं कहा जाए कि मिट्टी परिस्थिति की जननी होती है तो गलत ना होगा, क्योंकि जो भी व्यवस्था स्थापित होती है उसका आधार मिट्टी तो होती ही है बादल।
1: हाँ धरा, जीव जंतु पौधे वनस्पति और मानव सभी मिट्टी से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। यहाँ तक कि प्राकृतिक दिशाएं भी मिट्टी से ही संबंधित होती हैं। ये मिट्टी भी एक प्राकृतिक तत्व है।
0: मिट्टी जब अपने पोषक तत्व भौतिकीय बनावट और रासायनिक संरचना खाने लगती है तो मिट्टी का विघटन प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार भूमि का क्षय होता है।
1: ईश्वर ने हमें सब कुछ बहुत सुंदरता से देखने के लिए बनाया है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस प्रकृति के रिश्ते के साथ हमारी भी कोई जिम्मेदारी है।
0: जी हाँ, अगर हमें स्वस्थ और चिंता मुक्त बढ़ना है तो अपने स्वार्थी और गलत कामों को रोकते हुए अपने ग्रह पृथ्वी को, अपनी धरती की सुंदरता को बचाना होगा और इसकी बिगड़ती प्रकृति को बेहतर करना होगा।
1: बिल्कुल, क्योंकि प्रकृति के असली उपयोगता तो हम ही हैं, तो इसे बचाना भी होगा। वो कहते हैं ना, जितना गहरा जोते खेत बीज पड़े फल उतने देत।
0: यानी कि जितना गहरा हम खेत जोतेंगे और तब उसमें बीज डालेंगे तो फसल उतनी ही अच्छी होगी। तो मित्रों, आज हमने ढेर सारी बातें की प्रकृति के संरक्षण, मिट्टी के बचाव के बारे में, और निश्चित तौर पर आपको हमारी ये बातें बहुत ही काम की लगी होंगी। लेकिन अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का।
1: तो दोस्तों, मैं था आपके साथ बादल,
0: और मैं धरा।
1: इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़,
2: ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, और लेखन प्रमिला मुंशी दिवाकर का।
1: मैं था आपके साथ दीपक निमा,
0: और मैं थी आपके साथ वर्षा सिंह, और आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। तो अब चलते हैं आप सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM।
1: नमस्कार।

यातायात के नियम आपकी हिफाजत के लिए हैं। गाड़ी चलाते समय अनावश्यक ओवरटेक ना करें। गाड़ी की गति पर नियंत्रण रखें। तेज स्पीड से गाड़ी ना चलाएं। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है। खुलकर

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, भाग्य और कर्म की लड़ाई शायद मनुष्य के जीवन की सबसे पुरानी उलझन है। एक ओर विश्वास है कि जो भाग्य में लिखा है वो होकर रहेगा, और दूसरी ओर कर्म की पुकार है कि मनुष्य अपने पुरुषार्थ से अपनी राह स्वयं बना सकता है। दो मत हैं, दो धारणाएं हैं, और इनके बीच सदियों से एक प्रश्न खड़ा है कि सच क्या है। क्या भाग्य की लकीरों में ही लिखी होती है जीवन की हर कहानी? क्या प्रारब्ध के आगे मनुष्य का पुरुषार्थ, उसका संकल्प, उसका साहस सब कुछ व्यर्थ हो जाता है? एक प्रश्न मानव मन को मथता रहा है कि क्या जीवन की डोर केवल प्रारब्ध के हाथों में है, या मनुष्य का पौरुष उस डोर को अपने संकल्प से नई दिशा दे सकता है। और यही ज्ञानी जन उपदेश करते हैं कि नहीं, मनुष्य केवल परिस्थितियों

0: नीले पीले आदि विभिन्न रंगों की अभिव्यक्ति में प्रकाश ही मुख्य कारण है। उसी प्रकार शास्त्र के अनुसार मन वाणी और शरीर द्वारा व्यवहार करने वाले अधिकारी पुरुषों के समस्त पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। अब यहाँ पर विचार करने योग्य ये है कि शास्त्र के अनुसार मन वाणी और शरीर का व्यवहार यानी कर्म, हम लोग मन वचन कर्म पर बहुत बात करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा,
1: जी जी,
0: लेकिन हम लोग इस पर विचार नहीं करते कि हमारा मन क्या सोचता है, हम अपनी वाणी से क्या बोलते हैं और कर्म क्या करते हैं। यानी इन तीनों में आप देखें तो कहने में, बोलने में और करने में इतना भेद है कि हम मन से कैसी कैसी अपनी कल्पनाएं, कैसी कैसी फैंटेसी क्रिएट करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जो हम सोच रहे हैं उसके अनुसार क्या हम बोल भी रहे हैं। बोलेंगे तभी जब सोच और बोलने में एकता हो। आजकल तो इस पर आधुनिक जो मोटिवेटर हैं वो बहुत सारी लोग इस बात को कह रहे हैं कि मैनिफेस्ट करो, ये करो, वो करो, लेकिन हजारों साल पहले भारतीय ज्ञान परंपरा में ऋषियों ने वो सूत्र बताए हैं। जब शास्त्र विहित हम कर्म नहीं करते, शास्त्र विहित कर्म का अर्थ ये कदापि नहीं है, कई लोग इसका अर्थ ये निकालते हैं कि शास्त्रों को थोपा गया है, क्योंकि शास्त्र जिस समय लिखे गए उस समय की दुनिया अलग थी, आज जो दुनिया है वो डिजिटल दुनिया है, आज लोग कहां जा रहे हैं, तो आज के लिए कैसे वो समीचीन हो सकता है। शास्त्र का मतलब होता है कि जो सत्य है, जो नियम है, वो कभी नहीं बदलेगा। नियमों में नए नए नियम, नई नई जानकारियां जुड़ेंगी। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि पुरानी जानकारियां गलत हो गईं।
1: जी जी,
0: है ना, पुरानी जानकारियां भी मौजूद हैं। अगर पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत अगर न्यूटन ने दिया तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को आज नकार दिया गया।
1: बिल्कुल,
0: वो ज्ञान है। तो ऐसे ही शास्त्र ज्ञान है, जहां पर सत्य को उद्घाटित करने के नियम बताए गए हैं, इसलिए ऋत कहा गया। ऋत मतलब सत्य। सत्य की खोज शास्त्रों में हुई है और ऋषियों ने देखा है, तो इसलिए जो शास्त्र कहते हैं उसके अनुसार मन से चिंतन करो और फिर जो चिंतन करो उसके अनुसार बोलो,
1: बोलो,
0: वही आप अपने कर्म में करो। क्योंकि जो आप बोलते हैं वो आपका मस्तिष्क सुनता है। लैंग्वेज, जैसे मनोविज्ञान में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने लैंग्वेज पर काम किया, नोम चोम्स्की नाम का एक दार्शनिक हुआ जिसने ये कहा कि आदमी सिर्फ जो है व्याकरण से चलता है, मतलब अपने मस्तिष्क को देखें तो मस्तिष्क में हर शब्द के भाव हैं। शब्द आते ही वो भाव का
1: एक चित्र बनता
0: है। माँ शब्द के आते ही हर व्यक्ति के हृदय में जो भाव बनेगा तो वो माँ शब्द के बिना नहीं बनेगा।
1: बिल्कुल,
0: तो अंत में देखें तो उस भाव को ट्रिगर करने वाला वो शब्द है। तो जो आपका मस्तिष्क शब्द सुनता है, आप दूसरों से जो बोलते हैं आप भी सुनते हैं, लेकिन कई बार हम लोग ऐसे आदती हो जाते हैं गलत बोलने के कि हम लोग 80% ऐसे विचार करते हैं। ये तो शुद्ध सिद्ध है कि जो विचार हमारे किसी काम के नहीं है उन विचारों में हम संलग्न रहते हैं। हम ऐसी भाषा बोलते हैं जिन भाषा को सुनकर के हम खुद ही दुखी हो जाएं, खुद ही डिमोरलाइज हो जाएं, हमारा आत्मविश्वास डिग जाए। उस हिसाब से फिर हमारा शरीर का जो हमारा जो मस्तिष्क है वो हमारे शरीर को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। तो पुरुषार्थ की सिद्धि तभी होगी जब शास्त्र के अनुसार मन विचार करेगा। विचार में यहाँ थोड़ा सा मैं विस्तार दूंगा कि श्रवण मतलब शास्त्र को सुने, फिर मनन करें, फिर उसका निधिध्यासन करें। अद्वैत में ये तीन स्टेप कहा जाता है कि श्रवण मनन निधिध्यासन। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप वैसा बोलने भी लगेंगे और जो बोलेंगे वही आपका शरीर सुनेगा, फिर उसी अनुसार वो व्यवहार करेगा। और अगर ऐसा आपने किया तो आपका पुरुषार्थ निश्चित ही सिद्ध होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जेहिकर जेपर सत्य स्नेहु तेहिके मिलहि न कछु संदेहु। कितनी बड़ी बात बोली उन्होंने सामान्य शब्दों में कि आपका सत्य स्नेह तो हो और वो कैसे दिखेगा, मन वचन कर्म से दिखेगा। ऐसा नहीं कि आप कर्म से कुछ और करें, मन से कुछ और सोचें और से कुछ और बोले, है ना।
1: जी,
0: तो ऐसा ये योग होना चाहिए।
1: जी,
0: इन तीनों का योग, मन अच्छा, वचन कर्म का।
1: जी, अच्छा ये बताएं कि मोह में फंसने का मुख्य कारण क्या है।
0: मोह में फंसने का मुख्य कारण सिर्फ ये है कि मनुष्य केवल मन से किसी वस्तु की इच्छा करता है, शास्त्र अनुसार कर्म से नहीं। वह पागलों सी चेष्टा करता है। उसकी चेष्टा केवल मोह में डालने वाली है, पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली नहीं।
1: अच्छा,
0: मन से इच्छा करिए और शास्त्रों के अनुसार कर्म न करिए, तो ये चेष्टा जो है वो पागलों की चेष्टा
1: है। जी जी जी,
0: विक्षिप्त कर देगी आपको। हाँ, हाँ। और आप देखेंगे तो लगभग लोग इसके शिकार हैं।
1: बिल्कुल,
0: है ना। इच्छा हमारी कितनी प्रबल है, राजा बनना किसे नहीं आता, सब चाहते हैं कि राजा बने, लेकिन राजा बनने के लिए जो कर्म है या राजा बन जाने के बाद जो राजा का कर्म है क्या हम कर रहे हैं। तो इसी पर तो पूरी परंपरा चल रही है। मुझे एक दृश्य याद आता है, जब राजा और प्रजा की बात आई, समर्थ गुरु रामदास ने छत्रपति शिवाजी को एक बार कहीं यात्रा कर रहे थे वो, तो उनको लगा कि इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि ये बहुत कुशल राजा है और प्रजा का भरण पोषण करता है, तो इस भ्रम से मुक्त करने के लिए उन्होंने कहा कि देखो ये क्या है। उन्होंने कहा तो पत्थर है, कहा इसको तोड़ो। तो कहते अरे साहब ये क्या तोड़ने का मतलब, तो तोड़ा गया तो उसमें एक कीड़ा निकला।
1: कीड़ा,
0: हाँ। कहते हैं कि तुमने अपने राज्य का भरण पोषण करने के लिए जितने साधन किए हैं, इस कीड़े के लिए तुमने क्या किया है, ये भी तो यहाँ जी रहा है।
1: बिल्कुल।
0: तो ये तुम भ्रम पाल के बैठे हो कि तुम जिंदा रख रहे हो,
1: तुम सबको पाल रहे हो,
0: और ये भ्रम मनुष्य को पल जाता है अपनी बुद्धि के साथ। जबकि वो ये बताना चाहते थे कि इस सृष्टि में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कर्म करने का हक है। माँ फलेशु कदाचन, जो कहा भगवान कृष्ण ने, इसका बड़ा गूढ़ अर्थ था। मतलब मैं कहता हूँ कि फल के साथ ट्रिगर होने वाले लोग, फल के साथ चलने वाले लोग इस रहस्य को कैसे जानेंगे, वो ये भूल जाते हैं कि फल कुछ और नहीं है, वो कर्म का ही रूपांतरण है। कर्म ही आपका फल बनता है, और आप सोचते हैं कि कर्म फल अलग है, इसीलिए भारत में कर्म फल कहलाता है, या आपके कर्म का फल है। ये मत सोचो कि कहीं और से दैवी दैव के साथ मिला हुआ है, आप ही के कर्म का फल है। ये अलग बात है कि आप अपने उस कर्म को उद्घाटित नहीं कर पा रहे हैं कि आपके किस कर्म का ये फल है, लेकिन है वो आप ही के कर्म का फल। एक मैं कथा बताऊं आपको, पूछा गया, जिसे आपने प्रारब्ध की बात की, कहते हैं पूछा गया कि प्रारब्ध कैसे व्यक्ति का पीछा करता है, तो इंद्र कहते हैं कि जैसे हजारों गायों के बीच एक बछड़ा अपनी माँ के स्तन के पास पहुंच जाता है, किसी और के पास नहीं पहुंचता, ऐसे ही आपका प्रारब्ध, प्रारब्ध मतलब आपका पूर्व कृत कर्म, आपका पीछा कर रहा है। प्रारब्ध कोई फल नहीं है। लोगों ने ये बहुत गलत अवधारणा पाल रखी है कि प्रारब्ध का फल हम भोग रहे हैं, प्रारब्ध आपका कर्म है, जिसका कर्म फल आप भोग रहे हैं वो कर्म का फल है।
1: यही फल की प्राप्ति का कारण है,
0: यही फल की प्राप्ति का कारण है कि शास्त्र के अनुसार मनन करें, चिंतन करें, और वैसी ही वाणी बोलें। इसी को हम लोग सदकर्म कहते हैं, सद चिंतन, सद विचार और सद कर्म। जब ये तीनों मिलते हैं तो पुरुषार्थ की सिद्धि होती है, ये वशिष्ठ जी कह रहे हैं राम से।
1: अच्छा ये बताएं कि पुरुषार्थ कितने प्रकार का होता है।
0: पुरुषार्थ दो प्रकार का होता है, एक शास्त्रानुमोदित पुरुषार्थ और दूसरा शास्त्र विरुद्ध पुरुषार्थ। यानी शास्त्रानुमोदित पुरुषार्थ पुण्य कर्म और शास्त्र विरुद्ध पुरुषार्थ पाप कर्म है। इन दोनों में से जो शास्त्र विरुद्ध पुरुषार्थ है वह अनर्थ का कारण होता है, और शास्त्रानुमोदित पुरुषार्थ परमार्थ वस्तु की प्राप्ति का कारण होता है। परमार्थ वस्तु मतलब परमात्मा की प्राप्ति का कारण होता है, उस परम चेतना को जानने का मार्ग प्रशस्त करता है, जिस चेतना पर ये सारी क्रियाएं हो रही हैं। जैसे कहते हैं महासागर के जल में जो उत्ताल तरंगें उठ रही हैं और गिर रही हैं, वो सागर में हो रही हैं, ऐसे ही जो परमार्थ सत्य है, उस परमार्थ सत्य में इस पूरे जगत की गति चल रही है, चाहे वो उत्पत्ति हो, चाहे वो स्थिति हो, चाहे वो प्रलय हो। इन तीनों स्थितियों में जो क्रिया है, क्रिया हो रही है, वो उस परमार्थ सत्य की वजह से हो रही है, यद्यपि सत्य के नाते क्रिया नहीं हो रही है, क्रिया सत्य से बिल्कुल अलग है। लेकिन क्या समुद्र की तरंगे समुद्र की वजह से हैं?
1: नहीं,
0: समुद्र की वजह से नहीं है। विचार करके देखें तो वो चंद्रमा और सूर्य के एक आकर्षण का प्रभाव है। देखें तो ज्वार भाटा जो आता है वो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आता है। बृहद ज्वार बृहद भाटा क्यों आता है? क्योंकि उस समय फुलमून होता है, मतलब पूर्ण चंद्रमा होता है, ठीक है, या चंद्रमा नहीं होता है, तो उनका वो आकर्षण है। अगर वो आकर्षण न होता तो समुद्र में लहर नहीं होती। तो लहर समुद्र में नहीं है, लहर चंद्रमा का आकर्षण है।
1: जी जी।
0: तो ऐसे ही प्रकृति में क्रिया हो रही है, लेकिन क्रिया जो है उस परम परमार्थ, जो परम सत्य है, उसके स्थिति में हो रही है, वो स्थित है। हाँ, जो अज्ञेय है, जो ज्ञात नहीं हो पा रहा है। ज्ञेय तो आप जगत को जानेंगे, और हमारे यहाँ ऋषि कहते हैं कि नहीं, ज्ञेय वो परमार्थ सत्य है। देखिए ये अंतर हो गया पाश्चात्य और भारतीय दर्शन का, कि भारतीय दर्शन ने कभी भी ज्ञेय प्रकृति की शक्ति को नहीं कहा, उसने

0: जिनको मिला है वो संतुष्ट हैं नहीं हैं, लेकिन हम कभी विचार नहीं करते क्योंकि शास्त्रानुकूल हम पुरुषार्थ नहीं करते। शास्त्रानुमोदित पुरुषार्थ जब करेंगे तब इस तरह की दृष्टि पैदा होगी और हम बीतराग को समझ पाएंगे और वैराग्य प्रकट होगा। बीतराग में वैराग्य प्रकट होता है और कई बार संसार की विफलताओं से भी वैराग्य प्रकट होता है, वो बीतराग की स्थिति नहीं है।
1: जी जी जी
0: जी,
1: ये बात निराशा की है, निराशा है बिल्कुल। अच्छा, हम प्रारब्ध और कर्म की बात कर रहे हैं तो योग वासिष्ठ क्या कहता है, प्रारब्ध क्या है और क्या इस जन्म में प्रारब्ध ही भोगता है मनुष्य?
0: प्रारब्ध को लेकर के मैंने भी बहुत सारे लोगों के विचार देखे। कई ऐसी मान्यताएं हैं जहां लोग कहते हैं कि प्रारब्ध हम भोग रहे हैं। प्रारब्ध को इस रूप में बताया गया कि प्रारब्ध का फल हम भोग रहे हैं। निश्चित ही कभी भी कोई फल बिना कर्म के बनता ही नहीं है, कर्म का ही फल बनता है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं राम से, कहते हैं कि राम, यह पूर्व जन्म का जो पुरुषार्थ है वह प्रारब्ध है। पूर्व जन्म का पुरुषार्थ यानी पूर्व जन्म के कर्म का जो फल है वो है प्रारब्ध, यानी वो भी कर्म का ही फल है। प्रारब्ध कुछ और नहीं है, कर्म का फल है और व्यक्ति जो है प्रयत्न करके अपने कर्म फल को क्षीण कर सकता है।
1: कैसे?
0: हाँ, इसके लिए वो कहते हैं कि ये जो प्रारब्ध है मुझे प्रेरित करके विशेष परिस्थितियों में डाल देता है, इस प्रकार की बुद्धि को बलपूर्वक कुचल डालना चाहिए। ये इशारा है वशिष्ठ जी का कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि प्रारब्ध हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में बलपूर्वक डाल देता है या हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो प्रारब्धावशात है, तो कहते हैं इसको प्रयत्न पूर्वक कुचल देना चाहिए क्योंकि वह प्रत्यक्ष प्रयत्न से अधिक प्रबल नहीं हो सकता।
1: अच्छा,
0: प्रारब्ध
1: बड़ी बात हो गई।
0: देखिए ऋषि की घोषणा है, राम जी से कह रहे हैं कि वो प्रत्यक्ष प्रयत्न से अधिक प्रबल नहीं हो सकता। तब तक प्रयत्न पूर्वक उत्तम पुरुषार्थ के लिए सचेष्ट रहना चाहिए जब तक कि पूर्व जन्म का अशुभ पौरुष स्वयं पूर्णतः शांत न हो जाए।
1: ये बड़ा सुंदर उत्तर हो गया। कई बार होता है ना, लोग कहते हैं कि अगर भाग्य में लिखा है, अगर प्रारब्ध है तो फिर हम कुछ न करें, क्यों करें, क्या फर्क पड़ता है? तो ये सुंदर जवाब,
0: भाग्यवाद यही तो पोषित हो रहा है इसी बात के लिए। मुझे रामचरितमानस की पंक्तियां याद आ रही हैं। रामचरितमानस की दो पंक्तियों को मैं उद्धृत करना चाहूंगा। जैसे एक जगह गोस्वामी जी लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही सोतस फल चाखा।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: यहाँ पर वही बात कह दी जो इन्होंने कही है अभी कि प्रयत्न से अधिक प्रबल प्रारब्ध नहीं हो सकता।
1: अद्भुत बात है, लेकिन मैं बड़ी मुग्ध होती हूँ इस बात पर कि जब हम योग संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं तो हम गीता की भी बात कर रहे हैं तो तुलसीदास जी का रामचरितमानस की पंक्तियां आ जाती हैं। मतलब कैसे योगी वो भी थे, कैसी कैसी बातें वो लिख रहे हैं, जो वशिष्ठ जी कह रहे हैं
0: वो भी
1: तुलसीदास जी कह रहे हैं।
0: नाना पुराण निगमागम संमतम कहा ही उन्होंने, विभिन्न पुराणों के निगम आगम का संमत बात मैं कर रहा हूँ। इसीलिए कहा गया कि शास्त्रानुकूल, शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ। वही गोस्वामी जी एक जो लिखते हैं, वही है सोई जो राम रच
1: राखा,
0: कोई तर्क बढ़ावा ही साखा।
1: बिल्कुल,
0: है ना। तो अब देखिए यहाँ पर जो भाग्यवादी लोग हैं वो सहारा ले लेते हैं,
1: ले लेते हैं
0: जो भगवान चाहते हैं
1: वही है, वही जो राम रच राखा।
0: तो क्या वो भूल जाते हैं कि कर्म प्रधान है विश्व करी राखा, जो जस कर सोतस फल चाखा। तो ये वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि राम ऐसा नहीं है। और सच ये है, जो जहां तक मुझे लगता है सुनीता जी, कि हमारे ऋषि इतने दूरदृष्टा थे कि वो हमारे मन का प्रबंधन करना चाहते थे। वो जानते थे कि जब कभी आपका मन आपके पुरुषार्थ से छीण हो, विकल हो, तब वो इस सहारे से
1: आप अपने आप को रोकें,
0: ताकि आपको विचलन न हो। लेकिन अब ये भी आप सहारा लेकर के पलायन न कर जाए, इसलिए उन्होंने कहा कर्म प्रधान विश्व का जो जस कर स्वतः चाखा। तो उन्होंने कहा कि वो कभी भी आपके मतलब प्रयत्न से प्रबल नहीं हो सकता। और वो कह रहे हैं कि जब तक पहले जन्मों का किया हुआ अशुभ कर्म समूल नष्ट न हो जाए, तब तक तत्परता से उत्साह पूर्वक साधन करते रहना चाहिए।
1: अच्छा,
0: ये उपदेश है वशिष्ठ जी का हम सभी के लिए। यद्यपि वो राम जी को कह रहे हैं कि जब तक पूर्व जन्म के अशुभ, माने हमारे जीवन में कुछ ऐसे परिणाम आ रहे हैं जो हमें कबूल नहीं हो या स्वीकार नहीं हो, तो हमें क्या करना चाहिए, इस जीवन में पुरुषार्थ इतना प्रबल कर देना चाहिए। मुझे कथा आती है, एक भारत के बहुत बड़े ऋषि हुए हैं जिन्होंने 24 बार गायत्री का पुरस्करण किया।
1: अच्छा।
0: और उन्होंने जिस जिस के लिए किया, उनके जीवन में बहुत कष्ट था, तो वो तंग आकर के गुरु ने कह दिया कि गायत्री का पुरस्करण करिए और सब दुख दूर हो जाएगा। 24 बार उन्होंने किया और उनकी पत्नी नहीं रही, बेटा नहीं रहा, सब कुछ संसार का चिंता चला गया, लेकिन वो विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा गुरु की बात है, मान लिया। और जब 24 पुरस्करण होने के बाद गायत्री प्रकट हो गई और कहते हैं कि जो मांगो तुम्हारी जो वांछा हो, तो वो हंसने लगे, कहते थे जिनके लिए मांगना था
1: वो चले गए,
0: वो सब चले गए
1: जी।
0: अब तो कोई इच्छा ही नहीं बची उन्हीं के लिए।

0: सब मैं कर रहा था, मेरा तो कोई कभी इच्छा नहीं था,
1: कभी नहीं।
0: मेरा अपनों के साथ जो नाता था उन्हीं के लिए हम बेहोल थे, परेशान थे, और वो सब के सब चले गए। तब तक तो आप आई नहीं, अब जब वो चले गए तो मांगू किसके लिए? तो गायत्री देवी कहती हैं, ऐसा मतलब ऋषि ने कहलवाया है कि जरा पीछे मुड़ के देखो। तो जब पीछे देखते हैं वो तो उनका प्रारब्ध जल रहा था।
1: अच्छा।
0: यही बात है, पीछे आग लगी थी। कहा देखो ये तुम्हारे जो 24 पुरुषचरण का फल है कि हर पुरुषचरण ने तुम्हारे प्रारब्ध को जलाया है, तुम्हारे अशुभ फल को मिटाया है, और उसका परिणाम ये है कि तुम आज भी पुरुषचरण कर रहे हो, जबकि तुम कब के डिग चुके होते। 24 तक टिकना मामूली बात नहीं है।
1: जी, जी, जी।
0: तो ऐसे में तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं, तुम्हारे प्रयत्न से तुम्हारा पुरुषार्थ, जो अशुभ पुरुषार्थ था, जो शास्त्र विरुद्ध था, वो सब नष्ट हो चुका है। अब तुम निर्मल हो गए हो, अब तो तुम्हारे सामने जगत की सारी रिद्धियां सिद्धियां तुम्हारे कदमों में झूलेंगी, क्योंकि तुम अब इस योग्य बने हो।
1: बिल्कुल।
0: तो वो गायत्री को प्रणाम करते हैं, कहते हैं देवी अब क्यों मुझे इस अविद्या के चक्र में पड़ना। अब तो अविद्या का आवरण हट गया आपके आने से, आप तो ज्ञान की अधिष्ठात्री हैं, देवी हैं, अब तो मैं प्रकाशित हो गया, अब मैं क्या फिर मांगू आपसे। तो बड़ी कृपा की आपने मुझे बोल, वो कहते हैं वो मुक्त हो गए। तो ऐसा भी ऋषियों ने दृष्टि दी है। तो प्रयत्न से हम अपने पूर्व के फल को मिटा सकते हैं, लेकिन उसका आधार प्रयत्न है, उसका आधार प्रारब्ध के अधीन होकर के बैठ जाना या पलायन कर जाना नहीं है।
1: जी जी। अच्छा एक बात आप बताएं कि इहलोक और परलोक की हमने बात की, इसकी सिद्धि कैसे होती है?
0: इहलोक और परलोक की सिद्धि, इहलोक और परलोक की सिद्धि होती है, आप जब शास्त्र के अनुसार किया हुआ उद्योग करते हैं, शास्त्रानुसार जो उद्योग करते हैं
1: जी,
0: उस उद्योग से इहलोक और परलोक की सिद्धि होती है। शास्त्र यहाँ बार बार इसलिए कह रहे हैं कि शास्त्र जो है हमारे सुधी जन या गुरुजनों का एक पूरा शास्त्र गुरु है। जैसे कथा आती है भागवत में, जब जा रहे हैं भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर, तो उद्धव से कहते हैं कि अब मैं इसी मतलब भागवत महाशास्त्र में रहूंगा, भागवत महापुराण में रहूंगा। यद्यपि उसको लोग कह के वो तत्व नहीं निरूपित करते, भागवत महापुराण कहने का आशय उनका ये था कि शास्त्र में रहूंगा, शास्त्रों में जो वचन है ऋषियों के, उनके द्वारा जो देखे गए दृश्य हैं, वो चाहे जितने पुराने हों लेकिन आज भी वो अर्वाचीन है, नवीन है, प्राचीन नहीं है। देखिये एक बात आप ध्यान रखिए, सनातन जो धर्म की बात करते हैं हम लोग, एक्चुअल में सनातन धर्म है, जो सत्य है वो सनातन है और सनातन धर्म है। कोई धर्म सनातन नहीं है,
1: धर्म का नाम सनातन
0: नहीं है, सनातन धर्म है।
1: जी, जी, जी।
0: और सनातन की बात शास्त्रों में हुई है, जिस भी शास्त्र में वहां का अध्येता आता है वो सनातन परंपरा की बात
1: मतलब
0: करता है,
1: सनातन, सनातन ही धर्म है,
0: सनातन ही धर्म है। और यहाँ पर क्या होता है, कई बार हम लोग सनातन धर्म और इन धर्मों की लड़ाई में लग जाते हैं, लेकिन जो सनातन है, जो कभी खंडित नहीं होगा, अखंड ज्ञान जो है, अद्वैय ज्ञान जो है, वो धर्म,
1: वो धर्म है,
0: जिसके सिवाय कोई दूसरा ज्ञान नहीं है, अद्वैय ज्ञान। और अद्वैय ज्ञान वही ज्ञान है, परमार्थ सत्य, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म वनापरा, ये है अद्वैय ज्ञान, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये है अद्वैय ज्ञान, सब ब्रह्म में है। लेकिन ये दृष्टि आते ही आप देखिए, मतलब कहता हूं मैं, जो विषम दृष्टि है मनुष्य की, जहां पर हम अपना पराया, मैं और तुम, हम मम वृत्ति से ग्रसित हो जाते हैं, इस वृत्ति से मुक्ति दिलाती है यही अद्वैय ज्ञान की परंपरा, जहां पर दूसरा कुछ है ही नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको भी बहुत सुंदर चौपाई में कहा है कि सी राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुगपान। यही है अद्वैय ज्ञान कि सी राम में है। अब यहाँ कोई कहे तुलसी के राम, कहां से तुलसी के राम हो गए भाई, जब पूरा जगत ही राम में है, देख रहे हैं वो, तो कहां राम नहीं है
1: जी।
0: जित देखूं तो तू ही तू है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तो लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। ये कहने के अलग अलग ढंग हैं, लेकिन सी राम में जिसको जगत दिख गया, अब उसके पास भेद दृष्टि कहाँ रही, राम से अलग कुछ है ही नहीं उसके लिए। तो ये जब दृष्टि आती है, ये है सनातन धर्म, जहां पर आप सर्वव्यापी उस परम तत्व को, ब्रह्म तत्व को सब में देख सके, इसको कहते हैं ब्राह्मी दृष्टि, ब्रह्म दृष्टि, इसी को ब्रह्म ज्ञान कहा गया, अद्वैय ज्ञान योग कहा गया, इसी योग का उपदेश वशिष्ठ जी कर रहे हैं राम जी को।
1: अच्छा अक्सर लगता है कि जो जीवन है वो व्यर्थ बीत गया है ना,
0: जी
1: जन्म तेरा बातों ही बीत गया।
0: जी जी।
1: तो मैं जानना चाह रही थी कि किन लोगों का जीवन व्यर्थ में व्यतीत हो जाता है।
0: इसके लिए वशिष्ठ जी कहते हैं, जो शास्त्र के अनुसार अपनी श्रवण मनन आदि चेष्टाओं का साधन नहीं करते और चित्त में विषयों का ही चिंतन करते रहते हैं, उन मूढ़ पुरुषों की अत्यंत दूषित भोगेच्छा को धिक्कार है, और ऐसे लोगों का जीवन व्यर्थ व्यतीत हो जाता है। भोगेच्छा, अब आप देखिए, भोगों की इच्छाएं शांत नहीं होती, ये हमने आज तक के भोगों से सीखा लेकिन नहीं सीख पाए, अनसुना कर दिया। आप भागवत महापुराण में कथा आती है ययाति का प्रसंग
1: जी
0: सुना होगा, बहुत सारे श्रोताओं ने सुना होगा कि वो भोगों में इतने संलिप्त थे कि उन्होंने अपने पुत्र से भोगों की इच्छा को शांत करने के लिए जवानी मांगना शुरू कर दिया कि आप अपनी जवानी दे दो। और एक उनका अंतिम जो सबसे छोटा पुत्र था, अपने पिता के भोग की इस विह्वलता को देखकर वो समझ गया कि ये भोग कभी शांत नहीं करते, और उस पुरु ने अपना कहते हैं दे दिया उनको कि ले जाओ। और जब लेकर के फिर कुछ दिन उन्होंने भोग किया तो उन्हें लगा कि अरे मेरे पुत्र को भोगों की नश्वरता का बोध है, लेकिन मैं कितना कृतज्ञ हूं कि मैं उससे मांग रहा हूं, बाकी पुत्रों से मांगा उन्होंने नहीं दिया, छोटे ने दे दिया, कहा कि वो उनका गुरु बन गया। तो कई बार हमारे परंपरा में गुरु परंपरा इतनी सुदृढ़ रही है कि पिता का गुरु पुत्र भी बना है, और सबसे छोटा पुत्र जो है वो उनको ज्ञान दे गया, और फिर वो अपने आप को धिक्कारते हैं, वो भोगेच्छा को धिक्कारते हैं और पुरु को उसके यौवन को सौंपते हैं और फिर वो मुक्त हो जाते हैं इससे। तो कहते हैं कि ऐसे लोग अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं। आपको बताऊं, जो लगातार हमेशा विषयों का ही चिंतन कर रहे हैं, विषय विष कहा गया है ऋषियों की दृष्टि में, और हम लोगों के लिए विषय अमृत है, विषय अमृत का पान करते हैं हम लोग,
1: उसी के लिए जी रहे हैं,
0: उसी के लिए जी रहे हैं, और ये नहीं सोचते हैं कि मतलब विषय मारता है, जिसको हमारे भर्तृहरि जी कहते हैं कि भोगम न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कि भोगों को हमने नहीं, भोगों ने हमें भोगा, तृष्णा ने हमें बूढ़ा कर दिया, वो बूढ़ी नहीं हुई, वो तो जवान अभी भी है।
1: जी जी,
0: और हर वृद्ध आदमी देखिए वो तृष्णा के साथ आने वाली पीढ़ियों की योजनाओं को लेके बैठा है ना, जबकि अब आंखों से दिखना बंद हो गया, हाथ पांव कांपने लगे, शरीर नहीं संभल रहा है, लेकिन आज भी परिवार और संसार की चिंता वैसे ही बनी हुई है। तो तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, शरीर बूढ़ा हो गया। तो ये कोई भर्तृहरि जैसा आत्मदृष्टा देखेगा, कोई योगी देखेगा, तो इसीलिए राम ये योग जो वासिष्ठ है ये योगियों का प्रसंग है, और इसके लिए हमारे श्रोताओं को निश्चित ही अच्छी अवधारणा के साथ इस ग्रंथ का श्रवण करना चाहिए।
1: अच्छा, लेकिन कमाल की बात यह है कि जो बातें आप कह रहे हैं
0: जी,
1: कि तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, हम बूढ़े हो गए, मनुष्य बूढ़ा हो गया, सुना बहुत बार सुना, लेकिन असर तो हम पर भी नहीं है।
0: जी जी, बिल्कुल ठीक है।
1: ये असर कैसे हो?
0: हाँ, अभ्यास वही जो अभी हमने शुरू में ही कहा है कि शास्त्र के अनुसार मन वाणी और शरीर का व्यवहार।
1: जी जी,
0: तो अब जैसे शरीर बूढ़ी होगी ये मानकर हम क्या जवानी में व्यवहार करते हैं? फिर मुझे एक कथा याद आ गई कि एक बूढ़े बाबा जा रहे थे कहीं से, तो वो थोड़ी झुकी कमर थी, हाथ में लाठी लिए थे, तो बच्चों ने उन्हें छेड़ा, कहा कि आप तो धनुष के आकार के हो गए, बाबा ये धनुष कहाँ से लिया? तो बाबा ने कहा कि बेटा समय आने पर तुम्हें भी मिल जाएगी।
1: बिल्कुल।
0: तो ये अगर हम शरीर की दशा देख लें तो निश्चित तौर पर हमें मतलब ये समझ में आ जाएगा, तो हम हमारा मतलब अनुशासित हो जाएगा, हम उद्दंड नहीं होंगे, हम विचलित नहीं होंगे।
1: अच्छा, ये बताएं कि जीवन में परम फल की प्राप्ति कैसे होती है?
0: जीवन में परम फल की प्राप्ति परम स्वार्थ रूप परमात्मा साक्षात्कार रूपी फल से होती है। परम स्वार्थ रूप कहा वशिष्ठ जी ने उसे, कि आपके जीवन का परम स्वार्थ, जिसे हम संसार में अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हैं, स्वार्थ बहुत प्यारा शब्द है, लेकिन इसके अर्थ इतने बिगाड़ दिए गए कि हम स्वार्थी शब्द का नाम से घृणा करते हैं कि बड़ा स्वार्थी आदमी है, जबकि स्वार्थ शब्द योगियों का शब्द है, कि जो स्वयं के अर्थ को खोजने में तत्पर हो या जिसने स्वयं के अर्थ को जान लिया वो स्वार्थी है।
1: स्व का अर्थ।
0: तो ये कहते हैं कि परम स्वार्थ जो है वह है परमात्मा साक्षात्कार, और जब आप स्वार्थ को सिद्ध करते हैं तो आप अपने स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं, और स्वरूप साक्षात्कार में अयमात्मा ब्रह्म या अहम ब्रह्मास्मि का बोध होता है, ज्ञान नहीं होता, बोध होता,
1: बोध
0: है,
1: होता है
0: जी। तो ये है परम स्वार्थ,
1: ये बोध और ज्ञान की लड़ाई हम लोग के साथ भी चल रही है।
0: हम लोग ज्ञान में सुन ली, हम लोगों ने क्या किया, ऋषियों की भाषा सुन ली, लेकिन न उसका मनन किया, श्रवण तो कर लिया, मनन नहीं किया, मन से विचार ही नहीं करते
1: जी जी,
0: और निधिध्यासन तो दूर, तो फिर व्यवहार करने का सवाल ही नहीं होता। तो हमारे पुरुषार्थ की सिद्धि कैसे हो
1: जी?
0: हमारे पुरुषार्थ की सिद्धि इसलिए नहीं हो रही। अच्छा, एक बार और विचार करिए कि संसार में कभी किसी के पुरुषार्थ की सिद्धि हुई? पुरुषार्थ का जो परम पुरुषार्थ है वो मोक्ष है
1: जी।
0: संसार में तो बंधन ही मिलता है ना, आप बहुत कुछ अर्जित कर लें तो और बड़ा बंधन खड़ा कर लेंगे, और छोड़ने की इच्छा नहीं होगी। जितनी आपकी इच्छाएं पूरी होती चली जाएं, उतनी ही आप इच्छाओं के बंधन में बंधते चले जाएंगे, उतना ही वो संसार की वस्तु आपको और गहरे में बांधेगी। परम पुरुषार्थ तो मोक्ष है। तो पुरुषार्थ का मतलब क्या हो? धर्म। इसीलिए भारत का ऋषि अद्भुत था। धर्म, धर्म में फिर हमने बात की सनातन धर्म, है ना, जो सनातन है उसके अनुसार व्यवहार करना, उसके अनुसार विचार करना और उसी को बोलना। यह है धर्म
1: जी।
0: फिर धर्म जब होगा तो जीवन का अर्थ सिद्ध होगा। अर्थ मतलब यहाँ धन ही नहीं है।
1: हाँ।
0: जीवन भी तो एक धन है, जीवन से बड़ा धन क्या है?
1: बिल्कुल।
0: जीवन पर जब संकट आए तो संसार के समस्त धन को क्या हम दांव पर नहीं लगाते?
1: बिल्कुल।
0: तो जीवन से बड़ा कोई धन नहीं है, और उसी जीवन को संसार के धन को पाने के लिए हम नष्ट करते हैं और बीमार होते हैं, और बीमार होकर फिर बाद में बचाने के लिए धन खर्च करते हैं। ये हम लोगों की मूर्तापूर्ण कहानी है कि पहले हम धन को कमाने के लिए अपने शरीर को बीमार करते हैं, और फिर बीमारी से मुक्त होने के लिए कमाए हुए धन को खर्च करते हैं
1: जी।
0: और एक दिन मर जाते हैं। तो हमने कमाया कि खोया, क्या किया? कंकड़ पत्थर इकट्ठा किया
1: जी।
0: तो कहते हैं कि वो तब अर्थ की सिद्धि होती है, और अर्थ जब सिद्ध होता है तब आपके काम की सिद्धि होती है। भारत में पूर्ण काम की बात की गई है। भारत का ऋषि कहता है काम मतलब अधूरी कामनाएं नहीं, पूर्ण काम होना। एक मंत्र बहुत सभी हमारे श्रोताओं ने सुना होगा, आपको भी शायद स्मृति हो जाए, ओम पूर्ण मदः पूर्ण मिदम पूर्णात् पूर्ण मदच्यते पूर्णस्य पूर्ण मादाय पूर्ण मेवा वशिष्यते। मैंने आप देखें तो आपका जो स्वरूप है वो पूर्ण है, और ऐसा पूर्ण है जिसमें से कुछ भी घटा लीजिए उसकी पूर्णता में कमी नहीं होगी। संसार के किसी भी विषय वस्तु को अगर आपसे छीना जाए तो आप अधूरे हो जाएंगे, लेकिन अगर आप अपने जीवन के अर्थ को प्रकट कर चुके हैं तो वो कभी भी अपूर्ण नहीं होगा। और पूर्णस्य पूर्ण मादाय पूर्ण मेवा वशिष्यते, उस पूर्ण से जो घटा तो भी पूर्ण, जो शेष बचा वो भी पूर्ण। तो ऐसे में पूर्ण को जब हम जान लेते हैं तो हम पूर्ण काम होते हैं, तो काम की सिद्धि होती है। और जब ऐसे पूर्ण काम हम होते हैं तो मोक्ष तो हो ही जाता है।
1: बिल्कुल,
0: यही तो मोक्ष है। पूर्ण काम होना मतलब मोक्ष होना, और पूर्ण काम होना मतलब अपने ओम पूर्ण मदह उस पूर्ण ओम स्वरूप को अनाहत जो ध्वनि है उस तरंग के साथ हो जाना है। अपने स्वरूप को ही नहीं जानना बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप तरंगों की भाषा भी समझना, जिसको क्वांटम फिजिक्स तरंग पदार्थ के रूप में व्यक्त करता है कि एक ही समय में कब कोई वस्तु पदार्थ है कब तरंग है ये जानना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे ही हमारी तरंगों की भी एक दुनिया है, जहां पर वो तरंगों की अनाहत नाद कहा हमारे ऋषियों ने उसे। वो तरंगे दो की वजह से नहीं है, आहत नहीं है, वो अनाहत है, वो ओम है अनाहत नाद। तो उसके द्वारा हम अपने जीवन को,
1: समय बहुत कम रह गया है तो मैं चाहती हूँ कि बहुत संक्षेप में आप बता दें कि जीवन में गुणों को ग्रहण करने की विधि क्या है।
0: सुंदर कहा आपने, जीवन में गुणों को ग्रहण करने की विधि है विचार पूर्वक दोषों को त्याग करके गुणों को ग्रहण करना चाहिए।
1: अच्छा,
0: अब देखिए ये भी एक ऋषि का कितना गूढ़ तत्व चिंतन है। हम लोग दोष के साथ गुण को ग्रहण करते हैं। वशिष्ठ जी के ही इस योग वशिष्ठ में एक प्रकरण आता है जिसमें कहते हैं कि शुद्ध गाय का दूध भी अगर चमड़े के थैले में दूहा जाए तो वो अपवित्र हो जाए। तो ऐसे ही दोष के साथ अगर गुण ग्रहण किया गया तो गुण भी दोषपूर्ण हो जाएगा। तो दोष का त्याग कर आप गुणों को ग्रहण करें, और दोष का त्याग कैसे होगा? विचार पूर्वक होगा, क्योंकि बिना विचारे आप दोष के साथ होते हैं, विचार पूर्वक आप दोषों को देख पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप प्रतिक्रिया मत करें, आप रिस्पॉन्ड करें। रिएक्शन के बजाय रिस्पॉन्डिंग व्यक्तित्व होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए कि हम रिस्पॉन्स करें। तो इस तरीके से, और वो तभी होगा जब विचार पूर्वक हो। और कहा भी गया हमारे यहाँ, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, है ना। तो पछताने वाली बात तब होती है जब दोष के साथ गुण ग्रहण किया जाता है और विचार पूर्वक दोष को त्याग करके गुणों को ग्रहण किया जाए।
1: तो बहुत ही सुंदर चर्चा रही शशिकांत जी, आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए, आपका हम आभार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज हमने चर्चा की पौरुष की प्रधानता और प्रारब्धवाद के खंडन विषय पर। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच उपस्थित थे योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपके साथ बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब अनुमति दें, नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: पहले आप सुनेंगे हवाइन गिटार वादन, कलाकार हैं सुनील पावगी। और दूसरी प्रस्तुति होगी कल्पना झोकर करके शास्त्रीय गायन की। ये प्रस्तुतियां दी गई भारत भवन के स्थापना दिवस के मौके पर। आइए पहले सुनते हैं हवाइन गिटार वादन सुनील पावगी का।
1: एक छोटी सी धुन सुना रहा हूं जिसमें कुछ कुछ चीजें भी बीच में लगाऊंगा, आप पहचाने तो बहुत अच्छा। मिश्र पीलू में एक धुन है।

ये था आज का खास कार्यक्रम जिसमें आपने पहले सुना हवाइन गिटार वादन सुनील पावगी का और दूसरी प्रस्तुति रही कल्पना झोकरकर के शास्त्रीय गायन की। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

इस कार्यक्रम की परिकल्पना की अदिति गौड़ ने। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत, गीतकार पंडित नारायण ब्रज।

0: रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में आयोजित 3 दिवसीय जननायक समारोह में।
1: राजा हीरा खान सिंह नृत्य नाट्य

देवी के स्थान पूजा स्थान वाल राजा तपचरिया कारी काम के ध्यान मस्त कार जैसे कारी काम के भाई और यकना हीरागढ़ में हीरा खान छत्री जन्म लैसे।

0: अरे साहकरण, तुम अकेले? और ये कौन है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो?
1: महारानी, महाराज अब नहीं रहे।
0: क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
1: हाँ महारानी,
0: ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता।
1: महारानी,
0: महाराज,
1: हिम्मत से काम लीजिए। इस बच्ची का पालन पोषण आप करिए, ठीक उसी तरह जैसा आप अपने पुत्र का करेंगी। बड़े होने पर इन दोनों का विवाह भी कर दीजिए, तभी आपका पुत्र अपने पूर्वजों की हत्याओं का बदला ले सकेगा।

बढ़ते दोनों जन राजा हीरा खान रानी कमाल हीरो बढ़ते बढ़ते हीरा गड़बा एक दिन रानी कमाल हीरो कैसे मनवा।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: श्रोताओं को इतिहास का नमस्कार
2: और स्वीकार कीजिए तारीख का भी नमस्कार।
1: तारीख आज पता है हम किसकी बात करने वाले हैं?
2: किसकी?
1: भारतीय साहित्य संस्कृति और परंपरा की एक सर्वमान्य महाकवित्री महादेवी वर्मा जी की।
2: महादेवी वर्मा जी की?
1: हाँ।
2: अरे वाह इतिहास, ये तो मेरी भी मनपसंद कवित्री हैं।
1: और मेरी भी।
2: और इनके रेखा चित्रों का तो कोई जवाब ही नहीं।
1: अच्छा तुम्हें पता है महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 में उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद नगर में एक सुसंस्कृत परिवार में हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में इन्होंने एमए की उपाधि प्राप्त करने के बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य के रूप में कार्य करने लगी। और जानती हो अपने अंतिम दिनों तक हिंदी के माध्यम से कन्याओं को साहित्य और संस्कृति की शिक्षा देने वाली इस विद्यापीठ का वे मार्गदर्शन करती रहीं।

0: महादेवी जी की आरंभिक शिक्षा मिशन स्कूल इंदौर में हुई। उनके पिता इंदौर में शिक्षक थे। आपकी पहली कविता 1922 में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बाद में कई वर्षों तक वे इस पत्रिका की संपादिका भी रहीं।
1: हाँ, महादेवी वर्मा छायावादी गीति काव्य की एक कीर्ति पताका थीं। उनके 5 गीत संग्रह प्रकाशित हुए, निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत और दीपशिका। इनमें से पहले 4 पूरी साज सज्जा और गुरु गंभीर भूमिका के साथ यामा पत्रिका में भी संकलित हैं।
0: हाँ, और गद्य संकलन में प्रमुख हैं श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार, और शाश्वत जीवन मूल्यों से पोषित उनके साहित्य कला विषयक विचार साहित्यकार की आस्था नाम से प्रकाशित हैं। उनकी रचनाएं चित्त को भाव विभोर कर देती थीं। मन कह उठता था, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ।

0: महाकवित्री महादेवी जी ने जीवन के मधुर कोमल रूपों, प्रेम और सौंदर्य को अपने काव्य के प्रतिपाद रूप में ग्रहण किया। यह गीत की प्रबल मनोवेग का सहज उच्छलन ना होकर के रमणीय कला निर्मित ही है, जिसकी अनविति किसी एक मूल वर्ती मनोराग पर ना होकर के कलात्मक अनुभूति पर निर्भर करती है। उनके काव्य का केंद्रीय भाव विरह है।
1: महादेवी की कला चित्रमय है। शब्दों के माध्यम से ही नहीं, रंग रेखा के माध्यम से भी उन्होंने मोहक चित्र अंकित किए हैं।
0: सन 1942 में उन्होंने विश्ववाणी के बुद्ध अंक का संपादन किया और भारत छोड़ो आंदोलन के क्रांतिकारियों की मदद की। दिल में अपने एहसास जगाओ, आओ आगे आओ।

0: साहित्यिक जीवन के प्रारंभ में ही महादेवी जी को सेक्सेरिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1944 में उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। 1952 में वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य बनी। वर्ष 1976 में उत्तर प्रदेश सरकार ने तथा 1982 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने उन्हें सम्मानित किया। सन 1982 में वे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित की गईं और सन 1983 में उन्हें यामा के लिए 1.5 लाख रुपए से सम्मानित किया गया।
1: ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली वे तीसरी महिला और चौथी रचनाकार थी। जहां पूर्ववर्ती साहित्यकारों को एक पुरस्कार उनकी किसी एक पुस्तक पर दिया गया था, जबकि महादेवी वर्मा को यह पुरस्कार उनके समग्र लेखन पर दिया गया था। उनमें राष्ट्र प्रेम और महिलाओं के उत्थान की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने आजीवन महिला उत्थान के लिए कार्य किया। प्रयाग महिला विद्यापीठ उनके प्राचार्य काल में बापू के आदर्शों की निष्ठा का प्रतीक बना। महादेवी वर्मा जी की बापू के प्रति अतः श्रद्धा थी।

0: श्रोताओं, भारतीय काव्य में महादेवी वर्मा का गौरवपूर्ण स्थान है। आधुनिक साहित्य की उपलब्धि का मानदंड है छायावाद का काव्य। छायावाद का सार सर्वस्व है। उनकी प्रगीत कला और प्रगीत का अत्यंत मधुर रूप है गीत। महादेवी जी ने अपनी परिष्कृत सौंदर्य संवेदना और समृद्ध शिल्प विधान से गीत कला को चरमोत्कर्ष प्रदान किया और वैष्णव कवियों से लेकर के रविंद्रनाथ ठाकुर तक की परंपरा का निर्वहन और गुणात्मक विकास किया।
1: इतिहास जी, यदि हम महादेवी वर्मा की बात करें और उनकी रचना न हो तो ये नाइंसाफी नहीं होगी।
0: बिल्कुल,
1: तो क्यों ना एक रचना मैं सुना दूं?
0: अरे बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए।
1: नींद में सपना बन अज्ञात, गुदगुदा जाते हो जब प्राण, ज्ञात होता हंसने का अर्थ, तभी तो पाती हूँ ये जान। प्रथम छूकर किरणों की छांह, मुस्कुराती कलियां क्यों प्रात, समीरण का छूकर चल छोर, लौटते क्यों हंस हंस कर पात। प्रथम जब भर आती चुपचाप, मोतियों से आंखें नादान, आंखती तब आंसू का मोल, तभी तो आ जाता ये ध्यान।
0: वाकई बहुत अच्छी कविता थी महादेवी वर्मा जी की। अच्छा तारिक, महादेवी वर्मा जी को पक्षियों से भी बहुत बड़ा प्रेम रहा।
1: बिल्कुल,
0: महादेवी वर्मा जी की एक बड़ी ही मार्मिक कविता है कहाँ रहेगी चिड़िया, जिसमें उन्होंने चिड़िया के दर्द को बड़ी ही सुंदरता से कहा है। आंधी आई जोर शोर से, डाली टूटी है झकोर से, उड़ा घोंसला बेचारी का, किससे अपनी बात कहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी।
1: और इतिहास महादेवी की एक बड़ी प्यारी विरह कविता है, जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते वे पग पखार, जो तुम आ जाते एक बार,
0: जो तुम आ जाते एक बार।
1: आज महादेवी जी हमारे बीच नहीं है। 11 सितंबर 1987 में वे सदा के लिए हमें छोड़कर चली गईं, लेकिन उनकी रचनाएं और गीत उन्हें चिरस्मरणीय बनाए रखेंगी और अपने अंतिम दिनों में उनके द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां सदा सदा हमें प्रेरणा देती रहेंगी। तोड़ दो ये क्षितिज, मैं भी देख लूं उस ओर क्या है, जा रहे जिस पंथ से युग, कल्प उसका छोर क्या है।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की।

स्वाधीनता संग्राम, स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार

यातायात के नियम आपकी हिफाजत के लिए हैं। गाड़ी चलाते समय अनावश्यक ओवरटेक ना करें। गाड़ी की गति पर नियंत्रण रखें। तेज स्पीड से गाड़ी ना चलाएं। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

ठंडे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। कार्यक्रम है स्वास्थ्य चर्चा और इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे, वो विषय है नशीली दवाओं का दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मुहिम। और इस विषय पर बात करने के लिए आज स्टूडियो हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं निहारिका जी, जो NIWCYD बचपन के साथ कार्य कर रही हैं इस फील्ड में। उनसे जानेंगे कि वो इस फील्ड में कैसे आई। निहारिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: धन्यवाद, सभी को नमस्कार।
1: तो निहारिका जी, हम बात कर रहे हैं नशे का जो दुरुपयोग है देश में और इसकी रोकथाम है, तस्करी, इस फील्ड पर आप बहुत समय से काम कर रही हैं, तो आपकी यात्रा कब प्रारंभ हुई, आप इससे कैसे जुड़ी?
2: लगभग 12 वर्षों से मैं समाज सेवी के रूप में भोपाल शहर में काम कर रही हूँ और भोपाल शहर के ऐसे समुदाय में काम कर रही हूँ जिन्हें हम आमतौर पर बस्ती क्षेत्र या झुग्गी झोपड़ी के नाम से जाना जाता है। हालांकि शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन आम भाषा में उनका उपयोग किया जाता है। तो खास तौर पर वहाँ के समुदाय में रहने वाले जो बच्चे हैं, युवा हैं और परिवार है, उनके साथ मैं लगातार काम कर रही हूँ, जहाँ पर मैंने देखा कई बार बहुत सारे जो बच्चे और महिलाएं स्कूल से बाहर होते हैं या डोमेस्टिक वायलेंस का जब वो सामना करते हैं, सबसे बड़ा जो कारण नजर आता है वो है नशा। नशे के कारण बहुत सारे जो बच्चे हैं वो स्कूल से बाहर हैं या महिलाओं के साथ में जो हिंसा है इस वजह से होती है, और उसका कारण ये भी है क्योंकि वो आसानी से उस जगह पे उपलब्ध है। तो ये एक बड़ा कारण जो है मुझे समझ में आया। तो फिर हमने इस पे काम करने की शुरुआत की कि समस्याओं के पीछे की जो वजह है नशा, उस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, उस पे लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है और लोगों को समझाना ज़रूरी है कि नशा हमारे जीवन में किस तरीके से परेशानियाँ लेकर आती है।
1: आप इसमें काम कर रही, नशा इतने आसानी से बच्चों को या जो नशा करने वाले उनको बड़े आसानी से मिल रहा है बाजार
2: में? जी हाँ, बिल्कुल।
1: इसके पीछे आप क्या मानती, किसकी खामी है और इतने आसानी से कैसे उपलब्ध है, जबकि सरकार इस पे रोक लगाती खासी?
2: सरकार तो बहुत काम कर रही है, लेकिन जो जमीनी स्तर पे जो काम होना चाहिए, खासतौर पे मॉनिटरिंग का जो काम होना चाहिए, मुझे लगता है वो व्यवस्था में अभी कमी है, हम उसे मजबूत करने की आवश्यकता है। क्योंकि आसानी से अवैध तरीके से जिन जगहों पर बिक रहा है, और स्लम की यदि हम बात करें तो बहुत ही घनी बस्ती क्षेत्र होता है जहाँ पर थोड़ा ढूंढना भी शायद मुश्किल है, तो वहाँ पर बच्चों के लिए जो उपलब्धता है हमें उस पर मॉनिटरिंग पे बहुत काम करने की आवश्यकता है, और उन तक जो पहुँच रहा है तो कहीं ना कहीं वो चैनल भी स्ट्रांग होगा। तो यदि हम जो हमारा तंत्र है उसको मजबूत करके जमीनी स्तर पर यदि काम करने की आवश्यकता है, जो मुझे लगता है, क्योंकि वहाँ तक लोगों की पहुँच नहीं है और बहुत ही आसानी से यदि बच्चों को मिल रहा है तो ये हमारे लिए भी कई बार सवाल खड़े करता है।
1: बिल्कुल, ये बात जी। एक बात आती है कि एक तो जब आप इसमें फील्ड में काम कर रहे हैं तो जो लोग ये नशे का व्यापार कर रहे हैं, क्या वो कोई टारगेट लेके चलते हैं कि वो किन लोगों को नशे में लिप्त करेंगे, बच्चों को ही या युवा वर्ग को या लड़कियों को, ऐसा कुछ आपने स्पेसिफिक देखा, या सभी लोग इसमें लिप्त होते हैं? मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो लोग ये व्यापार कर रहे हैं क्या उनका कोई टारगेटेड ग्रुप है?
2: अधिकांश यदि मैं जिन एरिया में काम करती हूँ वहाँ की बात करूँ, क्योंकि अधिकतर जो जुड़ाव होता है वो बच्चों और युवाओं के साथ में होता है, यदि मैं उनके अनुभवों की बात करूँ तो जो मुझे समझ में आया है कि बच्चे उनके लिए एक बहुत आसान टारगेट है।
1: अच्छा।
2: क्योंकि एक तो बच्चों को प्रभावित करना बहुत आसान होता है, और दूसरा क्योंकि आज जो बच्चे हैं उनकी बहुत ख्वाहिशें सपने हैं, तो कहीं उसका लालच देना और उनको अपने काबू में करना बहुत आसान है। और हम देखें कि बच्चे जो हैं एक तो उनसे श्रम कराना बहुत आसान होता है, उसकी कीमत ज़्यादा नहीं देनी पड़ती है, और क्योंकि बच्चे का जो जुड़ाव है उनके समुदाय स्तर पर बहुत ज़्यादा होता है, एक विश्वसनीय भी होता है। तो जो मुझे समझ में है कि खासतौर युवा लड़के जो हैं इसमें बहुत शामिल हैं और वो नशे के आदि भी हैं, तो शायद उन्हें लालच देके अपने सर में जोड़ना और उनसे काम करवाना, ये उनके लिए बहुत आसान मुझे लगता है जो है। क्योंकि अभी कुछ युवाओं के साथ जब मेरी बातचीत हुआ, तो जब मैंने उनको जिस हालत में देखा तो बहुत ज़्यादा नशा करते हुए, फिर वॉयलेंस करते हुए, तो थोड़ा समय लिया उनसे बात करने का। जब गहरी उनसे बातचीत हुई तो समझ में आया कि घर में क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें परेशानी होती हैं, तो कई बार बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि हम किससे जाके अपनी बात कहें। तो आजकल की जो युवा जनरेशन है, लगता है कि यदि हमको अपने स्ट्रेस को दूर करना है तो नशा एक सुकून देने वाली जगह है, या नशा जो है बहुत हमको आराम देगा, तो वहाँ से बच्चे शुरुआत करते हैं, जुड़ते हैं अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, और फिर धीरे धीरे वो एक ऐसे चैनल से जुड़ते हैं और उनका उपयोग हो रहा है ये वो समझ नहीं पाते हैं। हाल ही में एक बच्चे ने सुसाइड अटैम्प किया, वो नशा मुक्ति केंद्र में ही उसने सुसाइड अटैम्प किया, क्योंकि उसको नशे की बहुत लत थी। जब आपके हाथ में नशा आता है तो आप सोचते हैं कि मैं इसे ट्राई कर लूँ, कोशिश कर लूँ, क्योंकि जिज्ञासु तो बहुत होते हैं युवा साथी। तो उसने शुरुआत जस्ट एक शौक के तौर पर टेस्ट करने के लिए किया, और धीरे धीरे उसकी आदत लगी। जब उसे नहीं मिल पाया तो उसकी लत से फिर उसने सुसाइड अटैम्प किया। तो युवा जो है जिस तरीके से जुड़ रहे हैं शौक के तौर पर जुड़ते हैं, फिर स्ट्रेस को रिलीज करना अपना, और फिर धीरे धीरे वो इस चैनल में शामिल हो जाते हैं।
1: दो तीन चीज़ें अभी आपसे जो बातचीत हुई अभी तक की उसमें समझ में आई कि युवा इससे आसानी से जुड़ रहे हैं, एक कारण उनका लालच, तो हम आपसे जानना चाहेंगे वो किस तरह का लालच ये देते हैं बच्चों को, या सबसे पहली में हमारा जानना उद्देश्य कि पहला क्या उद्देश्य होता होगा या क्या तरीका होता होगा जो लोग बच्चों को इसमें लाते हैं या नशे के लिए आगे लाते हैं, एक बात। दूसरी बात कि आपने कहा स्ट्रेस, तो ये स्ट्रेस होता है इसलिए नशे की तरफ बढ़ जाते हैं, या दो बातें कि नशे की तरफ जाते हैं इसलिए भी स्ट्रेस होता है, दोनों बातों को एक बार आप हमें बताएं।
2: तो पहली बात जो आपने कही, जो युवा जुड़ते हैं उद्देश्य क्या होता है, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, खासतौर पर हम कानून व्यवस्था की करें तो बच्चों के ऊपर कार्यवाही उस तरीके से नहीं होती है, तो शायद इसलिए वो बच्चे उनका इजी टारगेट रहता होगा। हाँ। कि बच्चों के ऊपर हम कानूनी इस तरीके से कार्यवाही नहीं कर सकते, तो बच्चों को शामिल करना एक ये उद्देश्य उनका हो सकता है। दूसरा मुझे लगता है कि अभी हम जब बात करें खासतौर पर कोविड के वास्ते, जब हम लोगों को समझ में आया कि मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, तो यदि हम देखें कि वैसे स्पेसेस नहीं है जहाँ पे आप अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को व्यक्त कर पाएं खुलकर। अच्छा। तो कई बार व्यक्ति जो है व्यक्त नहीं कर पाता, तो वो खुद के लिए उस कमी को दूर करने के लिए कुछ चीज़ों को खोजता है, जिसमें एक जो चीज़ समझ कि नशे के ऊपर वो ज़्यादा होता है, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि नशे में हम होश में नहीं रहेंगे तो शायद हमें वो चीज़ें याद नहीं आएंगी, और कई बार जो है नशा नहीं मिलने के कारण भी व्यक्ति में स्ट्रेस होता है। तो दोनों कारण है, एक तो स्ट्रेस होने के कारण आप वहाँ जा रहे हैं, और दूसरा आपको नशा नहीं मिलने का जो स्ट्रेस है, क्योंकि आप जब एडिक्टेड हो जाते हो तो ये भी एक मानसिक स्वास्थ्य की परेशानी ही है। तो इन दो तरीकों से लोग उसमें जुड़ते हैं।
1: एक चीज और हम अब निकल के आती है कि जब आप, चूंकि आप इसमें काम कर रहे हैं, तो ये आप जब निकलते हैं ये खुद ब खुद वो इलाकों में आपको बच्चे बड़े आसानी से मिल जाते हैं, केवल बच्चे ही नहीं, मैं पूछना चाहूंगा कि बच्चे या लड़कियां या बड़ी उम्र के लोग या पुरुष बड़े या महिला, उम्र को अगर दरकिनार करके बात करें तो हम बात करना चाह रहे हैं उस पर कि जो भी लोग नशे में लिप्त हैं तो किस तरह से वो आप पहले प्रथम दृष्टि आप कैसे उन्हें पहचानते हैं, या आप क्या तरीके अपनाते हैं जिससे ये लोग आपकी पहचान में या आप उन तक पहुंच पाए।
2: हम लोग जब समुदाय में काम करते हैं तो वहाँ पर हम लोग लोगों के साथ रैपो बिल्डिंग करते हैं। अच्छा। लोगों से मिलना, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या चल रहा है, तो ऐसे बातचीत के साथ में शुरुआत होती है, तो एक परिवार के साथ में संपर्क होता है। फिर हमारे वहाँ पर बस्तियों में जाके हम जनसंवादों का आयोजन करते हैं ताकि लोग हमसे जुड़ पाए और हमसे बातचीत कर पाए। तो कई बार जनसंवाद तरीका होता है जहाँ पे लोग इन मुद्दों को बताते हैं, कई बार व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी वो हमें बताते हैं उनकी बातों के बारे में, समस्याओं के बारे में, तब वहाँ से ये चीज़ें जो है निकल के आती हैं। जैसे कई बार महिलाएं जब आती, क्योंकि मैं काउंसलिंग का भी काम करती हूँ, तो कई बार महिलाएं जब आती हैं कि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हुआ, तो जब उनसे वजह पूछे जाते हैं तो वो एक नशा एक कारण बताते हैं कि इस वजह से जो है मेरे साथ में ही हुआ। और कई बार ये मैंने जो देखा है कि नशे में मुझे मारा गया, पीटा गया, कई बार नशे में व्यक्ति समझता है कि मैं बहुत पावरफुल हो गया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो अधिकतर वायलेंस देखने को ज्यादा मिलता है नशे की वजह से। तो इस तरीके की बातें जो है जब संवाद होता है व्यक्तिगत रूप से, जब उनसे मिलते हैं या वो हमसे संपर्क भी करते हैं, तब वो हमें ये जानकारी देते हैं।
1: पहले ये बात करें, फिर आपसे ये भी पूछेंगे कि ये जो नशा ये करते हैं इसमें खासतौर कौन सा नशा ज्यादा कर, जो सबसे ज्यादा नशा आप जो आप देखते हैं किस चीज का नशा करते हैं ज्यादातर लोग?
2: ज्यादातर जो है शराब का नशा करते हैं, सिगरेट जो है वो यूज करते हैं, गांजा जो है वो यूज करते हैं, कुछ मामलों में ड्रग्स जैसी चीजें समझ, लेकिन वो बहुत ज्यादा उस पर नहीं निकल के आया कि यही, लेकिन कुछ लोगों ने जिक्र किया कि इस तरीके के नशे उपलब्ध, सलोचन है खास तौर पे। कुछ युवा साथी की हम बात करें तो जो विक्स है या जो मेडिसिन मेडिकल पे मिलते हैं उनका भी वो उपयोग करते हैं।
1: तो जब भी आपको कोई केस आप दिमाग में अगर आपके आए तो हम चाहेंगे कि आप उसको दिमाग में रखते हुए बिना किसी का नाम बताए हमें ये बताइएगा कि जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले, पहली दफ़ा आपको पता चला कि ये मिस्टर एक्स हैं जो या जो भी व्यक्ति है वो नशे की आदत में है, तो सबसे पहला कदम आप क्या करते हैं?
2: एक युवा साथी हमको मिले थे जिन्हें बहुत ज़्यादा वो था, हमने पहले उनसे दोस्ती की, थोड़ा उनको जानने की कोशिश किया। तो वो हमसे मिले, हमारे साथ बैठे, हमने उनको जानने की कोशिश, तो एक दोस्ती जैसा माहौल वहाँ पे शुरू हुआ, बातचीत होनी शुरू हुई। फिर धीरे धीरे उनसे जानने की कोशिश किया कि वो उन्हें कब से इस चीज़ का आदत लगा, तो उस बच्चे ने बताया कि क्योंकि उनके परिवार में जो पिताजी हैं वो नशे का उपयोग करते हैं, तो धीरे धीरे उन्होंने मंगवाना शुरू किया बच्चे से। तो वो कई बार होता है, जैसे मैंने भी देखा है कि जब हमको सर्दी खांसी होती थी तो हमारे पिताजी एक ढक्कन सिरप हमको दे देते थे कि सर्दी ठीक हो जाए, तो ऐसे ही वो बच्चे ने अपने पिताजी के लिए लाना शुरू किया। धीरे धीरे फिर उसने टेस्ट करना शुरू किया, फिर वो जिस समुदाय में रहते हैं वहाँ के जो और उसके पीयर्स या हम दोस्त की बात करते हैं, तो दोस्तों के साथ में जुड़ा तो दोस्तों ने उसे इन्फ्लुएंस किया कि तू लड़का है यार, तू ये नहीं करेगा तो कौन करेगा, मर्द है, मर्द तो पीते हैं। तो इस तरीके से उसने धीरे धीरे उसने ट्राई करना शुरू किया, फिर वो पीना शुरू हो गया। तो उस व्यक्ति से जब मेरी बात हुई तो उसने बताया उसने बहुत ज़्यादा नशे का उपयोग किया और वो 10 साल का था तब वो जुड़ा। तो आज वो जो बच्चा है 18 साल का है, तो आप सोचिए कि 8 साल से 18 से 10 साल तक उसने कंटिन्यू वो चीज़ें करी। तो दो तीन जो परेशानियां मुझे निकल के आई कि एक तो जो हमारे दोस्त होते पीयर्स होते हैं उनका एक बड़ा असर हमारे ऊपर पड़ता है। यदि आप वो चीज़ नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत सवाल खड़े करते हैं। घर का माहौल है, यदि आपकी उपलब्धता में, यदि घर में आप वो चीज़ें देख रहे हैं तो आप उसमें जुड़ जाते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं कि प्रथम शिक्षा जो है बच्चे को अपने परिवार से मिलती है, तो परिवार का जो माहौल दिखता है वो अडॉप्ट करता है। तो वो चीज़ हमने उसमें देखी। फिर जब इस तरह की चीज़ें निकल के आई तो हमने उनसे पूछा जब आप करते हो तो आपको क्या नुकसान होता है इससे। तो फिर उस व्यक्ति ने खुद बताया कि जब मैं पीता हूँ तो मैं कहीं भी पड़ा हुआ मिलता हूँ या मुझे होश नहीं रहता है, कई बार मैं ऐसी चीज़ें करता हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए शायद, जैसे कई बार छेड़खानी करना हुआ, खुद को नुकसान पहुँचाना हुआ, लड़ाइयाँ करना। तो उन्होंने दोनों चीज़ें बताई। तो फायदे के रूप में भी पूछा उनसे क्या हुआ, तो फायदे के रूप में कुछ समय के लिए शायद मैं कुछ चीज़ें अपनी भूल जाता हूँ, लेकिन उसने नुकसान ज़्यादा उसके बताए। तो ऐसे दोस्ती में उनसे बातचीत किया, तो हमने एक हमारा ग्रुप चलता है, उस ग्रुप में उस बच्चे को हमने जोड़ा। तो ग्रुप में हमने बातचीत करना कि हम और क्या चीज़ें कर सकते हैं, अल्टरनेटिव क्या है, मान लो हमें कोई परेशानी होती है तो हम और क्या कर सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, किसी की मदद ले सकते हैं। तो जुड़ाव इस तरीके से होता है। फिर हम काउंसलिंग के प्रोसेस में जाते हैं, फिर हमें लगता है कि केस में शायद हम नहीं मदद, तो फिर हम रेफरल करते हैं, तो जो प्रोफेशनल काउंसलर हैं या जो नशा मुक्ति केंद्र हैं तो फिर हम उनकी सहायता लेते हैं। तो इस तरीके से हम उनमें मदद करते हैं। आज मुझे खुशी इस बात की जब उस व्यक्ति से बातचीत हुआ तो उसने वो काउंटिंग करके बता रहा है कि मैंने 3-3.5 लाख रुपए का नशा किया और पैसे ना होने के बाद कई बार चोरियां भी की, तो कई बार लोगों से पैसा भी मांगा और कई बार पिटे भी हैं। लेकिन एक चीज मुझे समझ में आया कि शायद उनको समझाने वाला एक स्पेस नहीं था, या वो उनमें वो अवेयरनेस नहीं थी, या उनके साथ में जो दिक्कत चल रही है वो वहीं कहीं शेयर नहीं कर पाए। तो वो एक स्पेस उनको हमसे मिला, उन्होंने शेयरिंग किया, काउंसलिंग हुआ, हमने

0: नशा छुड़ाने के लिए आए हैं या उसमें सहायता करेंगे या अगेंस्ट भी होता है, दोनों बातें बताइएगा।
1: विश्वास एकदम से तो वो नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है ये अचानक से कौन सा व्यक्ति आ गया जो हमारे परिवार की इतनी चिंता कर रहा है या हमारे परिवार के बारे में सोच रहा है। तो वो उस विश्वास को बना पाना शुरुआत में मुश्किल होता है, लेकिन जब लगातार उनसे मुलाकात होती है, कई बार जब हम जिस तरीके के संवाद करते हैं, कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, तो हम उन्हें इन्वाइट भी करते हैं, तो कुछ चीज़ें वहाँ से ऑब्जर्व करते हैं। जैसे जिस बच्चे की मैंने आपको कहानी इससे पहले बताई, तो उन परिवार का पहले ये था कि वो नहीं भेजते थे, लेकिन उन्होंने जब अवसर दिया, हमने उन्हें जोड़ा, उन्होंने अपने बच्चे में बदलाव देखा, तो उनका विश्वास हमसे बढ़ा, तो फिर उन परिवार ने हमको सहयोग करना शुरू किया। क्योंकि परिवार भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों से बहुत परेशान होता है। जब परिवार को जोड़ा, उन्होंने अपने घर में उस बच्चे के अंदर बदलाव देखा, तो उनमें एक विश्वास बढ़ा और फिर उन्होंने हमें सहयोग किया। तो शुरुआत में तो बहुत दिक्कतें होती हैं क्योंकि आप जब किसी के पास जाते हैं तो उन्हें भी लगता है, क्योंकि कई बार ऐसे लोग भी जुड़ते हैं जो आपका सहयोग करने तो आते हैं लेकिन वो सहयोग ना करके आपका उपयोग कर लेते हैं कई बार, तो ये एक चुनौती रहती है। लेकिन आप लगातार काम करते हैं क्योंकि मुश्किलें नहीं आएंगी तो आप काम नहीं कर पाओगे और आप सीख नहीं पाओगे। तो ये जो परेशानी आई ये चुनौती थी, लेकिन हमारे लिए सीख भी था कि हमें परिवार से कैसे जुड़ना है, क्योंकि हम सीधे उन्हें समाधान लेकर जाएंगे तो वो नहीं समझेंगे। तो उनकी समस्याओं को समझना, समस्याओं से उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, जब तक वो इस चीज़ को महसूस नहीं करेंगे तो शायद वो आपको मदद नहीं कर पाएंगे। तो एक परिवार के रूप में हमारा उनसे जुड़ाव होता है, ना कि एक संस्था या समाजसेवी के रूप में। तो एक परिवार का सदस्य बन के हम उनसे जुड़ते हैं, फिर उनके साथ में काम करते हैं।
0: एक बात और पूछेंगे निहारिका जी, जो जैसे आप इसमें काम कर ही रही हैं और इतने लंबे समय से, अलग अलग आपने बताया लगभग 6 राज्यों में आप काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अभी जितने लोग जैसे आप कर रहे हैं ये पर्याप्त है या अभी काफी और लोगों को या कुछ अन्य संस्थाओं को आने की जरूरत है, क्योंकि नशे की प्रवृत्ति तो काफी बड़ी हुई है?
1: मुझे लगता है कि बहुत कम है और बहुत काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि सुविधाएं हैं लेकिन उसकी अवेयरनेस या लोगों तक उसकी जानकारी नहीं है। तो लोगों को आगे आना पड़ेगा और लोगों की आवश्यकता है इसमें काम करने के लिए, और मुझे लगता है कि हमारी जो व्यवस्था है उसमें और बदलाव करने की भी ज़रूरत है। मैं जो देख पाती हूँ कि बच्चों के लिए उस तरीके की सुविधा नहीं है कि हम पुनर्वास उनका कर पाए, खासतौर पर नशे की उससे। एक दूसरा हमें ये थोड़ा बालश्रम में भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अभी तक यदि हम बालश्रम कानून की बात करें तो नशे में जो बच्चे लगे हुए हैं कहीं ना कहीं हम उसको एड्रेस नहीं कर पाते हैं। तो हमें इस और भी देखने की ज़रूरत है कि नशे में कितने जो बच्चे हैं वो काम कर रहे हैं, वो भी देखने की आवश्यकता है। दूसरा जो हमारी व्यवस्थाएँ चल रही हैं अलग अलग, उन पर भी हमें मजबूत और वो कैसे काम कर पाएँ इसकी बहुत ज़रूरत है। तो एक तो बच्चों के लिए ऐसे केंद्र हो,
0: कैसे काम मतलब उनको रोकने के लिए और नशे से दूर करने के लिए।
1: बिल्कुल, ऐसे कुछ कुछ अभियान चल रहे हैं लेकिन उस अभियान को और मजबूती और सक्रिय होने की जरूरत है। और खासकर जमीनी स्तर पे जो सुविधाएं मिलना चाहिए, जैसे मैं ऐसे केंद्रों की बात कर रही हूँ जहां पर बच्चों को निःशुल्क एक पुनर्वास जो होना चाहिए, एक प्रॉपर काउंसलिंग मिलना चाहिए, एक जगह होनी चाहिए जहाँ से बच्चा निकल पाए, तो वो एक सुविधाओं का गैप नज़र आता है। दूसरा जो प्रचार प्रसार होना चाहिए योजनाओं का, जानकारियों का, वो एक मुझे कम नज़र में आता है। तो इस तरीके की चीज़ें और होना चाहिए और लोगों तक उसका उपलब्धता होनी चाहिए। तो यदि हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, और मुझे लगता है कि परिवार में भी हमें ध्यान देना चाहिए कि कई बार परिवार का जो माहौल होता है वो बहुत असर करता है, और भी जागरूक होने की जरूरत है। और कई बार मैंने देखा है लोग जागरूक तो होते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं। जैसे हम देखें कई बार जब नशे के पदार्थ मिलते तो उसमें लिखा होता है कि इसमें कैंसर ये है, हम उपयोग करते हम जानते हैं लेकिन हम उसमें एक्शन नहीं लेते। तो उस पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, यदि आप जागरूक हैं अवेयर हैं तो, लेकिन उसके लिए कार्यवाही करना बहुत ज़रूरी है।
0: आप जब फील्ड में काम करती हैं, इस पर लंबे समय से काम कर भी रही हैं, तो आपको किस तरह की समस्याएं फेस करने में आती हैं? इतना आसान तो है नहीं कि भाई कोई आपको पता चला या मिले आप उस व्यक्ति से कि ये नशा करता है, तो उसके बाद यूं ही तो हो नहीं जाता हो कि उनसे नशा, आपको भी बहुत सारी समस्याओं को फेस करना होता होगा, तो वो किस तरह की होती है?
1: कई बार जब हम समुदाय में इंटर करते हैं तो बहुत सारे जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं जो मैं देखती हूँ कि नशे कारण बहुत ज़्यादा अनसेफ हो जाते हैं, असुरक्षित हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ खुला स्पेस या खेलने का मैदान है वहाँ पर लोग ग्रुप में बैठ के नशा करते हैं या उस तरीके की गतिविधियाँ करती हैं, तो एक जो असुरक्षित वाला माहौल है वो मुझे वहाँ नज़र में आता है। दूसरा जो चुनौती कई बार रहता है कि यदि व्यक्ति नशे में है तो हिंसक होता है, वो चीज़ों को उस समय समझ नहीं पाता है, तो वो हिंसक जैसा माहौल जो है वहाँ पे देखने को मिलता है। और दूसरा जो है, जो खासतौर पर जो महिलाओं के साथ में जो हिंसा है, लड़कियों के साथ में जो छेड़खानी वाले मसले हैं, वो बहुत समुदाय में नज़र आते हैं। जैसे घरेलू हिंसा का एक बड़ा कारण यही है, नशा है। और कई बार जो रिपोर्टिंग भी होना चाहिए वो कई बार नशे के कारण वो रिपोर्टिंग भी नहीं हो पाती, पाती है कि व्यक्ति नशे में शायद गलती से हो गया होगा, तो एक जो रिपोर्टिंग है वो भी नहीं हो पाती है। और कई बार व्यक्ति क्योंकि वो नशे में है तो इस चीज़ को वो टाल देते हैं कि नशे में इसलिए शायद उनसे गलती हो गई होगी। तो इस तरीके की समस्याएं जो है हमें वहाँ पर नज़र में आती है। मानसिक स्वास्थ्य एक स्ट्रेस वाला बहुत है, क्योंकि यदि आपके परिवार में कोई नशा कर रहा है, माहौल वैसा है, तो आप तनावित महसूस करेंगे और आपका मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य पर उसका असर पड़ेगा ही। तो ऐसे तमाम समस्याएं जो हैं वो नज़र में। कई बार मैं देखती हूँ कि बहुत सारे जो बच्चे वो स्कूल से बाहर ड्रॉप आउट भी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि घर में यदि कोई बीमार है या नशे के लिप्त है तो वहाँ पर जिम्मेदारी फिर जो है बच्चों को निभानी पड़ती है।
0: सॉल्यूशन जो ये समस्याएं आपको लगती हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या इनके सॉल्यूशंस हैं ताकि ये समस्याएं लगभग कम और ख़त्म हों और इस पर काम और बेहतर करा जाए? जैसे आपने समस्याएं गिनाई, तो इन ये समस्याएं ना आए आप, इसके लिए कोई आपको लगता है क्या तरीके हैं?
1: मुझे लगता है एक तो हमें अवेयरनेस पे, जागरूकता पे काम करना चाहिए, जो मुझे लगता है, खासतौर पे जहाँ पर अवैध तरीके से जो नशे के पदार्थ उपलब्ध हैं उस पे कार्रवाई होना चाहिए और सख्त कार्रवाई होना चाहिए। तो ज़मीनी स्तर पे हमें उन जगहों को चयनित करना और उस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और ख़ासतौर पे जो लोग नशे में लिप्त हैं उनको बाहर निकालने के लिए हम जो प्रक्रियाएं चला सकते हैं वो प्रक्रियाओं की सुविधाएं हमें उपलब्ध करानी चाहिए, चाहे वो एक परामर्श देना हो, चाहे वो उनके पुनर्वास के लिए नशा मुक्ति केंद्रों की ज़रूरत हो। ऐसे कुछ अभियान जो मैंने देखा है, जैसे पुलिस विभाग का अभियान, तो उन्होंने बहुत से सामाजिक संस्थाओं के साथ में, युवाओं के साथ मिलकर, कॉलेजेस के साथ में मिलकर चलाया, जो बहुत प्रभावी रहा है। तो यदि हम सब मिलकर उसमें काम करेंगे तो एक बहुत बेहतर रिजल्ट हम उसमें देख पाएंगे। तो सब साथ में मिलकर काम करें, ये बहुत ज़रूरी है।
0: शुरू में भी एक एग्जाम्पल दिया था, कोई बच्चा था 10 साल की उम्र से ही नशे में आ गया था, कोई और दूसरा भी हो सकता है, 12 साल की, एक उनकी किसी उम्र हो सकती है। तो जो भी होते हैं जब ये नशे से मुक्त हो जाते हैं, तो इनको दोबारा सामान्य जीवन में लाने के लिए आप क्या प्रयास करते हैं, क्या होता है कि कैसे क्या आ पाते हैं और आते हैं तो फिर वो किस तरह से काम कर रहे होते हैं? आपने ऐसे लोग एग्जाम्पल होंगे आपके सामने,
1: काफ़ी सारे युवा साथी हम जुड़े हैं। तो कई बार होता है कि जो प्रीवियस लाइफ है उनकी, तो कई बार लोग जज भी करना शुरू कर देते हैं। तो जब वो उस दूर लाइफ से बाहर आता है, लेकिन लोग कमेंट्स उसको कई बार करते हैं, तो एक स्टिग्मा भी होता है कई बार, तो वो एक चुनौती होता है। तो वो माहौल को निर्माण करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये एक चुनौती है उन लोगों के लिए। तो इस पे हम लोग जो काम करते हैं, खासतौर पर हम लोग सिर्फ उस परिवार के साथ साथ उस समुदाय में भी काम करते हैं ताकि एक ऐसा वातावरण मिल पाए ताकि व्यक्ति सहज महसूस करे वहाँ पर। तो लोगों को हम जागरूक करते हैं कि यदि व्यक्ति बाहर आया है उस चीज़ से, तो हम कैसे मिलकर उन्हें सहयोग कर सकते हैं। तो कम्युनिटी में हमारे जो संवाद होते हैं, परिवारों के साथ में संवाद होते हैं, कई बार हम लोग ऐसी गतिविधियों का भी, समावेशी गतिविधियों का भी आयोजन करते हैं कि हर व्यक्ति उसमें जुड़ पाए। तो इस तरीके के मुद्दों पर हम बात करते हैं और ख़ासतौर पर लोगों की भूमिका उसमें करते हैं कि आपके समुदाय में रहने वाला कोई व्यक्ति है, वो आपका परिवार का हिस्सा है, वो आपका हिस्सा है, तो हम उस व्यक्ति को बेहतर रहने के लिए कैसे कर सकते हैं। तो समुदाय के साथ में हम लोग जब काम करते हैं तो ऐसा माहौल देने की प्रयास करते हैं, और कई बार देखा भी है जो हमारी गतिविधियां होती हैं, जो कार्यक्रम करते हैं, उस व्यक्ति को ऐसा महसूस कराते हैं कि वो व्यक्ति वहाँ सहज महसूस करे और जो पूर्व में जो उसके साथ में घटनाएं हुई हैं, जो हुआ है, वो सामने।
0: एक चीज़ तो चलते चलते समय की भी एक सीमा होती है। एक प्रश्न आएगा, अभी आपने शुरुआत कही थी कि स्लम एरियाज में जाना पड़ता है आपको, हाँ ये सत्यता है और आप इस पे काम करती, तो ये मोहर इस बात की कि स्लम एरियाज में इस तरह के केसेस ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन क्या लगता है आपको जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, संभ्रांत घरों के हैं, जिनके पास सारी सुविधाएं, वो भी नशे में लिप्त हो रहे हैं?
1: बिल्कुल है।
0: इस पर एक बार आप बताइए, उसमें कितने केसेस आपने देखे, या मतलब उसको ध्यान में रखते हुए बताइए।
1: बिल्कुल, कोविड के समय हम लोगों ने हमारा एक ब्रोशर तैयार किया था काउंसलिंग के लिए, तो वहां पर हमारे पास कई बार केसेस आए और वो ऐसे हाई प्रोफाइली सोसाइटी के ही लोगों के आए थे। तो क्योंकि स्लम एरिया में हमारा एक्सेस है, वहाँ लोग दिखते हैं, जुड़ते हैं, तो वहाँ पता चल जाता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो आइसोलेटेड हैं, जो रहते हैं, वहाँ पर भी समस्या है। कई बार जब मैं बाहर निकलती हूँ तो देखती हूँ जो बच्चे पीजीज में यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आते हैं, या जो तमाम दुकानें हमें नजर आती है, वहाँ बहुत बड़ा स्टूडेंट क्राउड हमें नजर आता है। तो हर वर्ग का व्यक्ति इससे परेशान है और जुड़ा हुआ है।
0: इनका क्या प्रमुख कारण होता है? ये तो सब तरह से सुविधाएं इनके पास, टारगेटेड हैं, अच्छा खासा माहौल है, ये नशे की लत में क्यों पड़ जाते हैं?
1: माहौल का मतलब सिर्फ अच्छी शिक्षा देना नहीं होता है। माहौल जो है कि आपका बच्चा जो है वो किन गतिविधियों में जा रहा है, उसे क्या समस्या है, वो एक स्पेस वहाँ पर नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि जो पेरेंट्स का भी जो डायलॉग है वो बच्चों के साथ निरंतर नहीं होता है, और कई बार बच्चा जो बाहर गतिविधि करता है उसका भी ऑब्जर्वेशन कई बार नहीं रहता है, क्योंकि वो वहाँ पर कई बार बच्चे बाहर रहते हैं तो उनकी मॉनिटरिंग उस तरीके से नहीं हो पाती है, या फिर वो दोस्तों के साथ में जुड़ के जो चीज़ें कर रहा है। और कई बार जो है, जो हाई प्रोफाइल सोसाइटी में लोगों को जो मुझे जो देखा है कई बार, उनके लिए एक पैटर्न है अपनी लाइफ को इन्जॉय करने का, तो वो इन्जॉयमेंट के जो साधन के रूप में वो को देखते हैं, तो मुझे लगता है कि उन पे भी और बात करने की जरूरत है, क्योंकि हम उन्हें बना देते हैं कि आप सुविधाएं आपको हाँ। जरूरत नहीं है परेशानी, तो वो उसी माहौल में डरते हैं कि हमें शायद किसी से गाइडेंस की आवश्यकता नहीं, या फिर हम जो कर रहे हैं वो सब ओके है।
0: मतलब
1: तो,
0: इस बात से निकल के ये आता है कि एक जो केवल हम गरीबी या स्लम में रहने वाले बच्चों पे केवल आरोप नहीं बढ़ रहे हैं, हम तो वास्तविकता पे बात कर रहे हैं कि हमें वहां भी वो बच्चे मिलते हैं, और जो नशे का उपयोग है वो केवल गरीबी ही नहीं, वो तो एक टारगेटेड है ही, लेकिन एक समाज जो पूरी तरह से संभ्रांत है, उसके पास सारी सुविधाएं, वो भी नशा कर रही है, उसके नशे करने के अपने अलग कारण है, है ना, ये बात हम कह सकते हैं। निहारिका जी, आपका तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए, और एक बहुत ही अच्छे कार्य में आप लगी हैं, इसके लिए हम आपका पुनः धन्यवाद करेंगे हमारी और हमारे रेडियो की टीम की ओर से। प्रयास बहुत ज़रूरी है कि इस नशे को ख़त्म करा जाए ताकि देश एक अच्छी दिशा में बढ़े।
1: बिल्कुल,
0: तो आपका ही जो आप साधुवाद हम आपका देंगे जो आप कार्य कर रहे हैं। तो ये था कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, जिस पे हमने आज बात करी नशीली दवाओं का दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ विषय पर। और ये जो कार्यक्रम था इसका मार्गदर्शन हमें दिया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना है अदिति गौड़ जी की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, और समन्वय सहयोग है सतीश बाथम का, और मैं था आपके साथ आपका ध्वनि मित्र रत्नेश सोनी। निहारिका जी, आपका एक बार पुनः धन्यवाद।
1: धन्यवाद, नमस्कार।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत, गीतकार पंडित भवानी प्रसाद मिश्र

यातायात के नियम आपकी हिफाजत के लिए हैं। गाड़ी चलाते समय अनावश्यक ओवरटेक ना करें। गाड़ी की गति पर नियंत्रण रखें। तेज स्पीड से गाड़ी ना चलाएं। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के 150वें जन्मशती वर्ष के अवसर पर उनके आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: आपने अब तक जाना कि स्वामी जी मध्य प्रदेश होते हुए एक बार फिर महाराष्ट्र गए थे। वहां कोल्हापुर और बेलगांव में ठहरे थे। उन्हीं दिनों ट्रेन में उनकी मुलाकात लोकमान्य तिलक जी से हुई थी। उन लोगों की दोस्ती जीवन पर्यंत बरकरार रही। बेलगांव में श्री भाटे जी के अलावा वे श्री हरिपद मित्रा जी के घर में भी 9 दिनों तक ठहरे थे। उन दिनों की घटनाओं का विवरण हमें मित्र महाशय के संस्मरणों में मिलता है। वे वन विभाग के सब डिविजनल ऑफिसर थे। उन्होंने लिखा था,
1: बेलगांव 18 अक्टूबर 1892 ईस्वी मंगलवार। संध्या हुए लगभग 2 घंटे हुए हैं। एक प्रसन्न मुख युवा सन्यासी मेरे एक परिचित महाराष्ट्रीयन वकील के साथ मेरे घर पर पधारे हैं। मेरे वकील मित्र ने कहा, ये एक विद्वान बंगाली सन्यासी हैं, आपसे मिलने आए हैं। घूमकर देखा, प्रशांत मूर्ति, नेत्रों से मानो विद्युत प्रकाश निकल रहा हो। दाढ़ी मूछ मुड़ी हुई, शरीर पर गेरुआ अंगरखा, पैर में मरहटी चप्पल, सिर पर गेरुआ पगड़ी। सन्यासी के उस भव्य मूर्ति का स्मरण होने पर अभी भी जैसे अपनी आंखों के सामने देखता हूं। कुछ देर बाद प्रणाम कर पूछा, महाशय क्या आप तंबाकू का सेवन करते हैं? मेरे पास कोई और दूसरा हुक्का नहीं है। आपको यदि मेरे हुक्के में तंबाकू पीने में कोई आपत्ति न हो तो तंबाकू तैयार करने को कहूं। उन्होंने कहा,
2: तंबाकू चुरट जब जो पाता हूं तब उसी का सेवन करता हूं, और आपके हुक्के से पीने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
1: फिर मैंने उन्हें अपने यहां ठहरने के लिए कहा और उनसे पूछा, आपका सामान अपने यहां मंगवा लूं?
2: मैं वकील बाबू के यहां अच्छी तरह से हूं, और आपको बंगाली जानकर यदि उनके यहां से मैं चला हूं तो उनके मन में दुख होगा, क्योंकि वे सभी लोग मुझ पर बड़ी भक्ति और स्नेह करते हैं। अतएव ठहरने ठहराने के विषय में पीछे विचार किया जाएगा।
1: उस रात कोई अधिक बातचीत न हो सकी, किंतु उन्होंने जो 2-4 बातें कही उसी से अच्छी तरह समझ गया कि वो मेरी अपेक्षा 1000 गुना अधिक विद्वान है और बुद्धिमान है। इच्छा मात्र से ही वो बहुत धन उपार्जित कर सकते हैं, तथापि रुपया पैसा छूते तक नहीं, और सुखी होने के कोई भी साधन के न होते हुए भी मेरी अपेक्षा 1000 गुना सुखी हैं। ज्ञात हुआ उन्हें किसी वस्तु का अभाव नहीं है, क्योंकि उन्हें स्वार्थ सिद्धि की इच्छा नहीं है। मेरे यहां नहीं रहेंगे ये जानकर मैंने फिर कहा, यदि चाय पीने में कोई आपत्ति न हो तो कल प्रातःकाल मेरे साथ चाय पीजिए, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। उन्होंने आना स्वीकार किया और वकील बाबू के साथ उनके घर लौट गए। रात में उनके विषय में बड़ी देर तक सोचता रहा। मन में आया, ऐसा निष्प्रह, चीर सुखी, सदा संतुष्ट, प्रफुल्ल मुख पुरुष तो कभी देखा नहीं। दूसरे दिन 19 अक्टूबर 1892 ईस्वी की बात है, प्रातःकाल 6 बजे उठकर स्वामी जी की प्रतीक्षा करने लगा। देखते देखते 8 बज गए, किंतु स्वामी जी नहीं दिखाई पड़े। अंत में अधीर होकर मैं अपने एक मित्र के साथ स्वामी जी के वास स्थान की ओर चल पड़ा। वहां जाकर देखता हूं कि एक महासभा जुटी हुई है। स्वामी जी बैठे हुए हैं और उनके समीप अनेक प्रतिष्ठित वकील तथा विद्वान लोग बैठे हैं। उनके साथ बातचीत हो रही है। स्वामी जी किसी को अंग्रेजी में, किसी को संस्कृत में और किसी को हिंदी में उनके प्रश्नों का उत्तर तुरंत दे रहे हैं। कोई कोई हक्सले के दर्शन को प्रमाणिक मानकर उसके आधार पर स्वामी जी के साथ तर्क करने को उद्यत है, किंतु वे किसी को हंसी में, किसी को गंभीर भाव से यथोचित उत्तर देकर सभी को चुप करा रहे हैं। मैंने जाकर प्रणाम किया और एक और बैठ गया और अवाक सुनने लगा। सोचने लगा, ये मनुष्य है या देवता? एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण वकील ने प्रश्न किया, स्वामी जी संध्या पूजा आदि के मंत्र संस्कृत में हैं, हम लोग उन्हें समझ नहीं पाते, इन सब मंत्रोच्चारण का क्या कुछ फल है?
2: अवश्य उत्तम फल है। इन संस्कृत मंत्रों का अर्थ तो इच्छा रहने से सहज ही समझ सकते हो, फिर भी समझने की चेष्टा नहीं करते, इसमें भला किसका दोष? और यद्यपि तुम मंत्रों का अर्थ नहीं समझते, तो भी जब संध्या वंदन आदि करने बैठते हो तो उस समय क्या सोचते हो? धर्म कर्म कर रहा हूं ऐसा सोचते हो, या ये सोचते हो कि कोई पाप कर रहा हूं? यदि धर्म कर्म समझकर संध्या वंदन करने के लिए बैठते हो तो उत्तम फल पाने के लिए वही पर्याप्त है।
1: इसी समय दूसरे एक व्यक्ति संस्कृत में बोले, धर्म के संबंध में मलिच्छ भाषा द्वारा चर्चा करना उचित नहीं है, अमुक पुराण में इसका उल्लेख है। स्वामी जी ने उत्तर दिया,
2: किसी भी भाषा के द्वारा धर्म चर्चा की जा सकती है, हाई कोर्ट के फैसले को छोटी अदालत नहीं काट सकती।
1: और इस प्रकार 9 बज गए। जिन लोगों को ऑफिस या कोर्ट जाना था वे सब चले गए, कोई कोई उस समय भी बैठे रहे। स्वामी जी की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ते ही उन्हें चाय पीने के लिए जाने की बात याद आ गई। वे बोले, बच्चा बहुतों का मन तो दुखा कर नहीं जा सकता था ना, कुछ बुरा मत मानना। बाद में मैंने उनसे अपने निवास स्थान पर रहने के लिए विशेष अनुरोध किया। इस पर वे बोले कि मैं जिनका अतिथि हूँ, यदि उन्हें मना लो तो मैं तुम्हारे पास ही रहने को प्रस्तुत हूँ। फिर वकील महाशय को समझा बुझा कर स्वामी जी को साथ ले अपने स्थान पर आया। उनके साथ एक कमंडल और गेरुए वस्त्र में लपेटी हुई एक पुस्तक, बस इतना ही सामान था। स्वामी जी उस समय फ्रांस देश के संगीत के संबंध में एक पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे। घर पर आकर लगभग 10 बजे चाय पानी हुआ, उसके बाद ही स्वामी जी ने एक गिलास ठंडा जल भी मंगवा कर पिया। ये देखकर कि मुझे अपने मन की कठिन समस्याओं के बारे में पूछने का साहस नहीं हो रहा है, तो उन्होंने स्वयं ही मुझसे दो एक बातें की और उसी से उन्होंने मेरी विद्या बुद्धि को नाप लिया।
3: इस तरह हरिपद बाबू के घर पर 20 अक्टूबर तक 2 दिन बीत गए। इस सुयोग से हरिपद बाबू के मन में दीर्घकाल से धर्म और दर्शन के संबंध में जितने संदेह थे, स्वामी जी से उन्होंने एक एक कर सबको दूर करने का अनुरोध किया और स्वामी जी ने भी आनंद पूर्वक वैसा ही किया। इसके अलावा नगर के अनेक पढ़े लिखे लोग प्रतिदिन वहाँ एकत्रित होते और अनेक प्रसंग चलते। स्वामी जी भी सभी विषयों में यथायोग्य समाधान का उपाय बताते। शहर के 5वें दिन उन्होंने कहा,
2: सन्यासियों को नगर में 3 दिन और गांव में 1 दिन से अधिक ठहरना उचित नहीं, मैं अब जल्दी चला जाना चाहता हूँ। एक स्थान पर अधिक दिन रहने पर माया ममता बढ़ जाती है, हम लोगों ने घर और आत्मीय जनों का परित्याग किया है, अतः जिन बातों से उस प्रकार की माया में मुग्ध होने की संभावना है उनसे दूर रहना ही हम लोगों के लिए अच्छा है।
3: अंत में मित्र महाशय का आग्रह सुनकर वे और भी 2-4 दिन रुकने के लिए सहमत हो गए। स्वामी जी के याददाश्त के बारे में हरिपद बाबू ने लिखा है कि एक बार एक अंग्रेजी किताब से स्वामी जी 2-3 पन्ने कंठस्थ बोल गए। मित्र बाबू आश्चर्यचकित हो गए, सोचा सन्यासी जी ने इस किताब को क्यों रट लिया है। उन्होंने जवाब दिया,
2: रटा कहाँ है, बस 2 बार पढ़ा है, 1 बार स्कूल में पढ़ते समय और 2 बार 5-6 महीने पहले।
0: और एक दिन दोपहर में बिछौने पर लेटे हुए एक पुस्तक पढ़ते पढ़ते स्वामी जी जोरों से हंस पड़े। एकाएक ऐसा होने का कारण जानने के लिए हरिपद बाबू ने उस कमरे के दरवाजे के पास आकर देखा, स्वामी जी एकाग्रचित्त होकर पढ़ रहे हैं, किसी दूसरी ओर दृष्टि नहीं है। इस तरह प्रायः 15 मिनट बीत जाने पर उन्होंने हरिपद बाबू को देखकर अंदर आने के लिए कहा और हरिपद बाबू इतनी देर से खड़े हैं सुनकर कहा,
2: जब जो काम करना हो तब उसे पूरी लगन और शक्ति के साथ करना चाहिए। गाजीपुरा के पवहारी बाबा ध्यान जप पूजा पाठ जिस प्रकार एक चित्त होकर करते थे, उसी प्रकार वे अपने पीतल के लोटे को भी एक चित्त होकर मांजते थे। ऐसा मांजते थे कि सोने समान चमकने लगता था।
0: स्वामी जी उन दिनों साधारण व्यक्ति की तरह ही हास परिहास गपशप करते पर उसी के बहाने अनेक जटिल समस्याओं का समाधान भी कर देते थे। इसके साथ ही उनकी दृष्टि भी मर्म भेदी थी, प्रत्येक व्यक्ति के मन में अंदर तक देख लेते। एक समय एक धनी का पुत्र स्वामी जी के पास बारंबार आता था और साधु होने की इच्छा प्रकट करता था। उत्सुक होकर हरिपद बाबू ने जानना चाहा, स्वामी जी इस लड़के को साधु बनने के लिए उपदेश देंगे या नहीं। किंतु स्वामी जी ने कहा,
2: यह केवल एमए परीक्षा के भय से साधु होना चाहता है। मैंने उससे कहा है, एमए पास कर चुकने के बाद साधु होने के लिए आना, साधु होने की अपेक्षा एमए पास करना कहीं अधिक सरल है।
3: हरिपद बाबू की पत्नी किसी गुरु से मंत्र दीक्षा लेना चाहती थी। उस समय हरिपद बाबू ने अपनी पत्नी से कहा था, ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाना जिसकी भक्ति मैं भी कर सकूं। ऐसे स्वामी जी को अपने निकट पाकर उन्होंने सहधर्मिणी से पूछा, यदि ये सन्यासी तुम्हारे गुरु हो तो तुम उनकी शिष्या हो सकती हो। स्वामी जी से ये अनुरोध करने पर उन्होंने पहले तो कहा कि गृहस्थ के लिए गृहस्थ गुरु ही ठीक है, गुरु होना बहुत कठिन कार्य है, शिक्षा का समस्त भार ग्रहण करना पड़ता है। दीक्षा के पहले गुरु के साथ शिष्य का कम से कम 3 बार भेंट होना आवश्यक है, इत्यादि कहकर मित्र दंपति को टालना चाहा, किंतु उन लोगों के तीव्र अनुरोध की उपेक्षा नहीं कर पाए। अंत में 25 अक्टूबर को उन दोनों ने स्वामी जी से दीक्षा ली।
0: एक दिन स्वामी जी ने कहा, कुछ दिन तुम्हारे साथ जंगल में तंबू डालकर रहने की मेरी इच्छा है, किंतु शिकागो में धर्म महासभा होगी, यदि वहां जाने की सुविधा हुई तो वहीं जाऊंगा। हरिपद बाबू ने तुरंत चंदा इकट्ठा करने का प्रस्ताव किया, किंतु स्वामी जी ने कुछ सोचकर उसे स्वीकार नहीं किया। हरिपद बाबू उस समय स्वास्थ्य के लिए औषधियों का अत्यधिक व्यवहार करते थे। इस बात को जानकर स्वामी जी ने एक दिन कहा,
2: जब देखो कि किसी रोग ने अत्यधिक प्रबल होकर धराशायी कर दिया है, उठने की शक्ति नहीं रही, तभी औषधि का सेवन करना, अन्यथा नहीं। मानसिक दुर्बलता आदि रोगों में से तो 90% काल्पनिक हैं। जितने दिन जियो आनंद से रहो, पर जिस आनंद से एक बार कष्ट हो चुका है उसके पीछे फिर और कभी न दौड़ना। तुम्हारे हमारे समान एक व्यक्ति के मर जाने से पृथ्वी अपने केंद्र से दूर तो न हट जाएगी और न जगत का किसी तरह से कोई नुकसान ही होगा। आप भले हो तो जग भला, ये उक्ति कितनी सत्य है कोई नहीं समझता। आज से किसी में बुराई देखने की चेष्टा करना एकदम छोड़ दो। देखना जितना ऐसा कर सकोगे उतना ही उनके विचार और उनके कार्य बदल जाएंगे।
0: दवा और लोक व्यवहार विषयक दोनों उपदेशों को मान लेने पर हरिपद बाबू का बड़ा कल्याण हुआ था। उन्होंने स्वयं लिखा था, बस उसी दिन से औषधि सेवन का मेरा पागलपन दूर हो गया और दूसरों के दोष ढूंढने की चेष्टा को त्याग देने के फलस्वरूप क्रमशः मेरे जीवन का एक नया भाग उजागर हो गया।
3: और एक दिन की बात है, कलकत्ते में एक व्यक्ति भूख से मर गया। ये समाचार अखबार में पढ़कर स्वामी जी इतने दुखी हुए थे कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। वे बारंबार कहते रहे, अब तो देश गया। किसी के द्वारा कारण पूछे जाने पर वे बोले,
2: देखते नहीं दूसरे देशों में गरीबों की सहायता के लिए पुअर हाउस, वर्क हाउस, चैरिटी फंड आदि संस्थाओं के रहने पर भी प्रतिवर्ष सैकड़ों मनुष्य अनाहार से मर जाते हैं, पर हमारे देश में एक मुट्ठी भिक्षा की प्रथा होने से अनाहार के कारण लोगों का मरना कभी सुना नहीं गया। मैंने आज पहली बार अखबार में ये समाचार पढ़ा कि अकाल न होते हुए भी कलकत्ता जैसे शहर में अन्न के बिना मनुष्य मरे।
0: हरिपद बाबू द्वारा पश्चिमी सभ्यता के अनुसार भी भिक्षा देने की प्रथा बंद करने के पक्ष में विचार प्रकट करने पर स्वामी जी अत्यंत उदार दृष्टि के साथ बोले,
2: दोगे तो केवल 2-1 पैसा, उसके लिए वो 1 पैसा वो किसमें खर्च करेगा? ठीक खर्च होगा या गलत होगा, ये सब बातें लेकर माथा पच्ची करने की क्या आवश्यकता। और यदि सचमुच ही वो उस पैसे को गांजे में उड़ा देता हो तो भी उसे देने से समाज का लाभ ही है, नुकसान नहीं। क्योंकि तुम्हारे समान लोग यदि दया करके उसे कुछ ना दें तो वो तुम लोगों के पास से चोरी करके लेगा।
3: वस्तुतः स्वामी जी के जीवन में ये एक विशेष गुण दिखाई पड़ता है, वे कभी भी पश्चिमी जगत की सभ्यता के मोह से मोहित होकर अपने देश की सभी प्रथाओं की निंदा नहीं करते थे, बल्कि प्रत्येक आचार विचार का उद्देश्य और अच्छाई बुराई सब देखकर तभी किसी निश्चय पर आते। परंतु बाल विवाह के विरुद्ध वे अत्यंत स्पष्ट विचार रखते थे और बेलगांव में उन्होंने इसे व्यक्त भी किया था। हरिपद बाबू ने लिखा है,
1: मैंने पहले से ही स्वामी जी को बाल विवाह के बिल्कुल विरुद्ध देखा है। वे सदैव सभी को, विशेषतः युवकों को, हिम्मत बांधकर समाज के इस कलंक के विरोध में खड़े होने के लिए उपदेश देते थे। स्वदेश के प्रति इस प्रकार अनुराग भी मैंने और किसी में नहीं देखा। स्वामी जी के पाश्चात्य देशों से लौटने के बाद जिन लोगों ने प्रथम बार उनके दर्शन किए थे, वे भी नहीं जानते कि वहां जाने के पूर्व वे संन्यास आश्रम के कठोर नियमों का पालन करते हुए पैसों को स्पर्श तक नहीं करते हुए कितने दिनों तक भारत के समस्त प्रांतों में भ्रमण करते रहे। किसी के एक बार ऐसा कहने पर कि उनके समान शक्तिमान पुरुष के लिए नियम आदि का इतना बंधन आवश्यक नहीं है, इस पर वे बोले,
2: देखो मन बड़ा पागल है, बड़ा उन्मत्त है, कभी भी शांत नहीं रहता है। थोड़ा मौका पाते ही अपने रास्ते खींच ले जाता है, इसलिए सभी को निर्धारित नियमों के भीतर रहना आवश्यक है। सन्यासी को भी मन पर काबू रखने के लिए नियम के अनुसार चलना पड़ता है, मन पर विश्वास करके कभी निश्चित न रहना।
3: स्वामी जी से पहले भी अनेक देशी राजा महाराजाओं का परिचय हुआ था, किसी किसी ने तो दीक्षा भी ग्रहण की थी। इतने राजा महाराजाओं से एक सन्यासी इतनी घनिष्ठता क्यों रखे, इस विषय में एक दिन स्वामी जी से किसी ने पूछा और उन्होंने कहा,
2: निर्धन प्रजा की इच्छा रहने पर भी सत्कार्य करने की क्षमता उसके पास कहाँ, किंतु राजा के हाथ में प्रजाओं के मंगल विधान की क्षमता पहले से ही है, केवल उसे करने की इच्छा भर नहीं है। वो इच्छा यदि उसके भीतर किसी प्रकार जागृत कर सकूं, तो ऐसा होने पर उसके साथ साथ उसके अधीन सारी प्रजा की अवस्था बदल सकती है, और इस प्रकार जगत का कितना अधिक कल्याण हो सकता है।
3: अर्थात वे सन्यासी हैं, किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए धनी और शक्तिमान लोगों से आत्मीयता स्थापित नहीं करते थे। दरिद्रों के लिए उनका प्राण रोया करता था और उन लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने शासक वर्ग के हृदय में जनहित का बीज बोना चाहा था। कालांतर में स्वामी जी ने ये पथ छोड़कर लोक शिक्षा और जन जागरण के मार्ग को ही ठीक समझा था और भारतीय विख्यात नेताओं में उन्होंने ही इसके प्रयोजन को सर्वप्रथम स्वीकार उद्घोष किया था। हरिपद बाबू कहते थे,
1: स्वदेश का कल्याण साधन उनके जीवन का अन्यतम व्रत था, किंतु उन दिनों संन्यास और स्वदेश प्रेम में तालमेल ढूंढ पाना बहुत सहज नहीं था। अतएव स्वामी जी की भावधारा को एकाएक ग्रहण करने में अनेक लोगों को बाधा होती और प्रत्यक्ष रूप से वे लोग उस विचारधारा की समालोचना भी करने लगते। स्वामी जी का स्वदेश के प्रति अत्यंत अनुराग था, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ। एक दिन इस संबंध में बातचीत के प्रसंग में उनसे कहा गया कि संसारी लोगों का अपने अपने देश के प्रति अनुराग रखना कर्तव्य है, परंतु सन्यासियों को अपने देश की माया छोड़कर सभी देशों पर समदृष्टि रखकर सभी देशों की कल्याण चिंता हृदय में रखना अच्छा है। इसके उत्तर में स्वामी जी ने जो ज्वलंत बातें कही, उनको जीवन में कभी नहीं भूल सकता। वे बोले,
2: जो अपनी माँ को खाना नहीं देता, वो दूसरे की माँ का क्या पालन करेगा।
1: वे स्वीकार करते थे कि हमारे प्रचलित धर्म आचार व्यवहार में, सामाजिक प्रथा में अनेक दोष हैं। वे कहते थे,
2: उन सभी का संशोधन करने की चेष्टा करना हम लोगों का मुख्य कर्तव्य है, किंतु उसके लिए संवाद पत्रों में अंग्रेजों के सामने उन दोषों को घोषित करने की क्या आवश्यकता है। घर की गलतियों को जो बाहर दिखलाता हो उसके समान गधा और कौन है।
0: हरिपद बाबू स्वयं अपने आप गीता पढ़ा करते किंतु उसका अर्थ समझ नहीं कर पाते थे। अतएव ऐसे पढ़ने की कोई सार्थकता नहीं मानकर उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया। किंतु जब स्वामी जी उस ग्रंथ से विशेष अंश पढ़कर उसकी व्याख्या करने लगे तब वे समझ सके कि गीता कैसा अपूर्व ग्रंथ है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से उसका कैसा घनिष्ठ संबंध जानकर उसके पुनः अध्ययन में अपना मन लगाया और बहुत लाभान्वित हुए। परंतु स्वामी जी ने केवल गीता की गंभीर बातों की व्याख्या ही नहीं की, उन्होंने टॉमस कार्लाइल के ग्रंथों और जूलियस बर्न के उपन्यासों के साहित्यिक सौंदर्य और चिंतन के विस्तार को भी बराबरी से समझाया था। हरिपद बाबू के घर में देखते देखते 8 दिन बीत गए। 9वें दिन यानी 27 अक्टूबर को स्वामी जी ने कहा,
2: और नहीं ठहरूंगा, रामेश्वर जाने के विचार से बहुत दिनों से इस ओर निकला हूं, पर यदि इसी प्रकार चला तो इस जन्म में शायद रामेश्वर पहुंचना ना हो सकेगा।
0: हरिपद बाबू ने निश्चय ही और रुकने का अनुरोध किया किंतु वे उन्हें रोक नहीं सके। ये निश्चित हुआ कि स्वामी जी मेल ट्रेन से मर्मागोवा की यात्रा करेंगे। हरिपद बाबू ने टिकट खरीद कर उन्हें गाड़ी में बैठा दिया। इसके बाद साष्टांग प्रणाम कर कहा,
1: स्वामी जी, मैंने जीवन में आज तक किसी को भी आंतरिक भक्ति के साथ प्रणाम नहीं किया। आज आपको प्रणाम कर मैं कृतार्थ हो गया।
3: पुर्तगालियों द्वारा अधिकृत गोवा में स्वामी जी किस किस जगह पर गए थे और क्या क्या देखा था ये ज्ञात नहीं है, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि देखने योग्य सब कुछ उन्होंने देखा था। मडगांव से हरिपद बाबू को लिखे गए एक पत्र में स्वामी जी ने कहा है,
2: अभी अभी तुम्हारा एक पत्र मिला, मैं यहाँ सकुशल पहुँच गया। मैं पंजिम तथा उसके आसपास के कुछ गांव एवं वहाँ के मंदिरों को देखने गया था, आज ही लौटा हूँ। गोकर्ण, महाबलेश्वर तथा अन्य स्थानों के दर्शन की इच्छा का मैंने परित्याग नहीं किया है। कल सुबह की गाड़ी से मैं धारवाड़ जा रहा हूं। यहां के अधिकतर ईसाई साक्षर हैं, अन्य लोग अधिकतर अशिक्षित हैं।
0: स्वामी जी गोवा में श्री सुब्राय नायक नामक एक व्यक्ति के नाम एक परिचय पत्र लेकर आए और उन्हीं के घर पर 3 दिन ठहरे। नायक संस्कृत के पंडित और आयुर्वेद शास्त्र के ज्ञाता थे। परिवार के गृह देवता श्री दामोदर जी के मंदिर से लगे एक कमरे में स्वामी जी वास करते थे। वो कमरा आज भी उसी तरह सुरक्षित है। एक दिन स्वामी जी के गायन के साथ तबला वादक खापूर जी पर्वतकर संगत कर रहे थे। तबला बजाने के साथ उनकी अंग भंगी देख कर स्वामी जी ने ऐसा करने से रोका। इस पर खापूर जी ने कहा, ये असंभव है। तब स्वामी जी ने स्वयं तबला बजाकर दिखा दिया कि वो सर्वथा संभव है। एक गायक को भी उन्होंने इस तरह की भंगिमा का परित्याग करने के लिए कहा था।
3: गोवा में रहते समय स्वामी जी रासेल जाकर कैथोलिक धर्म पुरोहितों का एक शिक्षा केंद्र देखा है। मडगांव से विदा लेते समय नायक जी ने स्वामी जी से उनका एक फोटो मांग लिया। ये फोटो बड़े आकार में इन दिनों दामोदर जी के मंदिर की बगल के कमरे में रखा हुआ है। नायक जी ने बाद में संन्यास ग्रहण किया और स्वामी जी सुब्रह्मानंद तीर्थ के नाम से ज्ञात हुए। उन्होंने उसी कमरे में देह त्याग किया।
0: इस कड़ी में हमने आपको स्वामी जी के जीवन की कई छोटी छोटी घटनाओं के बारे में बताया है। इन घटनाओं का शायद उनके संपूर्ण जीवन में ज्यादा महत्व नहीं है, पर इन प्रसंगों से उनके चरित्र के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डलता है। जैसे उनका फ्रांसीसी संगीत का ज्ञान, स्वदेश प्रेम, दरिद्र जनों के लिए चिंता, परिहास प्रियता एवं याददाश्त आदि सभी विषयों में उनकी रुचि थी तथा प्रकांड पांडित्य था। ऐसे सन्यासी को बारंबार नमन।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: पैदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजे हैं, हमारी यह सभा अब संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।